मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, DRM 1233 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 13 जुलाई 2026। सुबह के 5:57 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास

0: स्ट्रेटेजिक पोत जीएसएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। उसरीली भूमि में वृक्षारोपण विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
3: किसान भाइयों, आज हम उसरीली जमीन में वृक्षारोपण के बारे में चर्चा करेंगे। उसरीली भूमि में फल वृक्ष लगाने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। पहली बात तो ये कि जिस ऊसर जमीन में हम वृक्ष लगाने जा रहे हैं उसकी दशा को थोड़ा सुधारा जाए। इसके लिए मिट्टी की जांच कराते हैं। इससे यह मालूम हो जाता है कि ऊसरीली जमीन का पीएच क्या है, यानी उसमें ऊसरपन कितना है और उसमें ऊसर सुधारक कितना प्रयोग करना है। फिर जिस वृक्ष को लगाना है उसके लिए निर्धारित दूरी पर रेखांकन करके गड्ढा खोद लेते हैं। औसत रूप में गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई 1-1 मीटर रखते हैं। गड्ढे की ऊपर की मिट्टी एक तरफ और बाकी मिट्टी दूसरी तरफ रखते हैं। फिर गड्ढे में कम से कम 10-15 दिन धूप लगने देना चाहिए। यह कार्य थोड़ा पहले ही कर लिया जाता है, किंतु अगर यह कार्य न किए हों तो अभी भी यह कार्य कर सकते हैं और फिर गड्ढे की भराई करते हैं। मिट्टी को सुधारने के लिए आजकल मुख्यतः दो प्रकार के सुधारक प्रयोग होते हैं, एक जैविक और दूसरे अजैविक। जैविक सुधारकों में गोबर की खाद और कंपोस्ट की खाद तथा अजैविक सुधारकों में जिप्सम एवं पायराइट का प्रयोग होता है। यदि मिट्टी का पीएच 8.5 है तो एक गड्ढे में 40-50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 10-15 किलोग्राम बालू। बालू का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि जल निकास अच्छा बना रहे। चूंकि ऊसर जमीन में जल निकास की समस्या होती है अतः बालू का प्रयोग आवश्यक है। बालू के अलावा 2 किलोग्राम जिप्सम या 1.5 किलोग्राम पायराइट गड्ढे में भरते हैं। यदि पीएच 9 है तो 40-50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 10-15 किलोग्राम बालू, 3 किलोग्राम जिप्सम एवं 2 किलोग्राम पायराइट। यदि मिट्टी का पीएच 9.5 है तो 50-60 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 15-20 किलोग्राम बालू, 5 किलोग्राम जिप्सम या 4 किलोग्राम पायराइट। यदि मिट्टी का पीएच 9.5 से ऊपर है तो 50-60 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 15-20 किलोग्राम बालू, 10 किलोग्राम जिप्सम या 8 किलोग्राम पायराइट डालते हैं। इसके अलावा प्रत्येक गड्ढे में 250 ग्राम नीम की खली, 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा 150 ग्राम लिंडेन चूर्ण, ये सब मिलाकर गड्ढे की भराई करते हैं। वास्तव में यह कार्य बहुत पहले ही कर लेना चाहिए, लेकिन अगर भराई का कार्य नहीं किए हैं तो यह कार्य भी इसी समय करें। गड्ढे की भराई जमीन से 10 सेंटीमीटर ऊंची ही रखनी चाहिए। फिर गड्ढे में पानी भर देते हैं ताकि मिट्टी अच्छी तरह बैठ जाए। अगर कोई गड्ढा ज़्यादा बैठ

0: जाता है तो उस पर थोड़ा मिट्टी डालकर ज़मीन के लेवल में कर देना चाहिए। अब बात आती है कि उस रीली ज़मीन में किन फल वृक्षों की रोपाई की जाए। उस रीली ज़मीन में वैसे तो कई फल वृक्षों को लगाया जा सकता है, लेकिन इनके गुण एवं ऊसर के प्रति सहनशीलता इनमें अलग अलग होती है। कुछ फल वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें ऊसर के प्रति सहनशीलता बहुत अधिक होती है। ये हैं आंवला, करौंदा, लसोड़ा, महुआ और बेर। दूसरे औसत सहनता वाले फल वृक्ष होते हैं, जिसमें हम अनार, बेर, फालसा, जामुन, शरीफा को लेते हैं। तीसरे कम सहनशील वृक्ष हैं, जिसके अंतर्गत अमरूद और जैतून जैसे वृक्ष आते हैं। इनमें से ज़मीन के अनुसार वृक्षों का चयन करके रोपाई करते हैं। अगर आंवला लगाना चाहते हैं तो बनारसी, हाथी झूल, चकैया, कृष्णा, कंचन और नरेंद्र आंवला साथ। यदि बेर लगाते हैं तो बनारसी कड़ाका, उमरान और अलीगंज मुड़िया। यदि बेल लगा रहे हैं तो बेल कागजी, नरेंद्र बेल 5 और मिर्जापुरी। यदि अमरूद लगाते हैं तो इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49 और एप्पल गुआवा प्रजातियां प्रमुख हैं। इस प्रकार से गड्ढों के बीचों बीच स्वस्थ कलमी या बीजू पौधों को गड्ढा खोदकर लगाना चाहिए। पौधों को शाम के समय लगाना चाहिए और लगाने के बाद उसमें पानी दे देना चाहिए। प्रायः देखा जाता है कि ऊसर ज़मीन में वाष्पीकरण के द्वारा हानिकारक लवण ऊपर आने लगते हैं, अतः इस प्रकार की मिट्टी में अपेक्षाकृत कम अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए, ताकि मिट्टी की दशा खराब ना होने पाए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर उस रेली ज़मीन में वृक्षारोपण करना चाहिए।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। उसरीली भूमि में वृक्षारोपण विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। रंग और रस के मिश्रित भाव से जन्म लेती है भक्ति। भक्ति हमेशा प्रत्यक्ष होकर हमें अपने आराध्य का अनुभव करवाती है। आराध्य भी हमेशा उस भक्ति भाव को खोजते हैं जो हृदय तल से प्रत्यक्ष होती है। ये प्रत्यक्ष भाव ही हमें हमारे आराध्य को मिलने के लिए सफल मार्ग प्रस्तुत करते हैं।

हृदय तल की भावना संपूर्ण रूप से शुद्ध होकर जब प्रकट होती है, तभी मनुष्य भक्ति मार्ग पर सफल होता है। भक्ति मार्ग की यही सफलता हमें हमारे आराध्य के प्रति हृदय तल के प्रत्यक्ष भाव को दर्शाती है, और यही भाव आगे चलकर हमारे एक सफल भक्त होने का परिचय बनता है।

भक्ति भाव में विभोर मनुष्य जब प्रभु की उपस्थिति का आस्वादन करता है और उसे अपने आप में अनुसरित कर समस्त संसार को ही परिवार मान लेता है, तो ऐसे में प्रभु उस मनुष्य को एक सफल भक्त का स्थान स्वयं

0: जब मनुष्य प्रभु की भक्ति में सफल होता है तो वो प्रभु की संरचना अर्थात इस प्रकृति का आनंद उठाता है और साथ ही प्रकृति को प्रभु का उपहार मानकर उसे अपनी तपस्या का साधन भी बनाता है। यही प्रकृति उसे उसके आराध्य से पूर्णकालिक मिलाप का माध्यम बनती है। आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। आज का विषय है धैर्य और क्षमा।
1: मन के स्थिर भाव को धैर्य और शत्रु के प्रति दया भाव को क्षमा कहते हैं। धैर्य और क्षमा एक दूसरे के पूरक हैं। धैर्य के बिना व्यक्ति जीवन में विकास नहीं कर सकता। धैर्य और क्षमा यदि दोनों रहते हैं व्यक्ति के पास तो निरंतर वो विकास करता रहता है। धैर्य को त्यागना नहीं चाहिए, इसलिए ऋषियों ने कहा है त्याज्यम न धैर्यम विदुरेप काले। धैर्य को कभी त्यागना नहीं चाहिए। धैर्य बहुत बड़ा भूषण है जिसके द्वारा व्यक्ति की शोभा होती है। मनु जी ने कहा है जब धर्म के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं उस समय मनु ने धैर्य और क्षमा को प्रधानता प्रदान की है। वो कहते हैं धृतिर क्षमा तमस्तेयम शौचम इंद्र निग्रहम धीर विद्या सत्यम क्रोधो धर्मम दस्त लक्षण। तो इस प्रकार धैर्य और क्षमा का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। जो व्यक्ति धैर्य को अपना लेता है वो सब कुछ पा जाता है। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है, युद्ध में भगवान राम के सामने विभीषण खड़े हैं और उनमें अधीरता आ जाता है। अधीरता के आने से विभीषण कंपित हो जाते हैं। रामन रथी बिरथ रघुवीरा देख विभीषण भाई अधीरा अधिक प्रीत मन भा संदेहा बंदी चरण भाई स्नेहा। भगवान राम से कहते हैं रावण तो युद्ध करने के लिए रथ पर आरूढ़ होकर आ रहा है, अब आपके पास तो कुछ नहीं है, आप विजयी कैसे बनेंगे। भगवान राम कहते हैं सखे विभीषण चिंता मत करो, ये धर्म जो है वही रथ है, इसके दोनों चक्र जो हैं वो धैर्य और शौर्य हैं, क्षमा है। भगवान राम कहते हैं सौरज धीरज तही रथ चाका सत्यशील दृढ़ ज्वा पताका बल विवेक दम परहित घोरे क्षमा कृपा समता रज जोरे। वस्तुतः तुलसी के राम क्षमा के आकार हैं, क्षमा के रूप हैं, क्षमा के द्वारा व्यक्ति की शोभा बढ़ती है। कहा गया शास्त्रों में क्षमा बलम असक्ता नाम सक्ता नाम भूषण क्षमा। क्षमा निर्बलों का बल है और शक्तिशालियों का भूषण है। कवि और दिनकर कहते हैं क्षमा सो होती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या दो दंतहीन विष रहित विनीत सरल है। इस प्रकार जीवन में आधेर आधार का जो संबंध होता है वही संबंध क्षमा और धैर्य का है। भगवान राम के जीवन में सब कुछ था लेकिन सबसे बड़ा विकास का कारण राम के था धैर्य और क्षमा। जिस प्रकार भगवान राम धीर के सागर हैं उसी प्रकार क्षमा के मंदिर हैं। स्वयं परशुराम कहते हैं अनुचित बहुत कहो अज्ञाता क्षमा क्षमा मंदिर दो उभराता। भगवान राम ने मने जघन्य अपराध के बाद भी जयंत को क्षमा करते हैं। कहते हैं को कृपाल रघुवीर सम, राम के समान कोई कृपालु नहीं है कि इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी वो क्षमा कर दे। क्षमा के द्वारा व्यक्ति बहुत से कार्यों को सफलता पूर्वक प्राप्त कर लेता है। बड़े

0: बड़े शत्रुओं को वश में कर लेता है। जहां शक्ति काम नहीं करती वहां क्षमा काम करती है। जिस प्रकार नौका के लिए दो पतवार की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार मानव जीवन नौका के लिए धैर्य और क्षमा की आवश्यकता पड़ती है। अगर जीवन में धैर्य और क्षमा संतुलित रूप से प्राप्त हो तो निश्चित हो मानव जीवन नौका अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। इसलिए धैर्य और क्षमा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। आज का विषय था धैर्य और क्षमा।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय है दूषित जल से होने वाली बीमारियां और इनका इलाज। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी IMS BH। आज हम चर्चा कर रहे हैं दूषित जल से होने वाले प्रमुख बीमारियों के बारे में, जिसमें कि प्रमुख नाम थे हैजा, टाइफॉइड, पेचिस, हेपेटाइटिस ए और ई, जियाडियासिस, क्रिप्टोस्पोरोसिस एंड लेप्टोस्पायरोसिस, जिसके बारे में हम लोगों ने उनके कारण को जाना, हमने उनके मुख्य लक्षण को समझा और उनका इलाज के बारे में थोड़ी सी चर्चा की। हमने इलाज के समान सिद्धांत पर भी चर्चा की। तो अब हम हेपेटाइटिस के बारे में बात कर रहे थे। तो हेपेटाइटिस में आपको ध्यान ये देना है कि अगर आपको बेहोशी होने लगे, मरीज अकबक करने लगता है या फिर वो मुंह से कुछ नहीं ले पाता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि ये लिवर फेलियर के लक्षण हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको डॉक्टर से मिल करके उसका इलाज शुरू करना है। फिर उसके बाद इन सब बीमारियों में आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर समान लक्षण है तो आप रिहाइड्रेशन थेरेपी यानी ORS का घोल से भी अपने से इलाज कर सकते हैं। अगर आपको गंभीर डिहाइड्रेशन होता है तो उस केस में आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें कि एंटीबायोटिक की जरूरी होती है। तो तुरंत डॉक्टर से मिले, तो उसके लिए दस्त उल्टी दो दिन से अधिक जारी रहे, अगर आपको बहुत कमजोरी लग रही है, दस्त उल्टी में बिल्कुल आराम नहीं हो रहा है, तो आपको मिलना है, क्योंकि ज्यादातर दस्त उल्टी वायरस की वजह से होती है। तो वायरस से जो दस्त उल्टी होती है वो ज्यादातर दो तीन दिनों में ठीक हो जाती है। अगर मान लीजिए ठीक नहीं हो रहा है तो आपको जरूर विशेषज्ञ से मिलना है। खून वाला मल या पेशाब, अगर आपके पेशाब में खून आ रहा हो या मल में खून आ रहा हो तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना है। तेज डिहाइड्रेशन माने अगर आपको चक्कर आ रहा है, पेशाब कम हो रहा है, मुंह सूख रहा है, खड़े होने में चक्कर आ रहा है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर से जरूर मिलना है, तुरंत मिलना है। बच्चे, बुजुर्ग या कमजोर लोग जिसमें की प्रतिरोधक क्षमता कम है, जैसे कि कुछ मरीज हैं जिनको शुगर है, अगर मान लीजिए उनका शुगर कंट्रोल नहीं है, या फिर जो मरीज है जिनको की पता है कि जैसे HIV के मरीज होते हैं जिनमें की इम्यूनिटी कमजोर होती है, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, क्योंकि इनमें ये बीमारियां बहुत जल्दी ही प्रभावित करती हैं और दिमाग पर भी असर करती है, तो इनको आपको बहुत जल्दी डॉक्टर से मिलना है, इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना है। तो अब हम बचाव के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी ही पिए। तो ध्यान रखिए, ये सब गंदे पानी से होने वाली बीमारियां हैं, तो आपका सबसे पहला रोकथाम होगा कि आप उबला या फिल्टर किया हुआ पानी ही पीना है। विशेष ध्यान देना है इस पे, हाथ धोना, हाँ ये बहुत ही जरूरी है, जो कि हम लोग सब लोग करते ही हैं, लेकिन थोड़ा और ध्यान से करना है। हाँ, खाने से पहले और शौचालय के बाद को हाथ अच्छे से धोना है, खासकर बुजुर्ग और बच्चों में आपको ये चीज बहुत ही ध्यान देना है उनको, कि ये ध्यान दें इस चीज पे। कच्चे आध पके भोजन से बचे, मान लीजिए कोई चीज कच्चा है या आध पका है, उसको आप अच्छे से पका के खाइए। पानी के बर्तन को ढक कर रखें, क्योंकि ये सब संक्रमण से होता है, तो इसलिए इसको ढक के रखना है। और टीकाकरण, कुछ बीमारियां हैं जैसे टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए, जिसके लिए टीकाकरण उपलब्ध है। हालांकि भारत में हेपेटाइटिस ए के टीकाकरण की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम लोगों को ज्यादातर बचपन में ही हेपेटाइटिस ए हो जाता है और हमारे में इम्यूनिटी हो जाती है, लेकिन आजकल अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनमें टीकाकरण भी करवा सकते हैं। तो हम लोगों ने जो चर्चा की उसका सारांश यह है कि दूषित जल से होने वाली बीमारियां मुख्यतः दस्त और डिहाइड्रेशन से जुड़ी होती हैं। प्राथमिक उपचार ORS और IV फ्लूड है। परजीवी से होने वाली बीमारियों को हम लोगों को उसी के अनुसार आपको एंटीबायोटिक्स या एंटीपैरासिटिक दवाई लेनी पड़ती है, जो कि डॉक्टर से मिलकर के आपको लेना है। और बचाव के लिए आप स्वच्छ पानी, हाथ का धोना, टीकाकरण सबसे प्रभावी उपाय है। एक चीज और, जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं वो जूस पीते हैं, तो ये ध्यान दें कि जूस और गन्ने का रस जो पी रहे हैं उनके यहाँ पे साफ सफाई है कि नहीं, मक्खियां बहुत ज्यादा तो नहीं है। ये सब चीजों से भी हेपेटाइटिस और ये गंदे पानी से होने वाले बीमारी हो सकते, ध्यान देना है। तो धन्यवाद।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय था दूषित जल से होने वाली बीमारियां और इनका इलाज। इस विषय पर

स्वच्छता ही सेवा ध्येय वाक्य अमल में लाएं, कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाएं, अपना जीवन अमूल्य बनाएं। आओ दोस्तों, स्वच्छता अपनाएं, कार्यालय की गरिमा बढ़ाएं, अपना जीवन सफल बनाएं। स्वच्छ रहेगा भारत तो समृद्ध रहेगा भारत। नदियों को रखो साफ, ये है हमारी सभ्यता की पहचान। स्वच्छता को आदत बनाओ, रोज सफाई करना ना भूल पाओ। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

राजा दशरथ ने कैकेयी को कई प्रकार से समझाया, अनुनय विनय की कि वो विवेक से सोच समझकर दूसरा वर मांगे, क्योंकि राम के बिना उनका जीवन नहीं रह पाएगा। किंतु राजा के कोमल वचन कैकेयी की क्रोधाग्नि में मात्र आहुति का काम कर रहे हैं। रानी की एक ही टेक है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहां आपकी माया नहीं चलेगी। या तो जो वर मैंने मांगा है वो दें, नहीं तो ना ही करके अपयश के भागी बने। सवेरा होते ही यदि राम मुनिवेश धारण करके वन को नहीं जाते तो हे राजन, निश्चय जानिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। इतना कहकर कैकेयी ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे क्रोध की नदी उमड़ी हो। दो वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का हठ उस नदी की तीव्र धारा है, मंथरा की प्रेरणा भंवर है, और क्रोध रूपी वो नदी राजा दशरथ को मूल रूप से ढहाती हुई विपत्ति के समुद्र की ओर ले चली है। राजा ने समझ लिया कि स्त्री के रूप में मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है। उन्होंने कैकेयी के चरण पकड़कर विनती की कि वो सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी न बने, वो उनका मस्तक मांग ले जो वो शीघ्र दे देंगे, राम के विरह में उन्हें न मारें। किंतु राजा की गुहार व्यर्थ हुई। उन्होंने जान लिया कि रोग असाध्य है। अत्यंत आर्तवाणी से हा राम कहकर वो पृथ्वी पर गिर पड़े।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज की कड़ी के कलाकार थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से। आज दिनांक 13 जुलाई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। सुबह 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम का प्रसारण होगा हमारे लखनऊ केंद्र से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिए उस्ताद बिस्मिल्ला खां और विदुषी एन राजम का युगल शहनाई वादन और वायलिन वादन। दिन में 12:45 पर हरिप्रसाद पौड्याल का बांसुरी वादन और सुबह 7:31 पर हनुमान प्रसाद गुप्ता का गायन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:00 सुनिए कलाकार रेवती साकलकर के गजल और दिन में 12:30 पर ताहिर सईद के गीत। शाम 6:30 पर कार्यक्रम कृषि जगत में सुनिए कृषि में एआई तकनीक की उपयोगिता विषय पर डॉक्टर मुकेश कुमार श्रीवास्तव से सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत और साथ ही सुनिए धनंजय कुशवाहा के गाए लोकगीत। इन्हीं के गाए लोकगीत आप सुन सकेंगे कार्यक्रम लोक संगीत में दिन में 1:45 और सुबह 9:50 पर। शाम 5:15 पर कार्यक्रम युवावाणी में वार्ताकार प्रिया पाठक की वार्ता का विषय होगा साइबर बुलिंग पहचान और रोकथाम। साथ ही सुनिए यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन रोजगार सूचना। रात 10:00 कार्यक्रम कवि गोष्ठी का प्रसारण किया जाएगा। गैर फिल्मी गीत और गजल पर आधारित कार्यक्रम का समय होगा रात 9:30 पर। कार्यक्रम रसमाधुरी का प्रसारण रात 8:15 और रस रंग का प्रसारण 7:31 पर किया जाएगा। भोजपुरी गानों के कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का समय होगा दिन में 2:30 पर। शहरी महिलाओं के कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में सुनिए बच्चों का पौष्टिक टिफिन विषय पर आहार विशेषज्ञ निशा प्रकाश से आकांक्षा सिंह की बातचीत। साथ ही होगा सेहत ज्ञान और गृहलक्ष्मी टिप्स। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का समय होगा दिन में 12:00 से। दिन में 11:00 से सुनिए कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम झनकार का प्रसारण होगा सुबह 10:00। सदाबहार फिल्मी गानों के कार्यक्रम मधुरिमा का प्रसारण होगा 8:45 पर। अब से थोड़ी देर में यानी सुबह 7:00 आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग बनारस। ये था हमारे केंद्र से आज दिनांक 13 जुलाई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

0: येषु ओमानदेशस्य प्राधिकारीभिः साकं सक्रियसमन्वयं साधयति। नवदिल्ल्या वाणिज्यिक नौवहनेषु प्रचलत्सु निरन्तर आक्रमण प्रसङ्गेषु स्वकीया गभीरा चिन्ता प्रकटिता। अनेनैव सह भारतस्यास्य राजनैतिक समाधानाय वार्तानां शीघ्र सम्पूर्त्यै याचना विहिता, येन अस्मिन् क्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च प्रवर्तेत। फीफा विश्वचषक पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायां सर्वेषां प्रागुपान्त्य चरणात्मकानां द्वन्द्वानां समाप्त्यनन्तरम् उपान्त्यचक्रस्य रूपरेखा पूर्णतः सिद्धा सञ्जाता। प्रथमायाम् उपान्त्यस्पर्धायाम् आगामि बुधवासरे फ्रांस स्पेन दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविता। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं रात्रौ सार्धद्वादशवादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: जाएगी मस्ती, लगेगा इंफोटेनमेंट का डोज।
2: जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: आ गई है बनारसी कुड़ी, सो बनारस लेट्स गेट रेडी टू ग्रूव। प्रेजेंटिंग आरजे सना।
3: हाँ जी, हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम बनारस, कैसे हैं आप? आई होप एंड आई विश कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब भी एकदम ठीक मस्त और चकाचक हैं। और चकाचक होना बनता भी है क्योंकि फाइनली मॉनसून इज हेयर, जिसका था हम सभी को इंतजार, आखिर वो घड़ी आ ही गई है ना। और इस वक्त ना बनारस का जो माहौल है, मतलब इतना खुशनुमा बना हुआ है। फाइनली सूरज चाचू से हम सबको फिलहाल राहत जो है वो मिल गई है। गर्म दिन तो चले गए, अब ठंडे दिन जो हैं वो जरूर आ गए हैं, है ना। अच्छा, माना जाता है कि जो इंसान समय का पाबंद होता है उसका जीवन काफी व्यवस्थित होता है, है ना। अक्सर हमें सुबह सुबह ये बात सुनने को बहुत मिलती है, हमारी मम्मियों से, हमारे घर के किसी भी बड़े बुजुर्ग से, है ना। जिसकी हर जगह देरी से पहुंचने की आदत होती है वो कभी कामयाब नहीं हो पाता। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये आपकी टाइम पर्सनालिटी है। अगर आप भी अभी तक अपनी टाइम पर्सनालिटी को नहीं समझ पाए हैं तो समझने का प्रयास कीजिए। समय के साथ आपका रिश्ता कैसा है? घड़ी तो सभी के लिए समान गति से चलती है, फिर भी हर कोई समय को अलग अलग तरीके से महसूस करता है। कोई समय से पहले पहुंचकर भी बेचैन रहता है तो कोई हमेशा देर से ही पहुंचता है। कोई तो कई काम एक साथ निपटाकर भी समय से पहुंच जाता है तो कोई किसी काम में इतना डूब जाता है कि उसे समय का ख्याल ही नहीं रहता। समय को लेकर बने इसी व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक टाइम पर्सनालिटी कहते हैं। समय का अनुभव हर व्यक्ति अपनी मानसिक संरचना के अनुसार करता है, इसलिए प्रभावी समय प्रबंधन की शुरुआत स्वयं को समझने से होती है। समय को सबसे बड़ा टीचर कहा गया है, ये सब सिखा देता है। ये ना किसी के लिए रुकता है और ना ही किसी के हिसाब से चलता है। दिलचस्प बात यह है कि हम सभी एक ही घड़ी देखते हैं, लेकिन समय के प्रति हमारा व्यवहार एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। कोई हर काम तय समय पर करना पसंद करता है तो कोई हमेशा कुछ मिनट देर से पहुंचता है, तो कोई समय की परवाह किए बिना अपनी ही दुनिया में मगन रहता है। टाइम पर्सनालिटी के अर्थ को समझा जाए तो ये समय के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध है। ये बताता है कि आप समय सीमा को कितना महत्व देते हैं, अपने दिन की योजना कैसे बनाते हैं और दैनिक जिम्मेदारियों को किस तरह निभाते हैं। जब आप पहचान लेते हैं कि समय के प्रति आपकी सोच और आदतें कैसी हैं, तब अपनी वीकनेस पर काम करना आसान हो जाता है। अगर आप हमेशा जल्दबाजी और चिंता में रहते हैं तो अपने कार्यक्रम में थोड़ा लचीलापन जोड़ना आपकी जरूरत है। समय को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन समय के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाना हमारे नियंत्रण में जरूर है। आखिरकार सफलता समय के पीछे भागने में नहीं बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाने से ही मिल सकती है, है ना। गुड मॉर्निंग बनारस।

हां जी, ट्यून किया है आपने आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। तारीख है आज 13 जुलाई 2026 और दिन है आज सोमवार का। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त अपने शहर में खास। आपको बता दें कि छेहरटा और वाराणसी के बीच प्रस्तावित वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस का संचालन अब 17 जुलाई से शुरू होगा। जी हां, रेलवे ने पहले 12 जुलाई से प्रस्तावित इस ट्रेन की शुरुआत की तिथि संशोधित कर दी है। ट्रेन का नाम संत रविदास एक्सप्रेस रखा गया है। इसका संचालन सप्ताह में 3 दिन किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को जालंधर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। इसी दिन जालंधर के नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी प्रस्तावित है। निर्धारित समय के अनुसार छेहरटा वाराणसी संत रविदास एक्सप्रेस प्रत्येक बुधवार, शुक्रवार और रविवार को दोपहर 2:05 पर छेहरटा से रवाना होगी। ट्रेन 2:25 पर अमृतसर पहुंचेगी। 5 मिनट के ठहराव के बाद 2:30 वाराणसी के लिए रवाना होगी और अगले दिन सुबह 7:25 पर लखनऊ और दोपहर 12:15 पर वाराणसी पहुंचेगी। वापसी में वाराणसी छेहरटा संत रविदास एक्सप्रेस प्रत्येक गुरुवार, शनिवार और सोमवार को शाम 7:50 पर वाराणसी से रवाना होगी। ट्रेन रात 12:10 पर लखनऊ पहुंचेगी और अगले दिन शाम 4:35 पर अमृतसर और शाम 5:10 पर छेहरटा पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में ये ट्रेन अमृतसर, जालंधर सिटी, लुधियाना, अम्बाला कैंट, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर सिटी सहित प्रमुख स्टेशन्स पर ठहरेगी। इस नई सेवा से पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क बेहतर होगा और यात्रियों को तेज, सुविधाजनक और सीधी यात्रा का विकल्प भी मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस साल मॉनसून सीजन में काशी में पिछले 50 वर्षों के औसत की तुलना में काफी कम बारिश हुई है। अब तक 111.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य से 42% कम है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में 138.2 मिलीमीटर बारिश के साथ सामान्य से 35% कम वर्षा दर्ज की गई है। पिछले वर्ष इस अवधि तक काशी में 175 मिलीमीटर तक अधिक बारिश हो चुकी थी। मॉनसून की दस्तक के बाद शुरुआती दिनों में अच्छी बारिश हुई, लेकिन पिछले 3 दिनों से बारिश न होने के कारण दिन और रात में उमस काफी ज्यादा बढ़ गई है। कल रविवार को भी ऐसा ही मौसम रहा। दिन में हवा में नमी रही और बादलों की आवाजाही भी होती रही, लेकिन बारिश जो है वो नहीं हुई। इसी तरह का मौसम रात में भी बना रहा। रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी कि 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस रहा। यूपी आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल कुमार सिंह के अनुसार अगले 2-3 दिनों में मौसम एक बार फिर बदलेगा और अच्छी बारिश होने की संभावना है। पूरे उत्तर प्रदेश में सामान्य से 17% कम बारिश हुई है, जबकि बनारस और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कमी इससे अधिक रही। वर्षा का आकलन पिछले 50 वर्षों के औसत के आधार पर किया जाता है। काशी में अब तक 111.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि इस अवधि तक 191.5 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अब तक 211.4 मिलीमीटर के मुकाबले केवल 138.2 मिलीमीटर ही बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही शहर के कई क्षेत्रों में आज 3 से 4 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। लेड़ूपुर उपकेंद्र के आशा

पुर दौलतपुर लालपुर फीडर की बिजली आपूर्ति सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगी। वहीं 33 केवी कोटवा लाइन पर गार्डिंग का कार्य भी आज किया जाएगा। इसके लिए कोटवा उपकेंद्र से संचालित 11 केवी महेशपुर और 11 केवी फुलवरिया फीडर पर सुबह 11 बजे से दिन के 3 बजे तक 4 घंटे का शटडाउन रहेगा। विद्युत निगम के अनुसार कार्य पूरा होने के बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। तो फटाफट से अपना सारा काम जो है वो निपटा लीजिए, क्योंकि बिजली आपूर्ति जो है वो बाधित रहने वाली है अगले 2 से 3 घंटे तक। तो आपका बिजली से रिलेटेड जो भी काम है उसे फटाफट से निपटा लीजिए। और आपको ये भी बता दें कि शहर का औसत AQI कल रविवार को 52 दर्ज किया गया। इसका कारण वायु प्रदूषण का स्तर कम होना है। कुछ समय से शहर में वायु प्रदूषण का स्तर अधिक बना हुआ था। हवा में प्रदूषकों की मात्रा कम है और बरसात के दौरान लगातार AQI में सुधार देखने को मिल रहा है। कल रविवार को वाराणसी में अर्दली बाजार का AQI 52, भेलूपुर का 62, BHU का 47 और मलधैया का 46 दर्ज किया गया। और इसके अलावा जिले में बिजली निगम से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अब परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। नया कनेक्शन लेने, स्मार्ट मीटर संबंधित गड़बड़ी, गलत बिजली बिल के साथ ही सोलर संबंधी समस्याओं को लेकर 19/12 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। स्थानीय स्तर पर भिखारीपुर MD कार्यालय में 19/12 का कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, यहाँ शिकायत का समाधान कराया जा रहा है। तो जी, ये रहा अपने शहर का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 13th of July। आपको बता दें कि आज 1830 में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए राजा राम मोहन रॉय और अलेक्जेंडर डफ ने आज 13 जुलाई 1830 को कोलकाता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज की स्थापना की थी। और साथ ही साथ 1974 में भारतीय क्रिकेट टीम ने आज ही के दिन इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंगली में अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला था। और जन्मदिन की बात करें तो आज हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग की मशहूर अभिनेत्री बीना राय का आज ही के दिन 1931 को लाहौर पंजाब में जन्म हुआ। उनका वास्तविक नाम जो था वो था कृष्णा सरीन। उन्होंने अनारकली और ताजमहल जैसी बेहतरीन फिल्मों में अपनी यादगार भूमिकाएं निभाई। तो आज उनकी जन्म जयंती पर आकाशवाणी देता है उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज स्पेशल इवेंट्स एंड हिस्ट्री। एंड नाउ बनारस, लेट्स मूव ऑन टू योर फेवरेट सेगमेंट, बात जरूरत की। देखिए, वॉशिंग मशीन आज लगभग हर घर की जरूरत बन चुकी है, है ना? ज्यादातर घरों में ये आपको बालकनी में रखी मिलेगी। लोग जगह बचाने के लिए ऐसा करते हैं। ये सुविधाजनक तो है, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। खुले स्पेस के कारण धूप, बारिश, नमी और धूल सबका असर सीधे मशीन पर ही पड़ता है। इससे मशीन का परफॉर्मेंस बिगड़ता है और जल्दी खराब होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। ऐसे में ये जानना इम्पोर्टेंट है कि वॉशिंग मशीन रखने के लिए सबसे सिक्योर जगह कौन सी है। इसलिए आज इस सेगमेंट में हम समझेंगे कि वॉशिंग मशीन को सुरक्षित कैसे रखें, साथ ही जानेंगे कि इसे घर के अंदर रखना चाहिए या बालकनी में, किन गलतियों से मशीन जल्दी खराब होती है। वॉशिंग मशीन बालकनी में तब रख सकते हैं जिस बालकनी में हवा आए, यानी हवादार हो लेकिन एकदम ओपन ना हो, जो खुली हो लेकिन धूल मिट्टी से प्रोटेक्टेड भी हो, जहां पर प्रॉपर शेड हो, जहां सीधे धूप ना आती हो, जहां बारिश का पानी ना आता हो, जहां मोटी वायरिंग वाला पावर सॉकेट हो। धूप, बारिश और धूल तीनों वॉशिंग मशीन के लिए नुकसानदायक हैं। इनके एक्सपोजर से लंबे समय में मशीन का परफॉर्मेंस और लाइफ कम हो सकते हैं। लगातार यूवी रेज और गर्मी के संपर्क में आने से मशीन के बाहरी और अंदरूनी पार्ट्स पर सीधा असर पड़ता है। धूप से प्लास्टिक वीक होता है, रबर पार्ट्स सूख सकते हैं, मशीन का रंग फीका पड़ सकता है, बॉडी में क्रैक आ सकता है, ओवरहीटिंग का रिस्क बढ़ता है, मशीन की लाइफ कम होती है, बारिश में भीगने से मशीन का इलेक्ट्रिकल सिस्टम खराब हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, मशीन में जंग लग सकती है, मोटर खराब हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं, नमी से फफूंदी आ सकती है, मशीन जल्दी खराब हो सकती है। खुले और धूल भरे माहौल में रखी वॉशिंग मशीन के अंदर गंदगी जमा हो सकती है, जिससे मशीन का परफॉर्मेंस और उसके पार्ट्स दोनों प्रभावित होते हैं। फ्रंट लोड और टॉप लोड मशीन के लिए नियम अलग अलग होते हैं। दोनों की डिजाइन, वाटर मैनेजमेंट और वाइब्रेशन पैटर्न अलग होते हैं।
इसलिए दोनों के प्लेसमेंट, मेंटेनेंस और आउटडोर सेफ्टी गाइडलाइंस भी अलग अलग होती हैं। फ्रंट लोड मशीन के लिए डोर खुला रखें, ओवरलोड ना करें, समतल जगह पर रखें, हवा आने दें, ढक्कन सूखा रखें। आमतौर पर वॉशिंग मशीन की सर्विस

0: हर 6 से 12 महीने में करानी चाहिए और अगर कोई समस्या हो, मशीन से आवाज आए या चोक हो तो तुरंत सर्विसिंग करानी चाहिए। अच्छा, एक सवाल लोगों के मन में ये आता है कि वॉशिंग मशीन को बालकनी में रखने के लिए कंपनियों की क्या गाइडलाइंस है। तो कंपनियां आमतौर पर सीधे बालकनी जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं करती, ज्यादातर ब्रांड्स अपनी गाइडलाइन में ये लिखते हैं कि मशीन को सीधे धूप से बचाएं, बारिश से भीगने से बचाएं और धूल से बचाकर रखें। अगर मशीन को ओपन या आउटडोर एरिया में रखने से कोई पार्ट डैमेज होता है तो वारंटी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि बालकनी में शेड हो, सीधी धूप ना आती हो। मशीन को हमेशा शेड में रखिए, सीधे धूप और बारिश से बचाइए। मशीन के नीचे स्टैंड लगाइए, मशीन पर कवर लगाइए, आसपास पानी जमा ना होने दीजिए, प्लग और वायर सूखा रखिए, बालकनी में वेंटिलेशन रहे, मशीन दीवार से दूर रखिए, मशीन समतल जगह पर रखें, मशीन पर भारी सामान न रखें, यूज के बाद थोड़ी देर ढक्कन खुला रखें, मशीन की रेगुलर सफाई करना बहुत जरूरी है। मशीन की प्लास्टिक बॉडी को फेड और क्रैक कर सकती है अल्ट्रावायलेट रेज, रबर पार्ट्स को ड्राई और कमजोर करती है, कंट्रोल पैनल का परफॉर्मेंस भी खराब कर सकती है। इसके लिए जरूरी है कि वॉशिंग मशीन रखते समय शेड, इंसुलेशन और सही पोजीशनिंग तीनों का ध्यान रखा जाए। शेड नहीं है तो पहले से शेड लगवाइए, बालकनी में सन ब्लाइंड या पर्दे लगाइए, खस की घास के पर्दे लगा सकते हैं, मशीन के आसपास वेंटिलेशन रख सकते हैं, मशीन को सीधे धूप वाली दिशा से हटाकर रखें, मशीन पर यूवी प्रोटेक्टेड कवर लगाएं, मशीन पर मोटा कपड़ा न डालें, हवा लगने दें, यूज के बाद थोड़ी देर ढक्कन खुला जरूर रखें। तेज धूप और ज्यादा टेम्परेचर की वजह से मशीन के अंदर की मोटर और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पर एक्स्ट्रा थर्मल लोड पड़ता है, इससे परफॉर्मेंस प्रभावित होती है और मशीन खराब हो सकती है। अगर मशीन डायरेक्ट सनलाइट में है और उस पर लगातार तेज धूप पड़ रही है तो उसका रंग भी फीका पड़ सकता है। यूवी किरणें पेंट के केमिकल बॉन्ड को धीरे धीरे तोड़ने लगती हैं, इससे मशीन का पेंट डैमेज होने लगता है। तेज धूप के कारण पेंट सूखकर कमजोर हो जाता है, इससे पेंट का शाइन कम हो जाता है और उखड़ने लगता है, इससे मशीन पुरानी और बेजान दिखने लगती है। अगर मशीन खुले में रखे हैं तो वाटरप्रूफ कवर बेहतर है, मशीन को ये बारिश, नमी और धूल से ज्यादा सुरक्षित रखता है, लेकिन कवर में वेंटिलेशन जरूर होना चाहिए। अगर मशीन कवर्ड जगह यानी कि बाथरूम, किचन, कवर्ड स्पेस में रखी है तो फैब्रिक का कवर भी ठीक है, इससे हवा पास होती रहती है इसलिए नमी नहीं फंसती। वॉशिंग मशीन का कवर हर वक्त लगाकर रखना सही नहीं है, मशीन इस्तेमाल करने के तुरंत बाद कवर ना लगाएं, लगातार ढककर रखने से अंदर नमी फंस सकती है, इससे बदबू, फंगस और जंग की समस्या हो सकती है। जब मशीन इस्तेमाल में ना हो तब कवर लगाना बेहतर है, कवर ब्रीदेबल यानी कि हवा पास करने वाला हो तो बेहतर है। हफ्ते में 1 से 2 बार सूखे या हल्के गीले कपड़े से बॉडी को साफ करें, हर 1 से 2 वॉश के बाद लिंट फिल्टर साफ करें, महीने में 1 बार हॉट वाटर क्लीनर से ड्रम को साफ करें, रबर गैस्केट पोंछ कर रखें, वॉश के बाद डोर खुला छोड़ें।
1: बात जरूरत की।
0: सो आई होप आज गुड मॉर्निंग बनारस का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, एंड इफ यस देन डू शेयर योर वैल्यूएबल व्यूज ऑन pkldairvaranasi@gmail.com। मेरा नाम है सना सलीम और आप मुझे सुन रहे थे आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से, एंड हियर आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स, खुश रहिए, प्यार बांटिए और कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से किसी का दिल न दुखे। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी डे। बाय बाय।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रादेशिक समाचारों के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
2: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
3: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
2: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है।

0: बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश भर में पौधरोपण महाभियान के तहत लगाए गए 35 करोड़ से अधिक पौधे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार ने उठाए महत्वपूर्ण कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का करेंगे लोकार्पण। श्रीराम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, आगामी 22 जुलाई को श्रीराम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति पर होगा फैसला। और सरकार ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज पूरे देश में घोषित किया एक दिन का राष्ट्रीय शोक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में पौधरोपण महाभियान एक पेड़ माँ के नाम के तहत कल 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पवित्र त्रिवेणी के पौधों को रोपकर इस महाभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
3: यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी वृद्धि हुई है, नए नए एक्सप्रेसवे, हाईवे, सड़कों का एक लंबा जाल बिछा है, नए नए उद्योग आए हैं, शहरीकरण में भी नई नई कॉलोनियां बनी हैं, बसी हैं। सबसे ज्यादा भौतिक विकास की गति को तेज करने में योगदान देने वाले राज्य के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन सबसे ज्यादा भौतिक विकास के साथ साथ पर्यावरण की दृष्टि से बड़े राज्यों में यूपी ने अपने वनाच्छादन को भी विस्तार देने में सफलता प्राप्त की है।
2: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विकास वाटिका की स्थापना, वानिकी आधारित कैलेंडर का विमोचन और मौसी का पौधा लगाकर हरित उत्तर प्रदेश के संकल्प को भी आगे बढ़ाया। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को पौधे और चेक प्रदान किए। कार्यक्रम में प्रदेश के वन मंत्री डॉ अरुण कुमार सक्सेना भी मौजूद थे। प्रदेश भर में चलाए गए पौधरोपण महाभियान के क्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल जनभवन परिसर में सफेद चंदन का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि सभी को प्रकृति के संरक्षण और स्वस्थ जीवन पद्धति को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए।
4: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40,29,00,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। ये अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
2: कल प्रदेश भर में जन प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने पौधरोपण अभियान में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
5: पौधरोपण महाअभियान के तहत उप

0: मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी में कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण और माँ के सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण जन अभियान है। आगरा के सिंगंदरा में स्थानीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने पौधारोपण कर इस अभियान की शुरुआत की। बागपत में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी और केपी मलिक ने वृक्षारोपण किया। कानपुर नगर में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, इटावा में राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने पौधारोपण किया। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। कल से वाहन इस एक्सप्रेसवे पर दौड़ने लगेंगे।
2: 63 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे लखनऊ और कानपुर के बीच की यात्रा के समय को मौजूदा 3 घंटे से घटाकर केवल 45 मिनट कर देगा। इस एक्सप्रेसवे पर दुपहिया वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी। यह भारत का पहला बैरियर मुक्त एक्सप्रेसवे भी बनेगा, जिसमें टोल प्लाजा से 500 मीटर पहले ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे और फास्टैग रीडर लगाए गए हैं, ताकि वाहनों को रोके बिना टोल टैक्स काटा जा सके। हादसे की स्थिति में AI सक्षम कैमरे तुरंत NHAI नियंत्रण कक्ष को सूचित कर देंगे। इस एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ कानपुर उन्नाव लालगंज के साथ गंगा एक्सप्रेस से आउटर रिंग रोड से भी कनेक्ट किया गया है। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार लखनऊ।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कल अयोध्या में बताया कि आगामी 22 जुलाई को श्री राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होगी, जिसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO की नियुक्ति, समितियों और उप समितियों के भविष्य सहित कई प्रशासनिक विषयों पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि CEO ट्रस्ट के अधीन ही काम करेंगे।
3: मुख्य प्रबंधक अधिकारी होंगे तो वह ट्रस्ट के अधीन प्रबंधन का कार्य देखेंगे, और यह तो ट्रस्ट पर निर्भर करेगा कि वह किस प्रकार का डेलीगेशन CEO को करते हैं, और जैसा डेलीगेशन करेंगे वैसे ही फिर CEO जो है वो अपना स्टाफ वहां पर व्यवस्था के करेंगे, लेकिन सब कुछ ट्रस्ट के अधीन है।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। यह योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। एक रिपोर्ट।
4: EPFO की एमनेस्ट योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। भारत सरकार ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। इस दौरान पूरे देश में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। आगामी अंक के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। प्रदेश में कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ से जुड़े मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि राज्य के तराई और पूर्वांचल के कई जिलों में 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने का अनुमान है।
5: मानसून का तराई बेल्ट में शिफ्ट हो गया है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र हैं जैसा कि लखीमपुर की

0: बहराइच, बलरामपुर, कुशीनगर, देवरिया में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। बाकी जगह की बात करें तो स्पेशली पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे बादलों की आवाजाही रहेगी तथा कुछ जगहों पे छिटपुट वर्षा की संभावना है। तो कुल मिलाकर यह सिलसिला 2 से 3 दिनों तक रहेगा।
1: इस बीच बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में पौधरोपण महाभियान के तहत लगाए गए 35 करोड़ से अधिक पौधे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार ने उठाए महत्वपूर्ण कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का करेंगे लोकार्पण। श्रीराम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा, आगामी 22 जुलाई को श्रीराम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति पर होगा फैसला। और सरकार ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज पूरे देश में घोषित किया एक दिन का राष्ट्रीय शोक। इसके साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, DRM 1233 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज सुनिए हनुमान प्रसाद गुप्ता का गायन। राग है अहिर भैरव।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना हनुमान प्रसाद गुप्ता का गायन राग था अहिर भैरव। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने को हैं।

0: अब से थोड़ी देर में समाचार प्रभात 8 बजे, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर खबरनामा का प्रसारण होगा हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार, पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
4: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्यवाही को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
5: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण में एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
6: एक प्रकार से PM जय

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
3: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो AI आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री देहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: भोपाल में आज MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6-लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6-लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
6: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रुपए, राजगीर के लिए 4000 रुपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रुपए और कैमूर के लिए 6000 रुपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
1: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉन

0: पूर्ण सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं नव भारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, एक लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश। मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का SIR ब्यौरा अनिवार्य। दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर, अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पश्चिम

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के लिए जो नए कवानीन मंजूर किए थे वो आज से रियासत भर में लागू हो गए हैं। इसरो ने गगनयान अमले के मॉड्यूल निजाम के कामयाब तजर्बे किए हैं। 5 भारतीय तलबा ने 56वें बैन अलाक्वामी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने के तमगे जीते हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने शिमाल मशरकी भारत, मगरबी बंगाल और बिहार में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। अमरीका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं और यानिक सिनर ने अलेक्सेंडर ज्वेरेव को हराकर विमिल्डन मर्दों के सिंगल्स का खिताब अपने पास बरकरार रखा है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के लिए जो 3 कवानीन मंजूर किए थे वो रियासत में आज से लागू हो गए हैं। रियासत के गवर्नर ने समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने के इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। इस साल जून में मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के हंगामी बिलों को मंजूरी दी थी। इन कवानीन में मगरबी बंगाल अवामी हिफाजत और समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने से मुतालिक बिल 2026 और मगरबी बंगाल में नज्म व नसक बरकरार रखने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 शामिल है। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: मगरबी बंगाल अवामी हिफाजत और समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने से मुतालिक कानून 2026 के तहत समाज मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कोई शख्स या वो शख्स जो मुस्तकबिल में इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस हो सकता हो उसे रोकथाम के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। इस तरह के किसी भी शख्स को ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। रियासती सरकार ने कहा है कि इस नए कानून से समाज मुखालिफ सरगर्मियों, फसादात, पुलिस अमले पर हमलों और मुनज्जम जराइम की रोकथाम के लिए फौरी और सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। वज़ीर आला सुविंदु अधिकारी ने इससे पहले कहा था कि मुजाहिरों के नाम पर तशद्दुद या अवामी नज़्म व नस्क में रखना अंदाजी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की कि यह नया कानून ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने में अहम रोल अदा करेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: 5 भारतीय तलबा ने 56वें बैन अलाक़वामी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने के तमगे जीते हैं। ये मुकाबले कोलंबिया के बुकारामांगा शहर में इस महीने की 4 से 12 तारीख के दरमियान मुनाकिद किए गए। ये गैर मामूली कारकर्दगी अंजाम देकर बैन अलाक़वामी सतह पर साइंस की तालीम और महारत के मैदान में भारत ने एक बार फिर अपने बढ़ते हुए कद का मुजाहरा किया है। एक रिपोर्ट।
1: तबियात के 56वें बैन अलाक़वामी ओलंपियाड में इन नौजवान माहिरीन तबियात ने इस गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करके कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। तलाई तमगा जीतने वाले इन नौजवानों के नाम हैं पुणे के कंशिक जैन, इंदौर के रिधर्श आनंद बंदाले, नई दिल्ली के ऋषि गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सूर्या और अहमदाबाद के सावित्र जोशी। इन मुकाबलों में 87 मुल्कों के 381 तलबा ने हिस्सा लिया, जबकि भारत ने रूस, चीन, कजाकिस्तान, जुनूबी कोरिया और ताइवान के साथ मिलकर पहला मकाम हासिल किया है। इस हुसूलियाबी से भारत के ओलंपियाड प्रोग्राम की ताकत का अंदाजा होता है, जिसकी क्यादत साइंसी तालीम के होमी भाभा मरकज ने की, जो बुनियादी तहकीक के टाटा इंस्टीट्यूट का एक कौमी मरकज है। सोमिया शारन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इंटरपोल के डिजिटल फोरेंसिक माहरीन के ग्रुप की 11वीं मीटिंग की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। इस तकरीब के साथ जराइम के तहकीककारों का पहला बैन अलाक़वामी मुकाबला और समिट भी मुनक़िद होगा। ये तकरीब आज गांधीनगर में फोरेंसिक उलूम की कौमी यूनिवर्सिटी के कैंपस में मुनक़िद होगी। इस बावक़ार आलमी फोरम में, जिसकी मेजबानी भारत 2022 से दूसरी बार कर रहा है, आला शख्सियतें शिरकत करेंगी, जिसमें वजीर आला भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र पटेल, नायब वजीर आला हर्ष सांघवी और 47 मुल्कों के कानून नाफिज करने वाले मंदूबीन शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
1: जनाब शाह इस तकरीब के दौरान महारत के 3 सरकर्दा मरकजों का आगाज करेंगे, जिसमें मसनूई जहानत की मदद से जराइम की तफ्तीश, मौके वारदात की देखभाल और भारत के पहले मीडिया फोरेंसिक मरकज पर तवज्जो दी जाएगी। वो मुल्की में तैयार की गई एशिया की पहली साइबर फोरेंसिक तफ्तीशी वैन और मुल्की में तैयार की गई मोबाइल लेबोरेटरी का भी आगाज करेंगे।

0: ईरान के कंट्रोल के दावे को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका के सेक्रेटरी जनरल अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने ईरान और अमेरिका के दरमियान ताज़ा फौजी महाज़राई पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और इस सिलसिले में शदीद इलाकाई और आलमी नतीजे के लिए खबरदार किया है। भारत ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय अमले के अरकान को ले जाते हुए एक कमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले के बाद मगरबी एशिया खित्ते में कशीदगी को फौरी तौर पर खत्म करने के लिए एक बार फिर कहा है। हमले की मजम्मत करते हुए वजारत खारजा ने एक बयान में बताया कि इस जहाज में सवार 11 भारतीय बाशिंदों में से अभी तक 10 को बचाया गया है, जबकि एक बाशिंदे के लापता होने की खबर है। बयान में कहा गया है कि ओमान में भारतीय सिफारतखाना सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है और वो तलाश और बचाव के काम में ओमान के हुक्काम के साथ सरगर्मी के साथ तालमेल रखे हुए है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार में आग लगने की वजह से कम 27 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में 18 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि अस्पताल में 60 से ज्यादा लोग जेर इलाज हैं। ये आग बार में निशब्द के दौरान लगी थी, जिसके बाद आग बुझाने वाला अमला जाए हादसे पर पहुंचा, जिसने फंसे हुए कई लोगों को वहां से निकाला। थाईलैंड के वजीर आजम अनुतिन चरनो रिकोल ने मीडिया के अफराद को बताया कि 27 लाशें बरामद हुई हैं। आग लगने की तहकीकात की जा रही है। बताया जाता है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। बैंकॉक के चतुचाक जिले में यह एक मशहूर रेस्टोरेंट है। विंबलडन टेनिस में इटली के चोटी के खिलाड़ी यानिक सिनर ने कल रात लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में फाइनल में जर्मनी के अलेक्सेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराने के बाद मर्दों का सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। यह सिनर का विंबलडन टेनिस में लगातार दूसरा मर्दों का सिंगल्स का खिताब है। सिनर विंबलडन में मर्दों का सिंगल्स का खिताब कामयाबी के साथ दिफा करने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में इस माह की 26 तारीख को मुल्क के आवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां नशरिया होगा। लोग इस प्रोग्राम के लिए अपने ख्यालात और तजावीज इस टोल फ्री नंबर पर भेज सकते हैं 1-800-117-800। लोग अपनी राय नरेंद्र मोदी ऐप या माई गव ओपन फोरम पर भी भेज सकते हैं। छत्तीसगढ़ असेंबली का मानसून इजलास आज से शुरू हो गया है। ये इजलास इस महीने की 17 तारीख तक जारी रहेगा। इस इजलास के दौरान माली मामलात पर गौर किया जाएगा और रियासती हुकूमत तकरीबन 8 तरमीमी बिलों का भी ऐलान करेगी। इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC के अमृत महोत्सव के दौरान सब्जी के नए सवयार्ड का इफ्तिताह करेंगे। इमदाद बाहमी की वजारत के मुताबिक इस प्रोग्राम के दौरान जनाब शाह एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत पौधा लगाएंगे और APMC के अमृत महोत्सव के मौके पर तैयार की गई एक यादगारी किताब का इजरा करेंगे। भारत ने कतर के मौजूदा अमीर के वालिद शेख हमद बिन अल खलीफा अस्सानी के इंतकाल पर आज एक दिन के कौमी शोक का ऐलान किया है। शेख हमद बिन अल खलीफा अस्सानी का कल इंतकाल हो गया था। मुल्क भर में इस दौरान तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगुं रहेगा। इसके अलावा आज कोई सरकारी तकरीब मुनक़द नहीं की जाएगी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में इस खबर को अहमियत के साथ सफाए अव्वल पर शाया किया है कि ईरान के पासदाना ने इनकलाब के इंतबाह के बावजूद अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि आबनाए हुरमुज उन सभी जहाजों के लिए खुला रहेगा जो कानूनी तौर पर यहां से गुजरना चाहते हैं। रोजनामा इंकलाब की सुर्खी है अम्मान के साहिल पर तिजारती जहाज पर हमला। वजारत खारजा ने सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि कशीदगी को कम किया जाए और सिफारती बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश की जाए।
0: आखिर में खास खास खबरें। मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के लिए जो नए कवानीन मंजूर किए थे वो आज से रियासत भर में लागू हो गए हैं। इसरो ने गगनयान हमले के मॉड्यूल निजाम के कामयाब तजर्बे किए हैं। 5 भारतीय तलबा ने 56वें बैन अलावी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने के तमगे जीते हैं। भारत के महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरकी भारत, मगरबी बंगाल और बिहार में अगले 2-3 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। अमरीका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़। न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच और वेव्स ओटीटी पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गानों का कार्यक्रम मधुरिमा।
1: बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें
3: 0542227658,
4: 0542227658।
5: पेमेंट फेल,
6: पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई।
7: हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, अगर अकाउंट से पैसे कट जाए, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान।
8: नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप।
9: योर बिल,
10: मेरी फीस।
8: आरबीआई कहता है
11: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं आज का पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म संजू से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल ने। संगीत है विक्रम मोन्त्रास का और गीत के बोल हैं शेखर अस्तित्व के। फिल्म संजू।

आइए अब सुनते हैं फिल्म रॉक स्टार से मोहित चौहान की आवाज में, संगीत है AR रहमान का और गीत के बोल हैं जावेद अली के। फिल्म है रॉक स्टार।

0: से हो रहा है। कार्यक्रम मधुरिमा में वक्त है एक छोटे से संदेश का।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: स्वागत है आप सबका एक बार फिर से कार्यक्रम मधुरिमा में, और आइए सुनते हैं फिल्म दिल्ली 6 का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है AR रहमान ने और संगीत भी है AR रहमान का। फिल्म दिल्ली 6।

आप सुन रहे थे फिल्म दिल्ली 6 से ये गीत। आइए अब सुनते हैं फिल्म रंग दे बसंती से मधुश्री और नरेश अय्यर की आवाजों में ये गाना। इसे संगीत दिया है AR रहमान ने और गीत के बोल हैं प्रसून जोशी के। फिल्म है रंग दे बसंती।

आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गानों का कार्यक्रम मधुरिमा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम जिले की हलचल हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: आज सुनिए बलिया और फिरोजाबाद जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बलिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विनय कुमार का।
1: बलिया जनपद में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में 8 जुलाई 2026 को जननायक चंद्रशेखर स्मृति दिवस के अवसर पर कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार शुक्ला, विश्वविद्यालय के अधिकारी, प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों ने जननायक चंद्रशेखर की स्मृतियों को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर चंद्रशेखर नीति अध्ययन केंद्र एवं शोध पीठ के तत्वाधान में लोक स्मृतियों में चंद्रशेखर विषय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार शुक्ल ने कहा कि चंद्रशेखर जी ने भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। चंद्रशेखर जी ने जो संकल्प लिया, दृढ़ इच्छा शक्ति से उसे पूर्ण किया। चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व से विद्यार्थियों को सीख लेनी चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव से कार्य करना चाहिए। संपूर्ण जनपद में अनेक जगह कार्यक्रम कर श्रद्धांजलि दी गयी। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अनुराधा राय ने बताया कि
2: चंद्रशेखर जी के साथ मेरी बचपन की एक अमिट स्मृति अंकित है। जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई के दौरान हमें चंद्रशेखर जी को सुनने और उनसे मिलने के लिए पास के गांव में ले जाया गया। गांव के लोगों की समस्या को सुनकर बेहद ही सरल और स्वाभाविक भोजपुरी में उन्होंने कहा कि आपकी समस्या का निवारण निश्चित होगा। ना कोई बड़े वादे, ना ऊंचा मंच, ना महंगे वस्त्र, एक सामान्य भारतीय व्यक्ति की प्रतिछाया चंद्रशेखर जी।
1: बलिया जिले में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में 29 जुलाई 2026 को प्रस्तावित दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल के संभावित आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार शुक्ल के साथ जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक ओम वीर सिंह एवं मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज ने विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विश्वविद्यालय में दीक्षांत से पहले एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा 10 गांव गोद लिया गया है, जिसमें गांव के शिक्षा, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए समाज कार्य विभाग द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन समय समय पर किया जाता है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग के विभागाध्यक्ष एवं निदेशक शैक्षणिक डॉक्टर पुष्पा मिश्रा ने बताया कि
3: जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के अष्टम दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में समाज कार्य विभाग द्वारा 7 जुलाई से 10 जुलाई तक विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांवों में प्राथमिक, उच्चतर प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए चित्रकला, भाषण प्रतियोगिता एवं कहानी लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में रचनात्मक अभिव्यक्ति की क्षमता, भाषाई दक्षता, आत्मविश्वास तथा देशभक्ति की भावना का विकास करना था।
1: बलिया में दानवीर भामाशाह की जयंती विकास भवन सभागार में राज्य कर विभाग द्वारा व्यापारी कल्याण दिवस आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्षता प्रदेश के परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं दानवीर भामाशाह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक गीत संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही भामाशाह के चित्रों एवं लघु फिल्म के माध्यम से उनके जीवन, व्यक्तित्व और राष्ट्र सेवा में दिए गए योगदान को उपस्थित लोगों के सामने प्रदर्शित किया गया। मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जिले के 10 प्रमुख करदाताओं को भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया। इसके अलावा विभिन्न नए उद्यमियों एवं करदाताओं को भी सम्मानित कर उनके योगदान की सराहना की। कार्यक्रम में बलिया के उद्यमियों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP के तहत सत्तू और बिंदी के आकर्षक स्टॉल लगाए। वहीं खादी ग्राम उद्योग विभाग एवं सूचना विभाग द्वारा भी प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें विभागीय योजनाओं और उत्पादों की जानकारी दी गई। बलिया जनपद में संचारी रोगों की रोकथाम एवं जन जागरूकता के उद्देश्य से संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया गया। जिला अस्पताल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभय नारायण राय एवं कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संतोष चौधरी ने अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने

0: सभी को संचारी रोगों से बचाव की शपथ दिलाई गई तथा जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभय नारायण राय ने बताया कि अभियान के दौरान डेंगू, मलेरिया, दिमागी बुखार समेत अन्य संचारी रोगों के लक्षण वाले मरीजों की पहचान और समय पर उपचार पर विशेष जोर दिया जाएगा। वेक्टर वार डिजीज के नोडल अधिकारी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने बताया कि 31 जुलाई तक चलने वाले दस्तक अभियान के तहत आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, फाइलेरिया, कालाजार, कुष्ठ रोग सहित अन्य संचारी रोगों के बचाव के प्रति जागरूक करेंगे।
1: बलिया जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं फिरोजाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है लियाकत अली का।
2: फिरोजाबाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर बब्बू सारंग ने घटना से 40 दिन के अंदर ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसका सभी ने सम्मान करते हुए तारीफ की जा रही है। 1.5 वर्ष के मासूम की हत्या करने वाले को दोषी ठहराते हुए सजाए मौत की सजा खुले न्यायालय में सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि 30 मई 2024 को दिन दहाड़े 2:30 बजे जितेंद्र पाठक उर्फ बिराज ने फिरोजाबाद के थाना शुकाहबाद क्षेत्र यादव कॉलोनी में मासूम बच्चे की हत्या कर दी थी। उन्होंने बताया कि ये घटना जिले में चर्चा से बनी हुई थी। पुलिस ने मात्र 6 दिन में आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया और मात्र 1 माह 9 दिन में न्यायालय ने फैसला आ गया। DGC राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि
3: 1.5 वर्ष के बच्चे की इस विराज अभियुक्त जो है निर्मम हत्या की थी। DM साहब जनपद फिरोजाबाद और SSP साहब विशेष निर्देशन था, उसी के तहत माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने सारे गवाह और बहस के उपरांत उस विराज को मृत्यु दंड की सजा से मुकर्रर किया है।
2: फिरोजाबाद जिले में तेज आंधी और वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और अलग अलग हादसों में जन एवं पशु हानि हुई है। पिछले दिनों फरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चिड़रई गांव में तेज आंधी और तूफान के दौरान हुए एक दर्दनाक हादसे में 4 ग्रामीणों की असमय मृत हो गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अनुसार मौसम अचानक खराब होने और तेज हवा चलने के कारण गाँव के पास ही स्थित एक पुराना और विशाल पेड़ जड़ से उखड़ कर जमीन पर जा गिरा। जिस समय ये घटना घटी उस समय पेड़ के नीचे से गुजर रहे एक ऑटो और एक मोटरसाइकिल चपेट में आ गए। इस दुखद हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया था। प्रशासन की ओर से मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया गया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। फिरोजाबाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। शासन द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं के तहत बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिए जा रहे हैं और निजी स्कूलों में भी ऑनलाइन आवेदन करने की पर फ्री शिक्षा दिए जाने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बच्चों को शासन द्वारा पैसा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। शासन की मंशा है कि कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहे और गरीब मजदूर के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसी राह पर चलते हुए फिरोजाबाद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार परिहार शासन के आदेशों का पालन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि
4: सरकारी स्कूल नजदीक नहीं होते हैं तो प्राइवेट स्कूल में भी बच्चे हमारे एडमिशन ले सकते हैं। उसके तहत सरकार ने जो है RTE एक्ट के तहत प्रावधान किया हुआ है। जो जनरल के लोग हैं 1 लाख से इनकम कम है वो, साथ ही साथ जैसे SC ST के लोग हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए जो है मार्च में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आता है और अप्लाई करके वो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके लिए जो बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो RTE एक्ट के तहत जो है गवर्नमेंट उसके लिए सब्सिडाइज जो है उन्हीं के खाते में प्रोवाइड करा देती है।
2: फिरोजाबाद में स्वस्थ शासकीय राज चिकित्सा महाविद्यालय में डॉक्टर योगेश कुमार गोयल प्रधानाचार्य के मार्गदर्शन में आम जनमानस को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयासों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। यहां किडनी रोगियों को बेहतर, त्वरित और निःशुल्क उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी जन कल्याणकारी क्रम में चिकित्सालय परिसर में डायलिसिस विभाग में मुख्य अतिथि सदर विधायक मनीष ससिया द्वारा 5 नई आधुनिक डायलिसिस मशीनों का लोकार्पण किया गया। इस नए विस्तार के बाद अब फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस विभाग में कुल मशीनों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में 5 नई डायलिसिस मशीनें लगने से अब गरीब मरीजों को भी इलाज के लिए आगरा या दिल्ली जैसे बड़े शहरों में दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। 25 मशीनों की इस संयुक्त क्षमता से मरीजों को समय पर विश्व स्तरीय इलाज पूरी तरह निःशुल्क मिलेगा। मशीनों की संख्या बढ़ने से अब प्रतिदिन डायलिसिस कराने वाले किडनी रोगियों की क्षमता में भारी इजाफा होगा, जिससे स्थानीय और ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंद मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

मीडियम वेव 241.54 मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। आज की पहली सूचना हमें प्राप्त है पुलिस अधीक्षक कार्यालय थाना जिला चंदौली थाना सकलडीहा से। इस सूचना के अनुसार ममता देवी पत्नी बाबूलाल गुप्ता निवासी ग्राम बरठी थाना सकलडीहा जनपद चंदौली ये दिनांक 25 मई 2026 से लापता हैं। इनकी आयु 25 वर्ष कद 5 फीट रंग गेहूं बताया गया है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया था तो इन्होंने साड़ी पहन रखा था। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो तो आप अपने नज़दीकी थाने या थाना सकलडीहा जनपद चंदौली से संपर्क कर सकते हैं। इसी क्रम में थाना सकलडीहा जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार रानी देवी पत्नी संजय राय निवासी ग्राम तेंदुई सकलडीहा चंदौली की है। ये दिनांक 24 जून 2026 से लापता हैं। इनकी आयु 35 वर्ष कद 5 फीट 8 इंच और रंग गेहूं बताया गया। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो तो आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय चंदौली थाना सकलडीहा को सूचित कर सकते हैं। इसी क्रम में थाना चकिया जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार सोनम पत्नी राम भरोस निवासी भीषमपुर थाना चकिया की है जो दिनांक 21 जून 2026 से लापता है। इनकी आयु 26 वर्ष कद 4 फीट 8 इंच रंग गेहूं है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इन्होंने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो तो आप थाना चकिया पुलिस अधीक्षक कार्यालय चंदौली को सूचित कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय चंदौली थाना सैयद राजा से प्राप्त सूचना के अनुसार निकिता सिंह पत्नी राज सिंह निवासी ग्राम पुसुड़ा थाना सैयद राजा जिला चंदौली निकिता सिंह दिनांक 7 जून 2026 सुबह 10 बजे से लापता है। इनकी आयु 26 वर्ष रंग गोरा और बदन एकहरा बताया गया। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया था तो इन्होंने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो तो आप अपने नज़दीकी थाने या थाना सैयद राजा जिला चंदौली से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक कार्यालय चंदौली थाना बबुरी से प्राप्त सूचना के अनुसार तनु पुत्री सुनील पांडे निवासी पचोखर बबुरी चंदौली ये दिनांक 4 जून 2026 सुबह 5 बजे से लापता हैं। इनकी आयु 24 वर्ष कद 5 फीट 2 इंच और रंग गोरा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इन्होंने सफ़ेद और गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो तो आप अपने नज़दीकी थाने या थाना बबुरी जनपद चंदौली को सूचित कर सकते हैं। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम। ये कार्यक्रम रिले होगा हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: 101.6 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: हवा के दोष पर उड़ती हुई आवाज है अपनी, दिलों तक पहुंचना ही परवाज है अपनी। इन्हीं खूबसूरत अल्फाजों और जज्बातों के साथ आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज पर तैयार उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं आपकी मेजबान निकहत सिद्दीकी। कबूल करें मेरा आदाब। सामिन, आज उर्दू बज्म में हम आपके लिए लेकर आए हैं मकाला नाजिश प्रतापगढ़ी की शायरी में इंसानियत और रवादारी का पैगाम, और कलामी शायर के तहत सुनिएगा खुर्शीद अंबर से उनका कलाम। सबसे पहले समाअत फरमाइए डॉक्टर नौशाद कामरान से मकाला नाजिश प्रतापगढ़ी की शायरी में इंसानियत और रवादारी का पैगाम।
2: दुनिया में मुख्तलिफ अहद व मकाम की तारीख इस बात की शाहिद है कि अदब और अदीबों ने हर दौर में इंसान के दर्द गम को साझा किया है, और मुखालिफ हालात में भी बनी नू इंसान के दर्द गम का मदावा करने की सही एहसन की है। अदीबों और शायरों ने न सिर्फ जुल्म की सियाह रातों में उम्मीद के दिए रोशन किए हैं, बल्कि बादे मुखालिफ की चोट से शल हो चुके बाजुओं को हिम्मत व हौसला मंदी के बालों पर भी अता किए हैं। जहाँ तक उर्दू शायरी का मामला है, हम बिला खौफ तरदीद ये बात कह सकते हैं कि उर्दू शायरी में इंसानियत और दर्दमंदी का पैगाम देने की एक सेहतमंद और तवाना रिवायत मौजूद रही है। उर्दू के अक्सर शोरा ने अमन आश्ती के गीत गाए हैं, और उखुवत, मोहब्बत, दर्दमंदी और हुबुल वतनी के मजामीन से अपने शेरी आफाक को आरास्ता किया है। इन शोरा ने अपने कलाम के जरिए मुल्क में इत्तेहाद इत्तेफाक और सियासी, समाजी, मुआशी, मुआशरती इस्तेकरार और इस्तेहकाम की तमन्ना की है। इन शोरा की फहरिस्त में एक नुमाया नाम नाजिश प्रतापगढ़ी का है। उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ से ताल्लुक रखने वाले शायर नाजिश प्रतापगढ़ी अपने फन की बुनियाद पर उर्दू शायरी के उफुक पर एक तापनाक सितारे की मानिंद रोशन हुए। उनके कलाम ने एहतशाम हुसैन, मोहम्मद हसन, नियाज फतेहपुरी, फिराक और ताबा जैसे जैयद नक्काद और शोरा से अपने हक में महजर शहादत लिखवाई। नाजिश प्रतापगढ़ी इंतहाई शरीफ उन्नफ्स, नेक दिल और दर्दमंद इंसान थे। वो अपने गिर्द पेश के हालात से बाखबर थे। वो जिंदगी और जिंदगी के मसायल से आँख मिलाने को सआदत गर्दानते थे। हकीकी दुनिया और अर्जी मामलात से परे तसव्वुरात की करिश्माती दुनिया में महल तामीर करने का रुझान उनकी शायरी का हिस्सा नहीं, शायद यही वजह है कि वो ताउम्र तरक्की पसंद ख्यालात के गर्विदा रहे। उन्होंने अपने मुताल्लिक खुद बयान किया है कि वो किसी खारजी सबब से तरक्की पसंद तहरीक की तरफ मायल नहीं हुए, बल्कि इस तहरीक के मकासद से उन्हें तबाही रगबत थी। उनकी शायरी का मुताला करने के बाद ये बात वसूख के साथ कही जा सकती है, क्योंकि रस्मी तौर पर इस तहरीक से दिलचस्पी रखने वाला शायर इस पाये की शायरी नहीं कर सकता जैसी नाजिश प्रतापगढ़ के नोके कलम का समरा है। कदम कदम जिंदगी से जिंदगी की तरफ नगमे सरमदी, नया साज, नया अंदाज, मताए कलम, दर्द तहजाम जहां और भी हैं, चरखे वतन के महरुमा और अपनी धरती अपनी बात वगैरह नाजिश प्रतापगढ़ी के बेहतरीन शेरी मजमुए हैं। इन मजमुओं का उनवान कायम करने में भी शायर ने खल्लाकाना महारत का सबूत दिया है। अपने क्लासी की रचाओ, तगज़ुल की हलावत और दर्द की हल्की हल्की सोजिश की वजह से उनकी शायरी कारी के दिल पर खुशगवार असर मुरतब करती है। नज़्म कदम कदम के चंद मिसरे मुलाहजा हों। न बूए गुल न मौजे बादए सहरी, ये जस्तजू है हमारी वो काविशे सहरी, दुआ मलक की न कोई फसून जिन्नो परी, बदल रही है मुकद्दर को कुव्वत बशरी। और ये मिसरे भी देखिए, कफस की टूटी हुई तीलियों ने उलझाया, मिली जो हमको दवाए गमे शिकस्त परी, नसीम सुबह ने सुम्बुल की जुल्फ बिखरा दी, जो चाके दामने गुल की हुई है पखियागरी। नाजिश प्रतापगढ़ी की शायरी का मुताला करने पर बादियों नजर में ही ये बात जाहिर हो जाती है कि इसमें इंसानियत का दर्द बदरजाए अतम मौजूद है। उनकी शायरी में नज्मों और गजलों का रंग बड़ी हद तक मुख्तलिफ है। उनकी नज्में जहाँ सियासी, समाजी और इस्लाही मौजूद का महाकमा करती हैं, वहीं उनकी गजलें इंसान की दाखिलियत और जाती तजुर्बों की पेचीदगियों को रोशन करती हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि इन गजलों में भी गम को महसूस करने और उसकी टीस को बरूए कार लाने का पहलू गालिब है। सियासी, समाजी मजामीन को बरतने की शदीद ख्वाहिश कभी कभी शायर को बेरारो भी कर देती है, और उनकी शायरी नाराबाजी या सहाफत महज होकर रह जाती है। इसी तरह इंसान के जाती कर्ब और दाखिली कैफियात को गिरफ्त में लेकर एतदाल के साथ उन्हें शेर के गालिब में ढाल देना जबरदस्त फनकारी का मुतकाजी है, क्योंकि इसमें हद तजावुज करने या शेरियत के जायल होने का खतरा हमा वक्त बना रहता है। नाजिश प्रतापगढ़ी ने यह चैलेंज कबूल किया और तारीफ और तनकीद की परवाह किए बगैर वैसी ही शायरी करते रहे जैसी उनकी तबीयत को रास आई। अपने बारे में नाजिश लिखते हैं, अपनी इब्तदाई शायरी 1937 से लेकर आज तक मैं जहनी एतबार से तरक्की

0: थे क्या चीज है माने अंबर, दश्त की सैर से क्या चीज है माने अंबर, शेरे नर तुम हो तो किस बात का तुमको भय है, शेरे नर तुम हो तो किस बात का तुमको भय है। आइए एक और गजल का मतला और कुछ अशार पेश खिदमत हैं कि हो लाख बाशऊर मगर बेवकार है, हो लाख बाशऊर मगर बेवकार है, जिस आदमी के पास न बंगला न कार है, जिस आदमी के पास न बंगला न कार है। आती हैं जो नजर मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ, आती हैं जो नजर मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ, ये उम्र का असर नहीं गुर्बत की मार है, ये उम्र का असर नहीं गुर्बत की मार है। उतनी ही पस्ता कामती पर्दे में है छुपी, उतनी ही पस्ता कामती पर्दे में है छुपी, जिस आदमी का जितना बड़ा इश्तिहार है, जिस आदमी का जितना बड़ा इश्तिहार है। और शेर देखिए कि हुस्ने ख्याल हुस्ने अमल एक करके देख, हुस्ने ख्याल हुस्ने अमल एक करके देख, हर आदमी के हाथ में फूलों का हार है, हर आदमी के हाथ में फूलों का हार है। ये जानकर खुशी नहीं बेहद खुशी हुई, ये जानकर खुशी नहीं बेहद खुशी हुई, कोई तुम्हारा और भी उम्मीदवार है, कोई तुम्हारा और भी उम्मीदवार है। सोचो तो किस तरह से गुजारी है जिंदगी, सोचो तो किस तरह से गुजारी है जिंदगी, कातिल भी कत्ल करके मुझे सोगवार है, कातिल भी कत्ल करके मुझे सोगवार है। हर बार लुट रहा हूँ जो मंजिल के आसपास, हर बार लुट रहा हूँ जो मंजिल के आसपास, कैसे कहूँ मशीयते परवरदिगार है, कैसे कहूँ मशीयते परवरदिगार है। क्यों बार बार जाता हूँ दहलीज की तरफ, क्यों बार बार जाता हूँ दहलीज की तरफ, आखिर ये किसका आज मुझे इंतजार है, आखिर ये किसका आज मुझे इंतजार है। और मुझको नहीं है पेशिए गर्दन में कुछ दरेग, मुझको नहीं है पेशिए गर्दन में कुछ दरेग, तू आजमा ले गर तेरे खंजर में धार है, तू आजमा ले गर तेरे खंजर में धार है। और मकता है कि अंबर के बारे में तुम्हें धोखा ना हो कोई, अंबर के बारे में तुम्हें धोखा ना हो कोई, वो देखने में सिर्फ तगाफुल शियार है, वो देखने में सिर्फ तगाफुल शियार है। और एक गजल का मतला और चंद अशार और हाजिर खिदमत हैं कि एक कतरा ही दे दे जो तुझे आर नहीं है, एक कतरा ही दे दे जो तुझे आर नहीं है, वैसे भी समुंदर मुझे दरकार नहीं है, वैसे भी समुंदर मुझे दरकार नहीं है। और शेर मुलादा फरमाइए कि अच्छा है कि पत्थर से नहीं है तेरी तखलीक, अच्छा है कि पत्थर से नहीं है तेरी तखलीक, जब खाक से बनकर तू लचकदार नहीं है, जब खाक से बनकर तू लचकदार नहीं है। ये कैसा जमाना है कि अब कोई पड़ोसी, ये कैसा जमाना है कि अब कोई पड़ोसी, दो बात भी करने को रवादार नहीं है, दो बात भी करने को रवादार नहीं है। मुश्किल है गिरा पाना उसे अंधे कुएं में, मुश्किल है गिरा पाना उसे अंधे कुएं में, जो शख्स के ख्वाबों का परस्तार नहीं है, जो शख्स के ख्वाबों का परस्तार नहीं है। मैं सबका गुनहगार हूँ तस्लीम है मुझको, मैं सबका गुनहगार हूँ तस्लीम है मुझको, और ये भी कोई मेरा गुनहगार नहीं है, और ये भी कोई मेरा गुनहगार नहीं है।
1: अभी आप जनाब खुर्शीद अंबर से उनका कलाम समाप्त फरमा रहे थे। और इसी के साथ आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज पर तैयार उर्दू प्रोग्राम को खत्म करने की इजाजत दें। अपनी मेजबान निकहत सिद्दीकी को इस प्रोग्राम की पेशकश थी प्रदीप कुमार मिश्र की।
2: उर्दू समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज सुनते हैं राम अवतार सिंह यादव का गाया आल्हा गीत। इस छोटे से संदेश के बाद
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं।

0: बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत में राम अवतार सिंह यादव का ये आल्हा गीत।

ਪਰਿਆ ਪਲਕੀ ਪੂਨਾ ਹੋਈਆ ਪਰਿਆਰਾ ਰਾਜਾ ਪਾਂਚ ਕਦਮ ਪੀਛੇ ਹਟ ਗਈ ਲੈ

आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना राम अवतार सिंह यादव का गाया आल्हा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं पहला गीत फिल्म आनंद से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है मन्ना डे ने। गीत के बोल हैं योगेश के और संगीत है सलिल चौधरी का। फिल्म आनंद से।

0: कभी तो हंसाए।
1: आप सुन रहे थे आनंद फिल्म का ये गीत। आइए, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गोलमाल से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है किशोर कुमार ने, संगीत है आर डी बर्मन का और गीत के बोल हैं गुलजार के। फिल्म गोलमाल।

अब सुनते हैं फिल्म धर्म करम से मुकेश की आवाज़ में ये गाना। इस गाने को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने और गाने के बोल हैं मजरूह सुल्तानपुरी के। फिल्म है धर्म करम।

आप सुन रहे थे फिल्म धर्म करम का ये गीत। अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म इम्तिहान से। इस गाने को आवाज़ दी है किशोर कुमार ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत के बोल हैं मजरूह सुल्तानपुरी के। फिल्म है इम्तिहान।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म इम्तिहान से ये गीत। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सफ़र से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है मुकेश ने। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और गीत के बोल हैं इंदिवर के। फिल्म है सफ़र।

फिल्म सफ़र का ये गीत आप सुन रहे थे। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मदर इंडिया से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। संगीत है नौशाद का और गीत के बोल हैं शकील बदायूं के। फिल्म मदर इंडिया से।

फिल्म मदर इंडिया से आप सुन रहे थे ये बेहतरीन गाना। आइए अब सुनते हैं फिल्म मिस्टर इंडिया का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है किशोर कुमार ने। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत के बोल हैं जावेद अख्तर के। फिल्म मिस्टर इंडिया।

मिस्टर इंडिया का ये गाना आप सुन रहे थे आपके पसंदीदा कार्यक्रम झनकार में। प्रसारण आकाशवाणी वाराणसी केंद्र से हो रहा है। आइए फिल्म अनाड़ी से मुकेश की आवाज़ में ये गाना आपको सुनवा रहे हैं, जिस गाने के बोल हैं शैलेंद्र के और संगीत है शंकर जयकिशन का। फिल्म है अनाड़ी।

फिल्म अनाड़ी का ये गीत आप सुन रहे थे। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म सदमा से, सुरेश वाडेकर की आवाज़ है, संगीत है इलय राजा का और गीत के बोल हैं गुलजार के, फिल्म सदमा।

फिल्म सदमा का ये गीत आप सुन रहे थे सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में। आइए सुनते हैं फिल्म मासूम से। अनूप घोषाल की आवाज़ है, संगीत है आर डी बर्मन का और गीत के बोल हैं गुलजार के। फिल्म है मासूम।

आप सुन रहे थे फिल्म मासूम से ये गाना आपके पसंदीदा कार्यक्रम झनकार में। आइए आज के कार्यक्रम का ये आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म खट्टा मीठा से। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, संगीत है राजेश रोशन का, गीत के बोल हैं गुलजार के। फिल्म खट्टा मीठा।

0: खट्टा मीठा इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: जी हाँ श्रोताओ, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक, आपके मोबाइल सेट पर। जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहाँ भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी, और हर पल

0: हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो, आकाशवाणी वाराणसी। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुने फिल्म संगीत। सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पुष्पांजलि फिल्म का गाना मुकेश की आवाज में। गीत आनंद बख्शी का, संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुने ये गीत।

पुष्पांजलि फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत था जिसकी तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए आप सुने शोर फिल्म का गाना। आवाजें मुकेश और लता मंगेशकर की हैं, गीत संतोष आनंद का, संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे शोर फिल्म का गाना, जिसे लिखा था संतोष आनंद ने, संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम में अगला गाना उपकार फिल्म का। आवाज मन्ना डे की है, गीत इंदिवर का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुने उपकार फिल्म का ये गाना।

उपकार फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में। इंदिवर का लिखा ये गीत था जिसकी तर्ज बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। और अब कार्यक्रम में अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, आवाज मन्ना डे की है, गीत इंदिवर का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, और फिल्म का नाम है सफर।

सफर फिल्म का ये गाना भी आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में। इंदिवर का लिखा ये गीत था जिसकी तर्ज बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। और अब कार्यक्रम में अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फकीरा फिल्म से। आवाज महेंद्र कपूर की है, गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

0: फकीरा फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। श्रोताओं, आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी, अब नए अंदाज में FM 100.6 पर। सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। और साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH, DRM, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेव्स OTT पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां हैं आप वहीं हमारा साथ।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं हीरो फिल्म का। आवाज रेशमा की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत से सवारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुने हीरो फिल्म का ये गाना।

रेशमा की आवाज में अभी आप सुन रहे थे हीरो फिल्म का गाना, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है मेरी जंग। आवाजें हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मेरी जंग इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में गीत आनंद बख्शी का था, संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है तीसरी कसम, आवाज मुकेश की, गीत हसरत जयपुरी का, संगीत शंकर जयकिशन का।

तीसरी कसम फिल्म का ये गाना भी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत था जिसकी तर्ज बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब कार्यक्रम में हम अगला गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं क्रांति फिल्म का। आवाजें हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की, गीत संतोष आनंद का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए सुने ये गाना।

लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में अभी आप सुन रहे थे क्रांति फिल्म का गाना, जिसे लिखा था संतोष आनंद ने, संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला और अंतिम गाना थानेदार फिल्म से। आवाजें हैं आशा भोसले, अमित कुमार और रीमा लहरी की, गीत अनजान का, संगीत बप्पी लहरी का।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार और जय जोहर। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
2: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
1: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था। प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है या सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे।
2: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था। इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
1: आगे आप लिखते हैं।

0: सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है। यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनआर प्रसाद जी और अखिला जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी रामदुलारी जी का।
1: जी इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षा प्रद, प्रेरणा प्रद और ज्ञान वर्धक होता है। हम तो नियमित श्रोता हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
1: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाएं तो बहुत इनायत होगी। आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी
0: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
1: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
0: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि मातृवृक्ष किसे कहते हैं और क्यों।
1: श्रोताओं इसका जवाब जान लेते हैं। मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं।
0: जी, और हमारा दूसरा प्रश्न था पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है। कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है। साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
0: जी, हमारा अगला प्रश्न था क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
1: जी इसका जवाब भी जान लेते हैं। बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
0: जी अशोता, हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने आपसे पूछा था जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो उदाहरण दीजिए।
1: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
0: जी तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है कंगारू के कितने पैर होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कंगारू के कितने पैर होते हैं।
0: 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।
2: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद,
3: सारी फसल बह गई।
4: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन

0: जानकारी से भरपूर कहानी कहानी सरितपुर की। साथियों, बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी माँ की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता। वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई, और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
1: लो भाई, पहुंच गए सरितपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई, मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
2: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
1: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। कितना साफ पानी है।
0: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए। और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे, और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
1: अरे काट काट काट, मेरा भी क्या देख रहा, काट।
3: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
0: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए, और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
4: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
0: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
1: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
2: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था। लोग कहते,
2: उफ, इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
1: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
5: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
0: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे, और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा।

0: और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
1: हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा।
2: लगता है नदी प्रदूषित हो गई है।
1: क्या?
3: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे फसल बर्बाद,
2: सारी फसल बह गई।
1: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा।
2: चलो जल्दी,
1: सारे सामान तो ऊपर ले जाना होगा।
2: चलो जल्दी ऊपर।
1: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो जल्दी, चलो
2: चलो चलो।
1: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप आप ना आ जाए।
2: ध्यान से संभल कर।
0: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
4: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी। बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
5: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा। शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। श्रोताओं, आपको अवश्य ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है एक गांव की कहानी।

ये बात बहुत पुरानी है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे। घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना। उनकी

सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोक गीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं, मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा लाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता। मैं ही जीवन हूं धरती का, मुझे नष्ट मत करो। मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान।

0: रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी। वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती। जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।
1: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहाँ निकल गई है तू? अकेली जंगल में दूर मत जा।
2: अरे चाची, मैं यहीं तो हूँ। अरे चाची,
1: हाँ,
2: यहाँ आकर तो देखो।
1: हाँ हाँ,
2: कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के।
1: हाँ,
2: सबको यहीं पे बुला लो चाची।
1: हाँ हाँ,
2: सात आठ छत्ते तो होंगे ही।
1: अरे ओ रेवती,
2: अरे सुनो तो, श्यामा।
3: हाँ चाची।
2: जिंदौरी।
3: हाँ चाची।
2: और
1: हाय हाय, ये नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। हाँ प्रसन्नी, अरे सब इधर आओ, जरा सुनो तो, ये गौरा क्या कह रही है।
3: आ रही हूँ चाची।
2: हाँ चाची।
4: क्या है चाची?
1: क्या हुआ?
4: कोई घबराने
1: वाली बात नहीं है री।
4: हाँ?
1: वो गौरा कह रही है कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं।
4: हाँ? छत्ते? क्या मतलब?
1: हाँ हाँ छत्ते, वो भी दो तीन नहीं, बड़े बड़े सात आठ छत्ते लगे हैं। हाँ,
4: सात आठ छत्ते। कमाल है।
3: अरे फिर तो मजा आ गया।
4: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो दो गगरी पर तो हो ही जाएगा।
5: अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद, अब तक कहीं नहीं मिला, और आज मिला है तो
3: चप्पर फाड़ गए।
4: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं।
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं, शहद निकालने के बाद दांतों भी तोड़ लेंगे।
3: अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं।
4: हाँ ठीक है ना, चल चलते हैं।

तो ऐसा था वहां का दैनिक जीवन। जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तूण, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।

0: कहीं गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
1: आवाज? आवाज तो आ रही है। अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है। मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वो देख गौरा। अरे हाँ, वो साल के बड़े पेड़ के पास।
2: हाँ वही,
1: न जाने कौन लोग हैं।
0: पता नहीं कौन लोग हैं।
1: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाज ही ना सुन ले। चलो और नजदीक चल के देखते हैं।
0: चलो खाकी पैंट, सिर पर टोपी और हाथों में बंदूक भी है। ये गांव के लोग तो नहीं लगते।
1: अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं, जो पेड़ काटने आए हैं।
0: अरे अरे देखो तो, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
1: हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे।
2: मगर कैसे? भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है? और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं।
1: अरे भले ही हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकना ही है। मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं। सुनो सुनो, मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं। वो रास्ता छोटा रहेगा।
3: तो बस फिर क्या था, गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी। कटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए, खरोंचे लगी, प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया, पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए। मगर बिना रुके वो दौड़ती रही दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।
0: हाय राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा?
1: अरे गांव में मर्द नहीं है तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है ना, हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा।
2: हाँ, ठीक है, मगर ये औरतें और बच्चे।
1: अरे अगर मगर मत कर, क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है? हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी।
2: हाँ,
1: नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। अरे कोई है? अरे बाहर निकलो, चाची।
4: हाँ क्या बात है?
1: बुआ जल्दी बाहर आओ, शहर के लोग हमारा जंगल काट रहे हैं।
4: क्या जंगल?
1: जल्दी आओ,
3: और फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने। उसके साथ 21 स्त्रियां और 7 बच्चे थे, सभी के सभी निहत्थे थे। उन्हें एक तरकीब सूझी। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जगह जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया, ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो ये संभव ना हो सके। अब सारी स्त्रियां आगे बढ़ी और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे।
1: सुनो, वृक्ष हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं, इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब उन्हें काटा जा रहा है तो आओ अपने प्राणों की आहुति देकर इनकी रक्षा करें।

0: बात तू तो हमारे गांव का ही है, मार अपनी बहनों को।
1: अरे साथियों देखते क्या हो, आगे बढ़ो और ये पकड़कर पैरों से अलग कर दो।
2: इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
3: चिब्बू भाग ले यहां से,
4: बाद में
2: सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
5: वाह भैया, गौरा ने तो बहुत कमाल का काम कर दिया।
6: ऐसी चिपकी पेड़ से किसने छोड़ा ही पेड़ को। अरे
7: क्या बात
6: भाई, गौरा बहुत कमाल कर दिया।
7: जीतती रहे मिट्टी, जीतती
0: रहे। ये तो हम सबका कर्तव्य है।
2: दोस्तों इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है।
8: एक गांव की कहानी अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
9: और विमलेश को
8: कुसुमलता,
9: जगबंधु,
8: चेतना
9: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
8: नमस्कार, नमस्कार।
10: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं लोकेश शुक्ला। आइए सुनके इनकी आवाज में ये भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं लोकेश शुक्ला के गाए भजन। आइए सुने इनका गाया अगला भजन।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लोकेश शुक्ला के गाए भजन। इसके साथ ही सुगम संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सारंगी वादन। कलाकार हैं मोइनुद्दीन खान, राग भटियार।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मोइनुद्दीन खान का सारंगी वादन। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने ऐसा झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। नई दिल्ली

0: आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सभी मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए मात्र एक महीने में 4 नई खेप के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इनमें नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरि, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया, 6th नीलगिरि श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है, इसे इस महीने की 11 तारीख को शामिल किया गया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टर्स और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजेस पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड में भी अगले 2 दिन तक सामान्य बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 और 9 सेकंड हुए हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं। उसके बाद हम आपको बताएंगे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत। लीजिए पहले सुन लीजिए खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं। थाना रोहनिया जनपद कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार रोली सोनकर, जिनके पिता का नाम है कल्लू सोनकर, पता है ग्राम बच्छाव महामना स्कूल के पास वाराणसी, ये पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। इनकी आयु है 20 वर्ष, लंबाई 4 फिट, रंग सांवला, चेहरा गोल है और घटना के समय इन्होंने स्कूल ड्रेस पहना हुआ है। इनके विषय में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। थाना रोहनिया जनपद कमिश्नरेट वाराणसी। थाना लंका जनपद कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार खुशी गर्ग, जिनके पिता का नाम है श्री गोविंद प्रसाद गर्ग, पता है मलैया रमना सामने घाट, इनका होलिया इस प्रकार है, ये पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। इनकी आयु है 21 वर्ष, लंबाई 5 फुट 4 इंच, रंग गोरा है। घटना के समय इन्होंने नारंगी टी शर्ट, नीला सफ़ेद छीटदार लोअर पहना हुआ है। इनके विषय में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। थाना लंका जनपद वाराणसी, मोबाइल नंबर 9793297314 और 6393265269। थाना मंडुआडी जनपद वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार बबीता कुमारी, इनके पिता का नाम है श्री पांचू राम, पता है राजभर बस्ती ग्राम लखनपुर पोस्ट भुल्लनपुर वाराणसी, ये पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। इनका

या इस प्रकार है, इनकी आयु है 22 वर्ष, लंबाई 4 फुट 8 इंच, रंग सांवला है। घटना के समय इन्होंने काले रंग का सूट और बैंगनी रंग का सलवार पहना हुआ है। इनके विषय में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें, थाना मंडुआडी, जनपद वाराणसी, मोबाइल नंबर 9454404393। इसके साथ ही खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं समाप्त हुईं। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा उस्ताद बिस्मिल्ला खां और विदुषी एन राजम का युगल शहनाई और वायलिन वादन। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे कवि गोष्ठी। प्रतिभागी होंगे डॉक्टर लियाकत अली, डॉक्टर मुक्ता और सुरेश कुमार। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन सुनिएगा रात 9:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:00 आज की कलाकार होंगी रेवती साकलकर। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आप सुनेंगे डॉक्टर मुकेश कुमार श्रीवास्तव से सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत, जिसका विषय होगा कृषि में AI तकनीक की उपयोगिता। साथ ही किसान भाई सुनेंगे लोकगीत। युवा साथी अपने कार्यक्रम युवाणी में शाम 5:15 पर गीत संगीत के साथ ही सुनेंगे आज की बात। यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और प्रिया पाठक की वार्ता का विषय होगा साइबर बुलिंग पहचान और रोकथाम। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर बहने गीत संगीत और सेहत ज्ञान के साथ ही सुनेंगी आहार विशेषज्ञ निशा प्रकाश से आकांक्षा सिंह की बातचीत, जिसका विषय होगा बच्चों का पौष्टिक टिफिन आसान और स्वस्थ विकल्प। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और लखनऊ के रुकने पार्लियामेंट ने आज लखनऊ के केडीएमयू के 22वें यौम तासीस प्रोग्राम को खिताब किया। वजीर दिफा ने कहा कि केडीएमयू ने मुल्क को ऐसे डॉक्टर्स दिए हैं जिन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री और डॉक्टर बीसी राय जैसे एजाज से नवाजा गया है। उन्होंने कहा कि आज डिग्री हासिल करने वाले तलबा एक मुस्तहकम रवायत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करेंगे। बाकी तफसील हमारे नामानिगार से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। दोनों शहरों के बीच कार से यात्रा करने पर टोल 275 रुपए होगा और इस पर दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं होगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज के करीब बनने वाले 4 लेन के फ्लाईओवर का भी आज संगे बुनियाद रखा जाएगा। हुकूमत हिंद ने कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा सानी के इंतकाल पर आज कौमी शोक का ऐलान किया है। इस दौरान मुल्क भर में उन तमाम इमारतों पर कौमी परचम आधा लहराएगा जहां कौमी परचम बाकायदगी से लहराया जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शेख हमद बिन खलीफा सानी के इंतकाल पर ताजियत का इजहार करते हुए कहा कि वो एक विजनरी रहनुमा थे। उन्होंने कतर को तरक्की और खुशहाली की नई बुलंदियों तक पहुंचाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को ऑल इंडिया रेडियो के महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में हिंदुस्तान और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये प्रोग्राम की 136वीं किस्त होगी। प्रोग्राम के लिए सामईन अपने ख्यालात और तजावीज टोल फ्री नंबर

0: 1800-11700 पर भेज सकते हैं। आइंदा किस्त के लिए तजावीज़ इस माह की 24 तारीख तक कबूल की जाएगी। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने एमसीटी स्कीम 2026 का आगाज़ किया। इसके तहत मुस्तस्ना प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले इदारों को अपनी हैसियत को बाकायदा बनाने का एक बार मौका दिया गया है। यह स्कीम 6 माह तक नाफिजुल अमल रहेगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ईपीएफओ की एमनेस्टी योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुस्तफ्तीन को फायदा हासिल करने के लिए मुतालिका इलाकाई दफ्तर में ईमेल के जरिए दरखास्त भेजनी होगी। राम मंदिर पेशकश घोटाला की तहकीकात तेज हो गई है। खसूसी तफ्तीशी टीम धर्मसेना के सदर और बाबरी मस्जिद इनदाम केस के मुजरिम संतोष दुबे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन एक घंटे तक पूछताछ की गई। इस मौके के लिए उन्होंने सीओ सिटी के लिए दफ्तर बुलाया गया। पूछगछ के दौरान एसआईटी ने उनके इल्जाम और दस्तियाब हकायक की तफसील से जांच की। संतोष दुबे ने बताया कि एसआईटी ने उनसे कुछ दस्तावेजात की दरखास्त की थी, जिन्हें वो आज दोपहर 12 बजे सीओ सिटी ऑफिस के जरिए एसआईटी को फराहम करेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उन्होंने अपने एतमाद का इजहार किया कि योगी आदित्यनाथ की क्यादत में राम मंदिर से मुतालिक किसी भी मामले में इंसाफ होगा। उन्होंने कहा कि वजीर आला के नोटिस लेने के बाद अब उन्हें यकीन है कि एसआईटी की तहकीकात असल मुजरिमों तक पहुंचेगी और पूरे मामले को बेनकाब करेगी। दरअसल राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी मामले में तमाम 8 मुलजमीन को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवसुत से अदालत में पेश किया जाएगा। रियासत के कई अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। लखनऊ के मौसमियाती मरकज के माहिर मौसमियात मोहम्मद दानिश ने बताया कि तराई इलाकों और पूर्वांचल इलाके कई अजला में 3 दिन तक गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश होने की तवक्को है।
2: मानसून का तराई बेल्ट में शिफ्ट हो गया है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र हैं, जैसा कि लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, कुशीनगर, देवरिया में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। बाकी जगह की बात करें तो स्पेशली पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर बादलों की आवाजाही रहेगी तथा कुछ जगहों पर छिटपुट वर्षा की संभावना है। तो कुल मिलाकर यह सिलसिला 2 से 3 दिनों तक रहेगा।
0: दरियास्ता बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने की वजह से रियासत में कई नदियों के सतहआब में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।
1: आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपकी सखी कंचन।
2: और मैं हूं सोनी।
1: सोनी, कैसी हैं आप?
2: जी ठीक हूं मैं।
1: भाई, मौसम का ये जो बदलता स्वरूप है ना, ये सच में थोड़ा खास है। कभी तेज धूप हो जा रही है तो कभी पल में बादल और बारिश हो जा रही है, लेकिन मौसम जो है वो थोड़ा सुहाना बना हुआ है ना?
2: बिल्कुल कंचन। और देखिए, इस बारिश से थोड़ा गर्मी से राहत तो मिली है, और जो हमारी बहनें हैं अब वो भी बहुत व्यस्त हो गई होंगी, क्योंकि भाई बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, बहुत सारा आप काम भी है, तो जो बच्चों के लिए नाश्ता खाना ये सब तैयार करना है और घर का काम भी है। और कंचन देखिए, हम रोज़ भोजन करते हैं हमारे शरीर के पोषण के लिए, है ना, और हम सभी एक सही मात्रा में संतुलित भोजन लेते हैं जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हैं जो हमें स्वस्थ बनाते हैं। पर आज हम अपनी सखियों से को ये बताएंगे कि सुपर फूड्स क्या है और ये कहाँ मिल सकते हैं।
1: भाई सोनी, सुपर फूड जैसे शब्द का प्रयोग आपने किया
2: जी
1: तो ऐसा शब्द सुनने के बाद हमारे और हमारी सखियों के दिमाग में तो यही आया होगा कि कितने तरह के पैक्ड फूड जो मार्केट
2: हाँ,
1: में मिलते हैं,
2: शायद
1: शेक
2: वही
1: मिलते
2: है
1: हैं,
2: जी।
1: शायद वही
2: हाँ
1: है ना? लेकिन सखियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस व्यस्त जीवन शैली में हम इन पर निर्भर हो चुके हैं, ये मानना है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है इनको तैयार करने के लिए।
2: जी
1: लेकिन हम अगर इन्हें एक बार तैयार करें ना, तो हम हफ्तों तक इन्हें स्टोर करके खा सकते हैं, है ना?
2: बिल्कुल
1: भाई, वो सुपर फूड्स तो हमारी रसोई में ही है। हमारी रसोई में रखी दालें, बाजरा, जौ, रागी, मूंग, चना और अन्य प्रकार की दालें, विभिन्न प्रकार के मसाले और तिल, जौ जो दो

0: तरह के तिल होते हैं, सफेद तिल और काले तिल। इसके साथ ही मूंगफली, विभिन्न प्रकार की हरी साग सब्जियां जो पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, ये हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। और इसके साथ ही सोनी स्वस्थ जीवन जीने में हमारी मदद भी करते हैं।
1: और कंचन, सुपर फूड से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें पोषक तत्व, विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर शामिल है, और सामान्य भोजन की तुलना में ये सुपर फूड्स में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और ये सुपर फूड्स की, जैसा कि हम आपने बताया कि हमारी रसोई में ही उपलब्ध है, जैसे कि हम सोच रहे थे कि ये सिर्फ मार्केट में ही मिलता है, ये हमारी रसोई में ही उपलब्ध है, बस हमें इसकी जानकारी नहीं
0: नहीं
1: होती
0: होती
1: है ना। तो सखियों, ये सुपर फूड्स हमारे, जो हमारी कंचन जी ने बताया, और इस सभी को अगर हम अपने आहार में शामिल करें तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत मजबूत होती है, पुरानी बीमारियों का खतरा भी कम होता है।
0: बिल्कुल सोनी, जैसे कि हल्दी एक प्राकृतिक
1: हाँ जी,
0: एंटीऑक्सीडेंट है, आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, दालें प्रोटीन, ये दालों में भरपूर प्रोटीन होता है, तो जो बाजरा और रागी है इसमें कैल्शियम, आयरन और फाइबर पाया जाता है,
1: जी
0: और दही और छाछ ये हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये सब हमारे किचन में है, इसके लिए बस थोड़ी मेहनत करनी है। अपने बच्चों के लिए जो हम दूध देते हैं उन्हें, उसके साथ जो हम मिलाते हैं पाउडर जो बाहरी आता
1: हाँ,
0: है
1: बाहरी जो भात है उसमें
0: उससे,
1: हम घर
0: हाँ,
1: के बने हुए पाउडर मिला सकते
0: इस्तेमाल
1: हैं,
0: कर सकते
1: जैसे कि
0: हैं।
1: मेवे और बीज, जैसे जो बादाम है, अखरोट
0: हाँ
1: है, और इन सब से मतलब बनाकर पाउडर बना सकते हैं और
0: हाँ
1: स्टोर कर सकते
0: चने के
1: हैं।
0: सत्तू का प्रयोग कर
1: हाँ
0: सकते
1: जी,
0: हैं, चीनी की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल करके एक पाउडर बना के इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं और दूध में मिलाकर खुद भी लें और बच्चों को भी दें।
1: बिल्कुल। और बहुत सारी ऐसी सुपर फूड्स हैं हमारी रसोई में ही जिनका इस्तेमाल हम रोज करें और अपने स्वास्थ्य को हम बेहतर बना सकते हैं। तो सखियों, हमारी रसोई में ये सुपर फूड्स उपलब्ध हैं और इसका सेवन करें तो हम अपने और अपने बच्चों का स्वास्थ्य उत्तम बना सकते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: तो सोनी हम बहुत सारी बातें अभी सखियों से और भी करेंगे, लेकिन उन्हें इससे पहले एक गीत भी सुनवा दें।
1: हाँ बिल्कुल।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
4: 0542227658।
2: ओ 0542227658। लो अभी फोन लगाता हूँ। 0542227658।
5: कंचन, हम बात कर रहे थे आज सुपर फूड्स और खान पान के बारे में, और हमारी आज की बातचीत भी इसी विषय पर आधारित है। और बातचीत का विषय है बच्चों का पौष्टिक टिफिन आसान और स्वस्थ विकल्प। आहार विशेषज्ञ निशा प्रकाश और कंचन तिवारी जी की बातचीत

0: तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
1: नमस्कार सखियों, मैं कंचन स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। आज के जमाने में सबसे कठिन काम है अपने बच्चों को पौष्टिक खाना खिलाना, यानी कि हम उन्हें जो भी दे रहे हैं टिफिन में या घर पे वो पौष्टिक है या नहीं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डाइटिशियन निशा प्रकाशी को। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: नमस्कार।
1: आपसे हम आज बात करेंगे बच्चों के पौष्टिक टिफिन पर आसान और स्वस्थ विकल्प के बारे में। तो मैम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि जो भी हम बच्चों के टिफिन में दे रहे हैं उसमें क्या वो पौष्टिक है उनके लिए, या आज के जमाने में हम जो टिफिन में दे रहे हैं अक्सर बाहर की चीजें भी हम उसमें ऐड करके सुबह जल्दी जल्दी के कारण दे देते हैं, तो क्या ये जरूरी है?
2: बिल्कुल नहीं। ये जानना बहुत ज़रूरी है हर पेरेंट्स के लिए कि हम अपने बच्चे को जो टिफ़िन दे रहे हैं उसे पेट भरने के लिए नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसको पूरा न्यूट्रिशन देना चाहिए जो शरीर के ग्रोथ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, हर चीज़ के लिए उसका रोल होता है। क्योंकि जब आप अपने बच्चे को सही न्यूट्रिशन देते हो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और हर सेल तक उस न्यूट्रिशन को पहुँचाता है। तो उसमें हर मील में, चाहे वो टिफिन हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या डिनर हो, हर मील में पेरेंट्स को जरूर ध्यान देना चाहिए कि आप अपने बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हो कि नहीं, क्योंकि हर एज के हिसाब से अलग अलग होता है। हाँ। और ये नॉलेज हर किसी को होना चाहिए। और टिफिन की बातें आज जब हो रही है तो टिफिन में आजकल ये सच्चाई है कि लोग पैक्ड फूड की तरफ बहुत जा रहे हैं। उसमें लोगों को, पेरेंट्स को एक एजुकेशन देना चाहिए। हमारे एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि लोगों में एक्सपीरियंस, नॉलेज की थोड़ी सी कमी होगी, हर किसी के पास है वो चीजें, उसको मालूम ही नहीं है कि हमें इतने पोर्शन में कार्ब, इतने में प्रोटीन और मिनरल्स एंड विटामिन्स, और हर किसी चीज का क्या क्या रोल है। खाने में कितनी मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए, प्रोटीन है तो सिर्फ प्रोटीन ही नहीं देना सही है, नट्स लोग दे रहे हैं, तो इस तरीके से सारा चीजों को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है।
1: बिल्कुल, अक्सर करके कुछ चीजें हम बहुत ज्यादा दे देते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बाहर की बनी हुई जैम और सॉस वगैरह देते हैं, तो ये तो बहुत हानिकारक होता है।
2: ऑफ कोर्स, उसमें न्यूट्रिशन कम और कैलोरीज ज्यादा हो जा रही है, और हमारे सेल को नीड है, जो मैंने आपसे बोला कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये सबका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि कुछ न्यूट्रिशन है जो हमारे ब्रेन को डेवलप करते हैं और उसकी वो जरूरत होती है। अगर आपको नहीं मिल रहा है बच्चे को, तो बच्चे में कॉन्सेंट्रेशन पावर की थोड़ी कमी
1: हो जाएगी।
2: बच्चे को प्रोटीन कम दे रहे हैं तो वो बच्चा लगेगा मसल नहीं ग्रोथ हो रहा, ये सब चीजें उनके सारी एक्टिविटीज पे उसका इफेक्ट होगा, वो गेम नहीं खेल पाएंगे, और इवन पढ़ाई भी जो वो करेंगे वो चीजें वो उतनी याद नहीं रहेगी। पेरेंट्स डांटेंगे कि आप पढ़ नहीं रहो, लेकिन न्यूट्रिशन पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो बच्चों के न्यूट्रिशन पे ध्यान देना ये हमारी समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को सही न्यूट्रिशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये एक चीज जानना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। और अगर आप जान गए हो तो आप सही दोगे, क्योंकि हर किसी के पास सोयाबीन है, हर किसी के पास चना है, हर किसी के पास मूंगफली है। कोई जरूरी नहीं है कि बादाम और अखरोट और महंगे ड्राई फ्रूट से ही न्यूट्रिशन मिलता है, उसकी भी एक लिमिटेड मात्रा ही देना चाहिए। कोई लोग अक्सर बच्चों को बहुत अधिक बादाम देते हैं, 4 से 6 बादाम काफी होता है, वो भी ज्यादा है मैं बोल रही हूँ। अगर आप रेगुलरली 3 बादाम भी दे रहे हो इट्स एनफ, न कि आप उसको ज्यादा अधिक मात्रा में हाई नट कैलोरीज वाले इनटेक दे रहे हो। तो बच्चों को जानना बहुत जरूरी है कि आपको प्रोटीन देना टिफिन में, और उसके साथ आपको प्रेजेंटेबल बनाना बहुत जरूरी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना वो टिफिन को प्रेजेंटेबल पसंद
1: उन्हें
2: करते
1: अच्छा
2: हैं।
1: लगेगा तभी।
2: जब वो टिफिन खोले और उन्हें अच्छा लगेगा तो वो पसंद नहीं भी हो, घर में नहीं भी खा रहे हैं तो भी वो खाने लगते हैं। तो उसमें बच्चों को टिफिन में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, साइज स्मॉल हो, प्रेजेंटेबल हो और न्यूट्रिशियस हो। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आप 100% आपके बच्चे को सारा न्यूट्रिशन मिलने लगता है।
1: तो मैम, जैसे कि बच्चों की उम्र बढ़ रही है, जो बड़े बच्चे हैं वो और कुछ जो छोटे बच्चे हैं, उनको उम्र के अनुसार किस तरह से पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है और किस तरह उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वो बदलता रहता है?
2: एग्जैक्टली, न्यूट्रिशन का हर एज में अलग अलग रोल होता है। जैसे हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें 6 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो, अगर 6 नहीं मैं 8 बोलूँ तो बेटर है, कि बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके बाद बच्चे जब 1 साल से 2 साल के हैं, फिर 3 साल से लेके 5 साल जब वो स्कूल जा रहे हैं, 5 से आपके 11, 11 से 17,

0: तो मैं आज टिफिन की बातें कर रही हूँ तो इतने पे ही बातें करती हूँ। तो जो बच्चा स्कूल टिफिन जब शुरू किया तो उसकी जो जितनी मात्रा में प्रोटीन की जरूरत है, मान लीजिए जितनी उसकी बॉडी, उसमें 0.8 to 1 ग्राम प्रोटीन ही देना चाहिए। अगर उसकी वेट 15 ग्राम है, अरे 15 kg है, तो उसको 15 ग्राम, ये नहीं कि आप उसको 30 ग्राम प्रोटीन दे रहे हो, वो
1: अच्छा
0: आपके किडनी और पे लोड डालते हैं, तो वो भी गलत है। तो आप जो इस एज में जो हमारे न्यूट्रिशन सही जाता है बच्चे को, कैल्शियम का रिक्वायरमेंट हर एज में थोड़ी डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन देना जरूरी होता है, क्योंकि जब उस एज में उसको मिलता है तो वो बॉडी के सही ढंग से ग्रोथ होता है। क्योंकि हमारे जो ऑर्गन है, जो हमारे शरीर को चला रहे हैं, जो एंजाइम्स का सिक्रेशन हो रहा है, जो हमारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहे हैं, वो भी सेल से ही बने हुए हैं। तो उन सेल को अपना काम करने के लिए भी प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। वैसे ही अभी ये तो मैंने टिफिन की बात की, 7 to जो हम लोग एज करते हैं, 11 वाला, उस एज में बच्चे के अंदर वो सारे सीड्स डेवलप, सीड्स का मतलब है कि बच्चे के वो ऑर्गन में वो डेवलपमेंट आता है जो उसका इफेक्ट 11 to 18 ईयर्स में, जो टीनेजर एज में दिखता है। अगर आपने इस एज में बच्चे को न्यूट्रिशन सही नहीं दिया तो बच्चे को आप अक्सर देखते होंगे कुछ बच्चे बहुत दुबले पतले और कितना भी खा रहे हैं लेकिन उनका
1: कमजोर
0: ग्रोथ
1: रहते हैं
0: कमजोर रहते हैं,
1: जी।
0: लेकिन कुछ बच्चों का शेप और आकार बहुत अच्छा होता है। तो उसके पीछे वजह होता है अर्ली एज में उनको सही न्यूट्रिशन देना। वो चीजें लोग समझते ही कह रहे वही दाल चावल, दाल चावल वही रहता है, चाहे जिस भी एज, मात्रा और अनुपात अलग अलग हो जाता है हर बच्चों के एज के हिसाब से और उनके वेट के हिसाब से, और टेस्ट बढ़ भी है। कुछ बच्चों को लाइट खाना पसंद होता है, किसी को रिच खाना पसंद है, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना, बहुत जरूरी है। लोग जनरली समझते हैं कि बहुत रिच खाना बच्चों को देना बहुत हेल्दी, ऐसा नहीं है। अब बॉइल्ड खाना भी बच्चे के लिए उतनी ही हेल्दी है, तो वो हमारा बॉडी टाइप कैसा है उसके अकॉर्डिंग खाना देना,
1: टेस्ट उनका कैसा
0: उनका
1: है।
0: टेस्ट कैसा है। टेस्ट और पेट दोनों में बहुत डिफरेंस है, जनरली लोग टेस्ट के हिसाब से खाते हैं। यही वजह है कि आजकल जो जंक फूड है उसकी ओर कल्चर बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें टेस्ट मिल जा रहा है, लेकिन वो गट के लिए अच्छा नहीं है, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो वैसे ही कई न्यूट्रिशन है जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, उस पर फोकस कराएं। और एक और इम्पोर्टेंट बहुत जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे रात को बैठे एक दो
1: साथ
0: पेरेंट्स
1: में खाते हैं और
0: खाने के साथ साथ, तो नेक्स्ट डे क्या खाएंगे उसके ऊपर डिस्कशन, क्या टिफिन में देंगे उस पर डिस्कशन, प्रेजेंटेबल बनाने में डिस्कशन, तो वो बच्चे बहुत जल्दी खाना खाना सीख जाते हैं। क्योंकि वो उनके अंदर एक एनर्जी आता है कि हाँ मेरी मम्मा ने पापा ने इस तरह से किया, और फिर वो जब घर को टिफिन खोलते हैं फ्रेंड्स के साथ खोलते हैं, जिसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट करते हैं, फ्रेंड्स के साथ खोला सारा टिफिन, तो वो फ्रेंड्स ने खाया तो मैं भी खाने लगा, तो वो घर पे नहीं खा रहे हैं लेकिन वहां खाना शुरू कर दिए। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना, नॉलेज होना, अवेयर होना बहुत जरूरी है।
1: और मैम जैसे कि हम सुबह जल्दी उठते हैं जब बच्चों को स्कूल भेजना होता है, उनका टिफिन तैयार करते हैं, तो कुछ प्रिपरेशन तो हम पहले ही कर लेते हैं, लेकिन टिफिन तैयार करते समय किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए?
0: ये आप पहले से तैयार कर लो, तो फिर उन्हीं चीजों का पहले से तैयार करो जो कि नेक्स्ट डे जब आप टिफिन में बच्चा जा रहा है वो खराब ना हो। दूसरी बात, हाइजीन होना चाहिए, साइज स्मॉल होना चाहिए बच्चे को, टिफिन जो है वो उसकी पैकेजिंग ऐसी हो कि वो बाहर जा रहे हो तो एयर और लाइट के कांटेक्ट में आने से डैमेज खराब ना हो, और हाइड्रेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। तो टिफिन बनाते समय इन सब बातों का अगर आप ध्यान, जैसे फर्मेंटेड फूड हो फॉर एग्जांपल इडली या ढोकला, तो वो अगर आपने रात को फर्मेंटेड करके रख दिया, सुबह आप बना रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर चीज़ों को तो ऐसा नहीं रखी जा सकती है। तो ड्राई चीज़ें, मूंगफली आप रोस्ट करके रख लो, ठीक है टिफिन में थोड़ी सी मूंगफली दे दिया, ये प्रोटीन का अच्छे सोर्स हो गए, तो सुबह उनका कॉम्बिनेशन, और हर किसी का अलग अलग होता है, आप एक लिस्ट बना लो कि 7 or 8 टाइप ऑफ टिफिन में ये तैयार करना है, तो काम बहुत आसान हो जाएगा कि ये प्रिपरेशन मैंने रात में कर लिया और सुबह उसको प्रिपेयर कर लिया, ताकि टाइमिंग कम हो जाए। जो वर्किंग लेडी उनके लिए सब टफ होता
1: और
0: है,
1: समय से चीजें तैयार
0: समय
1: भी हो
0: चीजें
1: जाए।
0: तैयार हो जाए, बस प्लानिंग करनी होती है उसके लिए, प्रिपरेशन थोड़ा किस समय कैसे करना है उसके लिए प्रिपरेशन कीजिए, काम होता है।
1: जैसे कि मैम आपने बोला फर्मेंटेड फूड के बारे में, तो आजकल अक्सर हमने ये देखा है कि उसको तैयार करने के लिए लोग उसमें थोड़ा सा सोडा डाल देते हैं, तो क्या ये बच्चे के लिए हेल्दी होता है?
0: कोई भी चीज़ आर्टिफिशियली अगर ऐड किया जाए तो बहुत हेल्दी नहीं है, जितना हो सके नेचुरल हो, लोकल फूड हो। जनरली लोग बाहर ये फॉरेन का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, या एक लोगों को लग रहा है कि ये डिश मॉडर्न टाइप डिशेस दो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं, हमारी बॉडी लोकल जो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में पाई जाती है उन चीज़ों से बनी हुई चीज़ों से ज़्यादा अधिक अडेप्ट करती है, ना कि बाहर की चीज़ों से। तो आपके अपने ही फैमिली में जो ट्रेडिशनली बनता चला आ रहा
1: नेचुरल
0: है,
1: तरीके
0: जो
1: से
0: नेचुरल तरीके से,
1: जी।
0: इट इज़ बेटर एंड बेटर एंड बेटर।
1: और टिफिन में हम किन चीजों को न दें बच्चों को, अवॉइड करें कि हमें नहीं देना चाहिए, नुकसान

0: पान करता है।
1: पैक्ड फूड जो आजकल चिप्स आ रहे
0: जी
1: हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें बिल्कुल ना दें,
0: हाँ
1: क्योंकि
0: हाँ
1: इनका जो टेस्ट बर्डन है वो इतना हाई, इसमें सॉल्ट का भी रहता है, और ये टेस्ट बर्ड को उस तरह से अगर डेवलप हो गया तो फिर ये घर के खाने को टेस्ट नहीं
0: नहीं
1: पसंद
0: करेंगे।
1: करते।
0: हाँ
1: तो और बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो दो दो तीन दिन गुलाब जामुन ही दे दे रहे, ये सोच करके कि मेरा बच्चा खा लेगा।
0: खा
1: अरे वो
0: लेगा।
1: उतना ही आप दो जितना उसकी बच्चे की नीड है। आप स्मॉल साइज दो, एक गुलाब जामुन दिया कभी, एक घर के बने हुए, उससे ज्यादा अच्छा है बेसन के लड्डू देना, ड्राई फ्रूट्स के
0: हाँ
1: लड्डू देना, खजूर के बने हुए लड्डू देने, ये सब चीजें ज्यादा अच्छा है।
0: मूंगफली और
1: न्यूट्रिशन,
0: तिल से बनी हुई
1: मूंगफली और तिल
0: चीजें।
1: के से बनी
0: जी
1: हुई चीजें देना, क्योंकि ये आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है और कैलोरीज वाइज भी अच्छा है, होम कुक है, और बच्चे फिर वही खाने की आदत डली रहेगी उनको, वो
0: जी
1: ज्यादा बेटर। और आप एक दिन बना के रख दो, आराम से 5-6 दिन चल जाएंगे इसके। तो टिफिन में एक मीठे में ये हो गया। और बच्चों को एक चीज और ध्यान रखना चाहिए, दो टेस्ट हमेशा देना चाहिए, एक नमकीन और एक
0: एक
1: मीठा।
0: मीठा। जी
1: पूड़ी की साइज बना रहे हो, पराठे की साइज बना रहे हो, छोटा साइज बनाओ, बच्चों को अच्छा लगता है। रोल बना दो, कभी पनीर डाल करके रोल बना दो, कभी आप उसको बेसन का चिल्ला दे दो, कभी मूंग डाल कर चिल्ला दे दो, वेराइटी सर। आप उसको रात में प्रिपेयर कर कर लिया, सुबह तुरंत आपने तवे पे बनाया। ऐसी सैंडविचेस है, सैंडविचेस का शेप बना के दो, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। जब उसकी लिस्ट लिखने लगोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो मैं कर सकता था। तो वो आपको बस सिर्फ सोचने की जरूरत है, नहीं मालूम है तो हम लोग बैठे हैं, बिल्कुल पूछे आप हम
0: तो
1: लोग से।
0: ऐसे कौन से क्रिएटिव आइडियाज हैं जिनके साथ हम बच्चों के टिफिन को और इंटरेस्टिंग और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, उनको पसंद भी आए और हम उन्हें रोज अच्छी चीजें दे पाएं?
1: बच्चों को टिफिन में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी कुछ पेशेंट थे, उन्होंने इडली को, एक सिंपल इडली को 3 कलर में बना दिया, उसमें पालक तो एक में मिला दिया, एक में बीट मिला दिया, व्हाइट तो है ये, और वो उन्होंने इस तरीके से डाला कि मैंने उनसे सवाल किया कि आपने कैसे एक ही इडली को 3 कलर में
0: तीन
1: कैसे किया।
0: कलर में।
1: तो उन्होंने कहा मैंने धीरे से ग्रीन डाला, फिर व्हाइट धीरे से डाला, फिर रेड डाला धीरे से, ताकि एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं हो, और मैंने बेक कर दिया। फिर उन्होंने एक आइडिया नया निकाला, उन्होंने चारों तरफ से स्वीट कॉर्न डाला, वो मुझे इतना इम्प्रेसिव लगा। छोटी छोटी ब्लैक कलर की उन्होंने, शायद काली मिर्च डाला हो या राई डाला हो, लेकिन आइज बन गई, लिप्स बन गई, तो वो बच्चा इम्प्रेसिव हो गया। सिंपल सैंडविचेस हैं, आप उसमें आइस बना दो, लिप्स के ऊपर थोड़े से आप टमाटर डाल दो, या फिर आपने उस जगह पे थोड़ी सी सॉस डाल दिया, तो वो बच्चे को जो होता है ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन इंटरेस्टिंग के साथ न्यूट्रिशन होना जरूरी है, कि ये नहीं कि आपने सिर्फ ब्रेड पे लगा के दे दिया, अंदर पनीर की सैंडविचेस फीलिंग करो, घर के बने हुए चने के दाल की करो, इस तरीके की चीज़ों को ध्यान दो, बहुत ज़रूरी होता है। और मार्केट की फूड की आदत बिल्कुल मत डालो, मैं मना नहीं कर सकती, क्योंकि आजकल के बच्चे इतना अधिक एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं और ये सब चीजें उनका इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन उनको ये डालो कि ये जाके आपके शरीर को कैसे नुकसान करते हैं। आप घर के बने हुए चिप्स दो, बेटर ऑप्शन। आप घर की चीजों को बना करके उसको उस तरीके से रोल करके शेप दो, अलग से अलग कलरफुल स्पून दो, डेली का डेली बच्चे खाते ही खाते हैं।
0: और एक मुझे लगता है जहां तक कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, बच्चे आजकल दूध नहीं पीना चाहते हैं,
1: हाँ,
0: और दूध पीते भी हैं तो बाहर के प्रोटीन शेक वगैरह ये सारी
1: डालकर।
0: चीजें यूज करते हैं। तो क्या हमें घर में भी कुछ ऐसा प्रोटीन शेक बनाना चाहिए जो हम बच्चों को दूध के साथ दें और उन्हें पसंद भी आए?
1: बिल्कुल, आप जो बादाम है या आपके सत्तू है, आपके बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, ड्राई फ्रूट्स में मखाना है, ये सब चीजों को मिला करके आप एक पाउडर अपने लिए बना लो अपने घर में, और वो मिल्क में डालो। बच्चों के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है, बच्चे के बड़ों के लिए भी, जनरली लोगों के मन में
0: सभी के
1: होता है
0: लिए।
1: कि बड़े हो गए अब कैल्शियम की जरूरत नहीं, जो गलत है, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके ग्रोथ में वो हेल्प करता है, जिसको हम लोग कहते हैं ना कुछ सीमेंट का काम करता है, ब्रिक अगर प्रोटीन है तो ये चीजें सीमेंट का काम कर रहा है।
0: जी
1: तो ये जो है, आप अगर बच्चा आपका दूध नहीं पी रहा है तो मैं कहती हूँ ठीक, आप उसकी जगह पनीर दो, बच्चे आप उसकी जगह दही दो, आप उसकी जगह उसी दूध का कुछ और बना करके दे दो। ऐसा भी मत करो कि एकदम फोर्स करो कि सिर्फ दूध ही दूध,
0: हाँ, जो उसको
1: मतलब कि
0: पसंद आए
1: हाँ जो
0: ऑप्शन
1: पसंद आए,
0: में।
1: क्योंकि वो बच्चा है उसको टेस्ट चाहिए, लेकिन घर का बना करके आप बना के सोचो आप वो दो, और साथ में घर के बने हुए पाउडर वो
0: जी
1: डाल करके दो।
0: चलते चलते हमारी सखियों को बताएं कि हम किस तरह से, मतलब माता पिता मिलके, पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें कि वो हर चीज को खाना पीना पसंद करें और जो घर की चीजें हैं उसकी तरफ बढ़े।
1: इसमें मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि जब भी पेरेंट्स भी स्टार्टिंग कर रहे हैं बच्चे खाने का और उनको दिक्कत हो रही है, तो उनके साथ ही वो सब्जियां खरीदने भी जाएं
0: अच्छा।
1: और वॉश करके उन सब्जियों को उनका टच करा। आप महसूस करोगे हर सब्जी का टच अलग अलग होता है, आप उनको टच महसूस कराओ। आजकल इंटरनेट का जमाना है, आप उस सब्जियों की न्यूट्रिशन वैल्यू लोगों को समझाओ, बच्चों को ये क्या खाने से कैसे क्या फायदा होगा। आप उनको प्लास्टिक की नाइफ दो, खुद अपनी नाइफ अलग रखो, बच्चों को टच से दूर रखो, उनको बोलो चॉप करो जैसे करो, कोई भी जो दाल आया है आप उनको उससे टच कराओ, हर दाल का कलर है, हर दाल की फीलिंग अलग है, बच्चे कुछ भी नहीं जानते हो, हर चीज़ उनके ब्रेन में वो स्टोर होगा। और साथ ही इसको खाने से क्या फ़ायदा है वो स्टोरी के फॉर्म में बच्चों को एक्सप्लेन करो, बच्चे खाते ही खाते हैं मैं गारंटी के।

0: साथ बोलती हूँ, क्योंकि ये बच्चों को एक फैमिली इन्वॉल्व हुई, बच्चों
1: हाँ
0: को उसको इम्पोर्टेंस पता चला, तो
1: उसके
0: फिर
1: साथ ही वो
0: हम
1: उन चीजों को जानेंगी भी,
0: जानेंगे भी।
1: क्या किसने
0: हर
1: तरह की डाली है,
0: पेड़
1: क्या
0: की
1: चीजें हैं।
0: लीव्स अलग अलग होती
1: जी
0: है।
1: तो सखियों, हमने आज बहुत ही अच्छी तरीके से जाना कि किस तरह हम अपने बच्चों के टिफिन को आसान और बहुत ही हेल्दी बना सकते हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात कर रही थी डाइटिशियन निशा प्रकाश। मैम, आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: हमारी सखियां अभी सुन रही थी बातचीत, विषय बच्चों का पौष्टिक टिफिन आसान और स्वस्थ विकल्प। आहार विशेषज्ञ थी डॉक्टर निशा प्रकाश, इनसे बातचीत की कंचन तिवारी ने। सोनी, जैसा कि बारिश का मौसम है, तो बारिश में हमारे घर में बहुत जगह पे सीलन हो जाती है,
0: जी
2: कहीं कहीं पर नमी फर्श में भी दिखाई देती है, तो
0: जी
2: इसके लिए हमें समय समय पर अपने जो घर में जो छत पर नालियां बनी हुई हैं, जहां पर पानी रुक जाता है, हो
0: जी
2: सकता है वहां कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया हो, जिससे
0: हाँ
2: वो जाम हो जाता है और उसके कारण वहां से संबंधित जो दीवारें होती हैं वहां सीलन हो जाती है,
0: जी
2: तो ऐसे में उसकी सफाई नियमित रूप से करनी चाहिए और समय समय पर खिड़की और दरवाजों को भी पोंछते रहना चाहिए, है ना?
0: जी और जैसे कभी कभी छत से बूंद वगैरह भी टपकती तो हम उसको हल्के में ले लेते हैं, तो उनको भी सही कराना चाहिए। और देखिए कंचन, घर के साथ साथ हमारे घर में जो फर्नीचर है
2: हाँ
0: उनकी भी देखभाल बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि भाई वो हमारा या तो पुरानी यादें होती हैं या कीमती सामान होते
2: और
0: हैं।
2: हमें उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं
0: हाँ
2: तो
0: जी
2: वो
0: बिल्कुल,
2: सही रहेगा तो भी हम उसका इस्तेमाल कर
0: हाँ जी।
2: पाएंगे।
0: तो ऐसे में जैसे कि हमारी अलमारी है, मेज है, पलंग है, तो इन सबको दीवारों से 2-3 इंच खिसका कर रखें ताकि हवा का प्रभाव बना रहे और लकड़ी खराब ना हो। और महीने में एक दो बार मोम, अलसी के तेल या नारियल तेल में कपड़ा भिगोकर फर्नीचर को पोंछे। ये लकड़ी के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको ये बंद कर देते हैं।
2: और उसपे जो फंगस होता है
0: जी
2: या जिस तरह की सीलन होती है वो भी इससे दूर रहता है
0: हाँ।
2: तेल के प्रभाव
0: और
2: से।
0: कंचन अक्सर हम ये करते हैं कि जैसे कि गीले कपड़े या हल्के गीले कपड़े को हम फर्नीचर पे डाल देते हैं ना, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इससे लकड़ी में मतलब नमी आ जाती है और
2: लकड़ी खराब भी होने
0: फूलने
2: लगती है।
0: लगती है। जी
2: हाँ
0: बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण काम ये करना है कंचन कि मानसून शुरू होने से पहले ही फर्नीचर को पॉलिश या वैक्स की कोटिंग करवा लें, है ना। और कंचन देखिए कि जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जो हमारी सोच पर निर्भर करता है ना, और हमारी सोच हमारे जीवन और सेहत का भी गहरा संबंध है। हम जैसी सोच रखते हैं वैसा ही हमारा जीवन होता है। कोई तो बहुत ही निराश और हताश बातें करता है और हर वक्त मतलब कि अपने दुखों का रोना रोता रहता है
2: हाँ
0: ना, नकारात्मक बातें करता रहता है। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर परिस्थिति में खुश है, सामंजस्य बना लेता है और उसकी सोच सकारात्मक रहती है, मतलब कि निराशा में भी वो आशा की किरण ढूंढ लेता है ना।
2: तभी तो हम कहते हैं अपनी सखियों से कि वो आशावादी रहें, स्वस्थ रहें। और आज के लिए इतना ही सखियों, हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपनी सखी कंचन।
0: और सोनी को
3: अभी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं गया प्रसाद शास्त्री। आइए इनके स्वर में सुनते हैं निर्गुण।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं गया प्रसाद शास्त्री के गाए भजन। आइए सुनते हैं इनका गाया अगला भजन, रचना कबीर दास की।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं गया प्रसाद शास्त्री के गाए लोकगीत। इनके स्वर में आइए सुनते हैं इनका गाया अगला निर्गुण

0: to 77,589, while the Nifty dipped 7 points to 24,200 when reports last came in. In the global crude oil market, Brent crude was trading 3.3% up at $78.51 per barrel when reports last came in. In tennis, top seed Italy's Jannik Sinner retained his Wimbledon men's singles title, beating second seed German Alexander Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 in the final at the All England Club last night. This is Sinner's second consecutive Wimbledon men's singles title and his fifth Grand Slam crown. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court says determination of citizenship and foreigner status must be carried out through a fair, lawful and reasonable process. Sets aside Guwahati High Court's decision declaring 27 appellants as foreigners. Apex Court seeks status report from the SIT probing alleged misappropriation of donations in Ram Janmabhoomi Temple. President Draupadi Murmu takes cognizance of matter regarding Jharkhand workers affected by ammonia gas leak in Tamil Nadu, directs immediate action. Mortal remains of 15 Indians who died in Vietnam boat tragedy to be brought back home tonight by a Vietnam Airlines flight. Iran strikes U.S. military bases in Jordan, Bahrain and Kuwait in retaliation to U.S. attacks on its military targets. And in women's cricket, hosts England to resume their second innings at 130 for 6 against India in historic one-off test at the Lord's. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को एसआई का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को

0: क्रीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र 1 महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरि है, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6th नीलगिरि श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि INS महेंद्रगिरि को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
2: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म INS दुनागिरि, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है, जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का 3rd संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमेरिका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
3: अपने 2 वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे कुछ नहीं हुआ। अब मध्य प्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, UK, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने FDI के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है।

0: कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
1: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकि नगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और

0: बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए भोजपुरी फिल्म संगीत। सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं दुल्हन फिल्म का गाना। आप सबसे पहले सुनेंगे, आवाज है उषा मंगेशकर की, गीत उषा रानी मिश्रा का है, संगीत से सवारा है चित्रगुप्त ने। आइए सुने दुल्हन फिल्म का ये गाना।

दुल्हन फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे उषा मंगेशकर की आवाज में। शब्द रचना उषा रानी मिश्रा की थी और संगीत से संवारा था चित्रगुप्त ने। अब आइए कार्यक्रम में अगला गाना सुनते हैं। फिल्म का नाम है गंगा किनारे मोरा गांव। आवाज महेंद्र कपूर की है, गीत लक्ष्मण शाहबादी का, संगीत चित्रगुप्त का। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

0: गंगा किनारे मोरा गांव, इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में। लक्ष्मण शाहवादी का लिखा यह गीत था जिसकी तर्ज बनाई थी चित्रगुप्त ने। अगला गाना हम आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा, यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।
2: हम गवन मनाही जईबे बिनार झूलनी, हम गवन मनाही जईबे बिनार झूलनी।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय आप सुन रहे हैं भोजपुरी फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए धरती मैया फिल्म का गाना, आवाज उषा मंगेशकर की है, गीत लक्ष्मण शाहवादी का, संगीत चित्रगुप्त का। आइए सुने धरती मैया फिल्म का ये गाना।

धरती मैया फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे उषा मंगेशकर की आवाज में। गीत लक्ष्मण शाहबादी का था, संगीत से सवारा था चित्रगुप्त ने। और अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है घर गृहस्थी, आवाज उषा मंगेशकर की, गीत समीर का, संगीत चित्रगुप्त का।

घर गृहस्थ फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे, उषा मंगेशकर की आवाज में। गीत समीर का था, संगीत से सवारा था चित्रगुप्त ने। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ाई पो। आवाज लता मंगेशकर की है, गीत शैलेंद्र का, संगीत चित्रगुप्त का। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

0: गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो, इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र का लिखा ये गीत था, जिसकी तर्ज बनाई थी चित्रगुप्त ने। और अब कार्यक्रम में अगला गाना इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: जी हाँ श्रोताओ, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक, आपके मोबाइल सेट पर। जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहाँ भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी।
0: श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गाना उषा मंगेशकर की आवाज में, प्रीतम मोरे गंगा तीरे। इस फिल्म का गाना आइए सुने। गीत और संगीत है S. भास्कर का।

उषा मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे प्रीतम मोरे गंगा तीरे, इस फिल्म का गाना जिसे लिखा था और संगीत दिया था एस भास्कर ने। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, डीटीएच, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 3 बज चुके हैं। आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। सायंकालीन सभा के साथ शाम 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

0: तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो केवल रोजगार ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की नई पहचान बना रहा है। विषय है स्वरोजगार करें युवा।
1: साथियों, आज का युवा केवल नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला भी बन सकता है। बदलते समय में स्वरोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। डिजिटल तकनीक, कौशल विकास, ऑनलाइन व्यापार, कृषि आधारित उद्योग, हस्तशिल्प, फूड प्रोसेसिंग, फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप जैसे अनेक क्षेत्र युवाओं के लिए एक नए रास्ते खोल रहे हैं। कौशल मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता मिलने पर युवा सफल उद्यमी बन सकते हैं।
0: किसी भी छोटे प्रयास की शुरुआत एक बड़े सपने से होती है। यदि आपके पास कोई अच्छा विचार है, मेहनत करने का जज्बा है और सीखने की इच्छा है, तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए।
1: सरकार और विभिन्न संस्थाएं भी युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास, मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए अनेक पहल कर रही हैं, ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सके और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सके।
0: प्रिय युवा साथियों, याद रखिए, रोजगार मांगने से बेहतर है रोजगार का सृजन करना। जब युवा आत्मनिर्भर बनते हैं, तो परिवार मजबूत होता है, समाज आगे बढ़ता है और राष्ट्र समृद्ध बनता है।
1: तो आइए आज ही संकल्प लें कि अपनी प्रतिभा को पहचानेंगे, अपने कौशल को निखारेंगे और स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे।
0: वैसे दोस्तों, अब हमें स्टूडियो की घड़ी के पीछे छिपे संदेश को भी समझना होगा, जो हमें इशारा कर रही है आपसे विदा लेने का। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही, फिर होगी अब मुलाकात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे मुझे यानी नेहल को।
1: और मुझे आयुषी को, और हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: सुनो ना,
3: हाँ,
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ,
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
4: 0542227658।
2: ओ,
5: 0542227658।
2: लो अभी फोन लगाता हूँ।
5: 0542227658।

0: या याचिका को सुनवाई कैलस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के सतही 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास कैले। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर बिहने से गाड़ी दौड़ी लगी है।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज लखनऊ में आयोजित एक समीक्षा बैठक में शामिल भेले। बैठक के दौरान प्रदेश में चल रहल आ प्रस्तावित सड़क परियोजना के प्रगति, जमीन का अधिग्रहण और निर्माण कार्य को समीक्षा कर गये। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल भेले। ए मौका पर वहां के कहने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत का हेल्थ सिस्टम आत्मनिर्भर आज जन केंद्रित बन के उभरल बा।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का लक्ष्य केवल इलाज उपलब्ध कराना ही नहीं है बल्कि एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी ड्रिवन हेल्थ केयर सिस्टम बनाना भी रहा है। आज आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क इलाज मिल रहा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्मन पर योगी की पाती साझा करत लोगों से वृक्षारोपण के अपने जिंदगी के संस्कारन आ उत्सव से जोड़ने के अपील कैले। हमें एगो रिपोर्ट।
3: अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के अंतर्गत 1 मई के नाम अभियान में प्रदेश में 40 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य पूरा कर नया इतिहास रचा है। यह नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के 9 सामर्थ्य का जयघोष है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, आने वाली पीढ़ियों के प्रति उत्तरदायित्व और जीवन संरक्षण का संदेश समेटे यह अभियान सनातन चेतना का महोत्सव है। श्री योगी ने लोगों से अपील की है कि परिवार के शुभ अवसरों, मांगलिक आयोजन और विशेष दिनों को वृक्षारोपण से जोड़कर हमें प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभाना चाहिए। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: गोरखपुर जोन के करीब 1 जिलन में पुलिस की ओर से बहु बेटी सम्मेलन और कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए महिला, बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों के प्रति होखे वाले अपराधन पर नियंत्रण का कोशिश कर जा रहा हो। अपर पुलिस महानिदेशक मुथा अशोक जैन आज गोरखपुर के सूचना संकुल में आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया से बतियावत कहने की यह पहल के तहत बहु बेटियन, बुजुर्ग लोगिन और दिव्यांग लोगिन से पुलिस के ओर से लगातार संवाद कर जा रहा बा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सतही कई गो ओरियो जिलन में बीतल रात भइल बरखा के बादे आज दिन भर लोग उमस भरल गर्मी महसूस कैले। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश बतौलन कि राज्य के तराई आ पूर्वांचल के कई जिलन में 3 ले गरज चमक के साथे हल्लुक से लेके मध्यम बरखा भइले के अनुमान बा।
3: मानसून का तराई बेल्ट में शिफ्ट हो गया है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र हैं जैसे कि लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, कुशीनगर, देवरिया में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। बाकी जगह की बात करें तो स्पेशली पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर बादल की आवाजाही रहेगी तथा कुछ जगह पर छिटपुट वर्षा की संभावना है। तो कुल मिलाकर यह सिलसिला 2-3 दिनों तक रहेगा।
0: बरखा बैराजन से पानी छोड़े के नाते प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा बा। समाचार पूरा भइल, नमस्कार। ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप
4: मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले आज के शीर्ष कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने गोरखपुर केंद्र से।
1: आकाशवाणी गोरखपुर, अब रहुआ सभी वेद प्रकाश पाठक से भोजपुरी समाचार सुने। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या के श्रीराम मंदिर में दान के कथित हेराफेरी मामला में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच से जुड़ल स्थिति रिपोर्ट सौंपे के कहले हो। न्यायालय यह मामला में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ल याचिकन पर केंद्र सरकार प्रदेश सरकार आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नोटिस जारी कर देगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्य बागची और न्यायमूर्ति

0: रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में सुनिएगा रहमत अली खां का सरोद वादन। रात्रि 8 कार्यक्रम सुगम संगीत में हमारे आज के कलाकार होंगे इंद्र कुमार गुप्ता। रात्रि 10 कवि गोष्ठी में आज प्रतिभागी कवि होंगे डॉक्टर लियाकत अली, डॉक्टर मुक्ता सिंह और सुरेश कुमार। शाम 6:30 पर हमारे किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे कृषि जगत, जिसमें कृषि में एआई तकनीक की उपयोगिता इस विषय पर मुकेश कुमार श्रीवास्तव से बातचीत करेंगे सुधीर कुमार श्रीवास्तव। साथ ही सुनिएगा श्याम नारायण का गाया हुआ निर्गुण। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 6:10 और शाम 7। रस रंग का समय होगा शाम 7:31 और रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे रस माधुरी। गैर फिल्मी गीत एवं गजल पर आधारित कार्यक्रम अंजुमन हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 9:30 पर। यह था हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब सुनिए कल यानी दिनांक 14 जुलाई 2026 दिन मंगलवार को हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। सुबह 9:30 पर सुनिएगा उर्दू कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में सुबह 7:31 पर और दोपहर 12:45 पर सुनिएगा बांसुरी वादन। कलाकार होंगे अतुल शंकर। रात्रि 10:30 पर इसी कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित निखिल बनर्जी का सितार वादन। सुगम संगीत के कार्यक्रमों में दोपहर 12:30 पर सुनिएगा पंडित सीताराम सिंह के गाए हुए भजन और गीत और रात्रि 8 इसी कार्यक्रम में सुनिएगा ए हरिहरन की गाई हुई गजलें। शाम 6:30 पर किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे कृषि जगत, जिसमें केले की खेती इस विषय पर सुधाकर सिंह की दिनेश कुमार सिंह से बातचीत सुनवाई जाएगी। साथ ही सुनिएगा डॉक्टर ज्योति सिन्हा के गाए हुए लोकगीत। इन्हीं के गाए हुए लोकगीत आप सुन सकेंगे सुबह 9:50 पर और दोपहर 1:45 पर भी। दिन के 1:15 पर ग्रामीण बहनें सुनेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम अंगनैया। इस कार्यक्रम में गीत संगीत के अलावा ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के नवीन अवसर इस विषय पर पीवी राजीव से बातचीत सुनवाई जाएगी। हमारे युवा साथी अपना कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे शाम 5:15 से, जिसमें आज का आकर्षण होगा आज की बात क्या आप जानते हैं, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और गीत संगीत। सुबह 6 कार्यक्रम खेती की बातें में विषय होगा तिल की खेती, इस विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना का समय होगा सुबह 6:30। सुबह 6:35 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे स्वास्थ्य चर्चा, विषय होगा बच्चों की समसामयिक बीमारियां, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर प्रीतम कुमार। रामचरितमानस से संगीतमय पाठ आप सुनिएगा सुबह 6:40 पर। गुड मॉर्निंग बनारस सुबह 7 और सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 8:45 पर। सुबह 10 फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार और व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का समय होगा सुबह 11। तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म अमर प्रेम से। गीत को गाया है किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को सुरों से सजाया है आर डी बर्मन ने।
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाएं?

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: कार्यक्रम का अगला गाना है फिल्म ताजमहल से। इस गीत को आवाजें दी हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को

इसी के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: दण्डस्य कर्मचारिणां विषये राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया संज्ञानम् आदत्तम्। राष्ट्रपति सचिवालयेन आजीविका श्रम सचिवाः तक्षणम् आवश्यकं कार्याचरणाय कृतानां पदाक्षेपाणां विषये प्रतिवेदनं समर्पणाय च निर्दिष्टाः। याचिकायां प्रभावितानां श्रमिकाणां झारखण्डराज्यं प्रति सुरक्षितं पुनरागमनम्, आर्थिकसाहाय्यं, क्षतिपूर्तिं, पुनर्वसनं च प्रार्थितमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कोलम्बियादेशस्य नगरे आयोजिते 50वें षड्विंशत्यधिक 2000वर्षस्य अन्ताराष्ट्रिय भौतिकशास्त्र ओलम्पियाड स्पर्धायां स्वर्णपदक विजयाय भारतीयदलस्य अभिनन्दनं कृतम्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीमोदी अवदत् यत् तेषाम् उपलब्धिः राष्ट्रस्य युवशक्तेः अनन्तक्षमतायाः, विज्ञानं तथा शोधनं प्रति तेषाम् उत्साहस्य च अन्यतमम् उदाहरणं प्रतिबिम्बयति। बिहारस्य मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अद्य पटनानगरे बिहार हेलीपर्यटनस्य तथा विमान पर्यटन सेवायोजनायाः शुभारम्भम् अकरोत्। अस्मिन् अवसरे अस्यै सेवायै आभासीय माध्यमेन आरक्षण पटलस्यापि उद्घाटनम् अकरोत्। मुख्यमंत्री उक्तवान् यत् एषा योजना राज्य पर्यटन संवर्धनाय तथा जनेभ्यः बिहार राज्यस्य पर्यटनस्थलानां सुगमतया यात्रा सौविध्य प्रदानाय आरब्धास्ति।
1: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: योजनायाः प्रथमे चरणे पटना, वाल्मीकिनगरम्, माता मुण्डेश्वरी, राजगीर इत्येतानि स्थानानि समाविष्टानि सन्ति। राज्यप्रशासनं प्रत्येकस्मै यात्रानुमतिपत्राय 20,000-15,000 रूप्यकाणि यावत् अनुदानं प्रदास्यति। उदग्रयान पर्यटन सेवा जुलाई मासस्य 18 दिनांकादारभ्य प्रत्येकस्मिन् शनिवासरे रविवासरे च संचालिता भविष्यति। मध्यप्रदेशस्य भोपालनगरे एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 इत्यस्य आयोजनं प्रचलति। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवः सम्मेलनस्य उद्घाटनम् अकरोत् तथा 870.7 कोटि रूप्यकाणां निवेशेन स्थापितानां 20 औद्योगिक केन्द्राणां शुभारम्भम् अकरोत्। अस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यं मध्यप्रदेशं देशस्य प्रमुख प्रौद्योगिकी औद्योगिक केन्द्ररूपेण विकसितुम् अस्ति। सम्मेलनं सम्बोधयन् मुख्यमंत्री अवदत् यत् विगत 12 वर्षेषु भारतं विश्वस्य शीघ्रतम विकासमान देशेषु अन्यतमं जातम्। असौ अवदत् यत् पूर्वं मध्यप्रदेशः केवलं कृषेः कृते प्रसिद्धः आसीत्, किन्तु अधुना राज्ये ड्रोनयानात् आरभ्य प्रक्षेपणास्त्रपर्यन्तं निर्माणं क्रियते। भारत जापान देशौ अद्य स्वतन्त्रं मुक्तं नियमाधारितं च हिन्द प्रशान्त प्रदेशं प्रवर्धयितुं स्वस्य प्रतिबद्धतां पुनः सुदृढीकृतवन्तौ। जापान देशस्य टोक्यो नगरे आयोजिते 8वें रक्षा नीति संवादावधौ उभौ देशौ विद्यमानस्य क्षेत्रीय वैश्विकयोः सुरक्षा पर्यावरणस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। टेनिस क्रीडायां इटली देशस्य यैनिक सिनर इत्येषः जर्मनी देशस्य अलेक्जेंडर जेवेरेव इत्यमुं पराजित्य स्वस्य विम्बल्डन पुरुष एकल उपाधिं यथावदेव धारयति। इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 हुए हैं। हमारे किसान भाई अपना कार्यक्रम सुने कृषि जगत।
3: जीतन भैया।
4: हाँ सुधु भैया।
3: भाई देखा, ये प्रकृति हो और प्रकृति में बहुत कुछ रूपे कर देखे के मिलेला। कबो जाड़ा गर्मी, कबो बरसात, कबो देखा तरह तरह के जौन हो संकट भी आ जाला। अपने खेती किसानी में देखला, कबो बरखा भयल नहीं भयल, है ना, और कबो जब नाही चाहत।

0: तब होए गल तो इ प्रकृति के जौन रूप हो बाई बहुत अद्भुत हो।
1: काहे नहीं भैया, प्रकृति समय समय पे अपन रूप बदल करला।
0: बिल्कुल। और ये धर एक जौन बहुत बड़ी सत्य बात हो कि ये धरती पर आवे वाला हर आदमी के एक न एक दिन जाए के हो।
1: जाए के हो।
0: जैसे अपन खेती किसानी के देखा, फसल का हो ना कि एक दिन फसल लगे ले, ओकर देख रेख करा, ओकर रोपण करा, ओकरे बाद एक दिन ओके काट करके अपने खेती खरिहाने ले आवा, है ना। तो कहे का मतलब ये हो कि ये जौन अपन प्रकृति हो जौन जौन रूप दिखावे ले ओके ओके देखे के होला हमत हो, और यही प्रकृति में रह करके ओके सहे के भी होला,
1: काहे नहीं
0: है ना।
1: भैया।
0: देखा एक समय आयल रहल कि जौन कोरोना के महामारी आयल रहल, याद हो ना, त्राही त्राही मचल रहल चारों तरफ, है ना। और ये रहे कि भाई कैसो है भगवान जान बचे, जानल। और ओकर प्रभाव ये रहल कि जौन शारीरिक नुकसान भयल कितना जने के समझ ला कि मन मृत्यु तक हो गई, और एकर प्रभाव जौन पड़ल उ समझ ला कि अपने भारत देश के कई साल पीछे ले गल अपने विकास के गति के।
1: सुधु भैया एक बात हम कहब कि बताओ थे कि हमने के गांव गिराव में जिसे देखा कहावत है ना कि रोज कुआं खोदा रोज पानी पिया, तो कोरोना काल में स्थिति ये हो गल भैया कि लोगन के अब देखा सबके लॉकडाउन में मतलब एक जगह कर गल कि भाई बाहर ही नहीं निकले, और जे रोज कमाए वाला रोज खाए वाला बा हम किसान भाई के देखता हुआ तो आमदनी में बड़ा दिक्कत आ गल रहल। तो बताओ थे कि हमहन बड़ा प्रयास से जेकरे मतलब ऊन आई रहल तो कि हम पैकेट बना के जोन खाए पिए वाला सामान रहे पहुँचावल जाए देवल जाए ताकि उनके कोई ना दिक्कत ना हो।
0: भाई देखा तू जीवट आदमी रहला, तोहरे साथे एक पूरी टीम लगल रहल है कि भाई ऐसने व्यक्ति के जोन मजबूर हुआ ना ही कुछ कह सकत हुआ, उनकर आर्थिक की स्थिति ना ही ठीक बा, मदद स्वरूप भाई बहुत कुछ
1: हाँ
0: इस तोरे माध्यम से, तोरे समझ ला कि टीम के माध्यम
1: हमारे
0: से
1: सहयोगी रहन
0: गए
1: हो।
0: गल। बाकी त ई प्रयास समझ ला कि अपर्याप्त रहल, जोने हिसाब से वो फैलल रहल है महामारी ओ हिसाब से भाई ई प्रयास कह त गए जरूर, बाकी त का सफल रहल
1: नहीं
0: भाई
1: सफल।
0: बहुत ज्यादा तो देखा नहीं हो पौलस। यही का दुष्प्रभाव रहल कि अपन देश समझ ला कि कई साल पीछे हो गल विकास में, और एके ही मुख्य धारा विकास से जोड़े बदे जौन विकास का दौड़ बा, चाहे वो विज्ञानी होए, तकनीकी होए, उद्योग रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी, इस सब का विकास जौन हो, ये अपने भारत देश के विकास बदे के समझ ला कि योगदान करना। जब हर पहलू का विकास हुई तब हम कहा कि अपने भारत देश का विकास होत हो।
1: काहे नहीं भैया।
0: तो इतना विकास एक साथ करे बदे के वो समय जो नियम लागू भल, एक एक अभियान लागू भल, आत्मनिर्भर भारत अभियान, जानल ना। यही वजह से कि जौन अपने देश के इतना नुकसान पहुंचल हो ओके मुख्य धारा में लिया है कि विकास की गति कैसे बढ़ावल जाए,
1: बढ़ावल जाए सही
0: है।
1: बात है।
0: और जैसन कि आत्मनिर्भर एक नामे हो तो मतलब अपने आप में निर्भर हो जाना,
1: काहे नहीं के नाम
0: केहू
1: से ही।
0: दूसरे पर निर्भर न रहना, केहू के मुंह ना ताके के हो
1: नहीं।
0: कि भाई उ दही है तब हम खाब, उ दही है तब हम ई काम करब, उ दही है तब हम ई रोजी रोजगार करब, जानल न। अपने पास अपने देश में, अपने गांव में, अपने समाज में जो भी प्राकृतिक संसाधन मौजूद रहल ओकर प्रयोग कैके आत्मनिर्भर बन जाना, जानल न। और एकरे वजह से समझ ला कि हर क्षेत्र में जौन अपने युवा रहना है उनके रोजगार के अवसर प्रदान करना, जैसा जल्ला ना कि भाई हम कहती जैसे कि बहुत सा चीज़ ऐसा हो कि हम लोग विदेश से मंगावत थी, है ना। हम लोग का बहुत सा ऐसा उत्पाद हो जौन विदेश जात भी हो, बाकी त एकर मतलब आत्मनिर्भर भैले के मतलब बिना कि आयात पूरी तरह से बंद हो जाए,
1: बंद हो जाए सही बात।
0: ऊपर निर्भरता कम हो जाए ओके, हम अपने देश में जौन हो पैदा करी तो अपने देश में रोजी रोजगार का अवसर बढ़ी,
1: काहे
0: अपने
1: नहीं।
0: जौन विदेशी मुद्रा हो, है ना, अगर अपने देश से बना करके उत्पादन कह के हम बाहर भेजब तो विदेशी मुद्रा हमें मिली, है ना, और अपने देश का आय बढ़ी।
1: आय बढ़िया।
0: तो जब देश का आय बढ़ी तो निर्भरता जौन हो पर जब समाप्त हुई तो देश का विकास हुई,
1: काहे नहीं।
0: है ना। तो यही वजह से देखा तरह तरह का जौन हो योजना इमन कैल गल, और समझ ला एक बदे आर्थिक निर्भरता बनाओ बदे के कर्ज वगैरह कभी व्यवस्था जौन हो बैंकन से अपने युवा लोगन बदे की कह गल, है ना, कि अगर कुछ करे चाहत हो।

0: प्रशिक्षणके व्यवस्था कयल गेल है ना। तो कहैके मतलब ई हो कि हर तरह से निर्भर बनाबैके प्रयास
1: पूरा सरकार अपन कैलन।
0: हाँ का कहत हुआ
1: तो यही में देखा जोन कहला आप ना कि आत्मनिर्भर भारत योजना, जोन ई योजना के उत्पत्ति भल जब कोरोना काल आयल वही दौरान ई चीज आयल कि हम लोग अपने यहाँ रह करके कैसे अपन आमदनी बढ़ावल जाए, अपन परिवार चला सके, रोजगार लिया सके।
0: बिल्कुल
1: बहुत जन देखबा तो स्वयं सहायता समूह बहुत तरह के खुले हुए,
0: हाँ
1: उनके बढ़ावा बदे भी सरकार आर्थिक रूप से सहयोग
0: बहुत सहयोग करत हो। और ये जोन कहला दिखा कितना जने के भीतर इतनी प्रतिभा बा न कि अरे तू बैठल में रहा है न, बैठल बैठल तुम्हार हाथे से खींच के फोटो बना दी है, कैमरा का उतना बढ़िया फोटो खींची जल न। कितना जने का हुआ दिखा पत्थर के तराश करके इतनी बढ़िया मूर्ति बना दी है कि समझ ला कि देखत तबियत खुश हो जाले। जौन कि हम तू कागजे पर कलम से ना बना सकित ओके छेनी हथौड़ी से पत्थर जैसन कठोर चीज पर उकेर करके इतना बढ़िया चित्र बना दी है, चाहे कोनो महा समझ लग विभूति का भल, चाहे कोनो देवी देवता का भल जलन। तो ये सब जौन प्रतिभा हो, इस प्रतिभा के उभारे बदे के एक स्थान मिलल जल कि तोरे अंदर जौन भी प्रतिभा हो ओके कह के तू अपन कमाई बढ़ा सकल। बहुत से लोग रहना कि उनके अंदर प्रतिभा तो बा लेकिन ओकर जौन हो जुगाड़ उनके लगे नहीं बा,
1: जुगाड़ नहीं हो, अपने आप को समझ भी नहीं पावत,
0: समझ भी नहीं पावत ना, अपने प्रतिभा के जान नहीं पावत ना कि हमारे अंदर कितनी कला हो,
1: कला हो,
0: हम का कह सकीला योगदान अपने देश बदे के चल। तो उन्हें बढ़ावा देवे बदे के देखा ये तरह के जो अभियान चलावल गल उमन भाई देखा सफलता भी मिलल और अपने देश के जो विकास का पहिया रहल है तेजी से घूमल और विकास के समझ ला कि गति पर हमन मुख्य धारा में आ भी गईली और वो अभी भी समझ ला कि विकास की तरफ हमन बढ़ते जाते।
1: सुधु भैया देखा जोन बात के लिए विकास का ना, यही विकास में हो, अपने सरकार का देखा ध्येय हो, नियम ये हो कि लोकल के वोकल के बढ़ावा देवे के, ताकि अपन जोन समान हो ओके आगे बढ़ावल जाए और अपने यहाँ उत्पादन हो, अपने यहाँ पैदा हो,
0: बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल
1: और रोजगार का एक मजबूत साधन बने।
0: तो भाई देखा ये तो जोन बत कही रहा हमान कही जोन आत्मनिर्भर भारत वाला है ना, भाई हर युवा और हर व्यक्ति ये भारत के जो सबसे छोटी कड़ी हो हर व्यक्ति तक ये योजना का लाभ पहुंचे और हर व्यक्ति अपन अपन योगदान दे जिससे उनकर भी आवश्यकता पूरी हो, उनकर भी घर परिवार का बढ़वार विकास हो, साथ ही साथ अपने देश का विकास हो। अगर एक भी व्यक्ति समझ ला कि अछूता रह गल तो समझ ला कि अभी विकास पूरी तरह से नहीं भल जल न। तो एकर लाभ उठावे के जरूरत हो जो अपन भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान हो, अभी से भी अगर जौन प्रतिभा तोरे अंदर हो अगर चाहत हुआ कि ओके लिया करके हम समाज में अपने देश में ओके दिखाई ओके बनाई उसे जो चार पैसा अपने कमाई आय भी बढ़े और अपने देश का भी आय बढ़े तो एक बदे आगे आवक पड़ी जल। तो हम तो कहब कि भाई देखा ये बत कही के साथ साथ अपने खेती किसानी में भी देखा कुछ बत कही जानकारी का हो चाहिए, बाकी तो पहले ही संदेश सुन लिया ओकरे बाद
1: सुना दे भैया।
2: से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जीतन भैया,
2: हाँ
1: देखा भाई, सुन लेना सुनता भैया लोग, और हम कही कि देखा अपने पंचायती में आ जाएगा हुआ डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव, और बहुत जानकार आदमी हुआ जिंदा न, और विकास में समझला कि इनका बड़ा योगदान हो, विज्ञानी भी रहा हुआ। तो आज जौन हो पंचायती में आ गए हुआ तो हम कहब न कि जौन आज का तकनीकी युग कहल जाला, तो अपने खेती किसानी में भी तकनीकी का प्रयोग बहुत समझला कि बढ़ चढ़ के जोर शोर से होत हो। इमन सुनले होबा कि जौन AI तकनीकी एठे बा, जानलन, तो अपने कृषि में AI तकनीकी का क्या उपयोगिता हो, हम डॉक्टर भैया मुकेश श्रीवास्तव से चलती बतियावे, और सुना पंच भैया भी सुना है।
3: डॉक्टर मुकेश कुमार श्रीवास्तव, आप प्रधानाचार्य हों राजकीय इंटर कॉलेज मूसा खान।

0: आज हम आपसे ये जानना चाहब कि आजकल हमारे जो पारंपरिक खेती हो इमन तरह तरह का समस्या देखे में आवत हो
1: जी
0: और कभी कभी ये भी समस्या आ जाले कि समझ ला कि रोपाई करे बदे के आज खेत में और जो काम करे के होला उकरे बदे श्रमिक भी नहीं मिलतन या केहू से मदद लेके चाहत करवाएला। तो ये जो समस्या आवत हो इकरे बदे जो आजकल आधुनिक खेती या नई तकनीकी के बात कैल जात हो तो का इमन कुछ ऐसा हो उसे मदद मिल सकला जो आपका नई तकनीकी हो वो का हो।
1: आज आप देखें कि संपूर्ण विश्व में कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं
0: जी,
1: और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आज संपूर्ण जगत तकनीकी क्रांति के दौर से गुजर रहा है। तो ऐसी तरह तकनीकी जो क्रांति है उसका प्रभाव अब कृषि के क्षेत्र में भी पड़ रहा है।
0: जी कैसे?
1: अब परंपरागत कृषि की जगह आधुनिक कृषि का सूत्रपात हो रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और ग्रामीण भारत के विकास का सबसे बड़ा आधार है।
0: जी,
1: तो ऐसी स्थिति में कृषि के पारंपरिक तरीकों में बदलाव की नितांत आवश्यकता है।
0: तो कैसे कर जाए बदलाव?
1: अब यह बदलाव जो है इसमें जो तकनीकी क्रांति है उसमें आजकल एक सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वह है कृत्रिम बुद्धि का।
0: कृत्रिम बुद्धि?
1: कृत्रिम बुद्धि
0: कहा डॉक्टर साहब?
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
0: अच्छा, जैसे एआई के नाम से आजकल जानल जाता है, बड़ी चर्चा है कर।
1: जी,
0: तो क्या कृषि के क्षेत्र में भी एक उपयोग हो सकता है?
1: बिल्कुल।
0: कैसे?
1: कृषि के क्षेत्र में जो एआई है अगर आप बहुत गहराई से देखेंगे तो समस्त क्षेत्रों में इसने अपनी पैठ बना ली है। जैसे आज आप कृषि करते हैं जो परंपरागत तरीके से,
0: जी जी,
1: तो परंपरागत तरीके से आप खेती कर रहे हैं, आपने एक बीज डाला, बीज की आपने रोपाई की, कटाई की और अनाज आप घर ले गए। एआई क्या करता है कि एआई सबसे पहले तो आपके मिट्टी की जांच करेगा, जो इनके उपकरण हैं उन उपकरणों की मदद से आप मिट्टी की पहले जांच करते हैं, और मिट्टी की जांच करके यह पता चलता है कि जो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति है वह कितनी है, कौन से पोषक तत्वों की इसमें कमी है, क्या हम इसमें और मिलाएं कि हमारा उत्पादन बढ़े। तो कृषि में सबसे बड़ा जो आज चुनौती है किसान के सामने उत्पादन को बढ़ाने की और नवीन तकनीकी से खेती करने की।
0: बिल्कुल,
1: केवल धान और गेहूं के परंपरागत खेती करके किसान अपनी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन नहीं ला सकते
0: जी।
1: तो ऐसी स्थिति में एआई की मदद से सबसे पहले तो हमको यह मदद मिलती है कि हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति क्या है, इसमें किन पोषक तत्वों की कमी है, और हम जो फसल लगाना चाह रहे हैं, हम जिस चीज की खेती करना चाह रहे हैं, क्या वह इस हमारे खेती वाली जो भूमि है उसके अनुरूप है कि नहीं।
0: जी जी,
1: तो सबसे पहले तो एआई हमारे भूमि की उर्वरा शक्ति बताएगा, किस प्रकार की फसल हमको लगानी है उसके बारे में जानकारी देगा। नई नई प्रजातियां आज विकसित हो रही हैं, जैसे आप देखिए सेब, संतरा, अंगूर, आम, इसकी तमाम नई नई प्रजातियां आ गई हैं। आम के ऐसे ऐसे प्रजातियों का विकास किया गया है जो छोटे पेड़ हैं और अच्छा खासा फल दे रहे हैं
0: जी,
1: जिनकी आपके मार्केट में डिमांड भी ज्यादा है। तो किसान जो फल लगाने वाले किसान हैं अब वो परंपरागत आम के पेड़ की बजाय जो एआई की तकनीक से विकसित किए जा रहे हैं आम के पेड़, अब उस पर धीरे धीरे आश्रित हो रहे हैं,
0: जो उनकी बहुत कम जगह में भी हो सकता है।
1: जी, छोटे पेड़ हैं जिनकी ऊंचाई 4 फीट 5 फीट है और अच्छा खासा फल दे रहे हैं
0: जी,
1: तो कम जगह में भी इनको लगाया जा सकता है
0: जी, जी।
1: ये ऐसे फल हैं कि जिनमें आप जो है खेतों में जिनको लगाने के बाद खेती का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ जब बहुत बड़ा नहीं होगा तो खेत में छाया नहीं आएगी, तो खेत में जब छाया नहीं आएगी तो आप खेतों में और भी उत्पाद लगा सकते हैं। आप सब्जियों का लोग खेती करते हैं।
0: हाँ, जैसे पहले आवे का बगीचा रहे तो समझ ला कि सूरज का रोशनी नीचे आईबन करे।
1: जी जी।
0: और अब छोटा छोटा पौधा रही है तो उनके बीच से जो हो जमीन में रोशनी भी पड़ी।
1: जी, रोशनी भी पड़ रही है उसमें। तो एआई की मदद से किसान भाई अपने फल सब्जियों की जो खेती है उसको आसानी से कर रहे हैं, मिट्टी की गुणवत्ता उनको पता लग जाती है
0: जी।
1: उस गुणवत्ता के हिसाब से वो कौन सा फसल हमको लगाना है इस पर काम करते हैं
0: भाई। ये तो बहुत जरूरी हो ना कि उनके जानकारी हो जाए कि हमारी मिट्टी कौन फसल लायक हो
1: जी,
0: अना ही तो पता चलेल कि भाई बो देत हुआ और तत्व जो उन्हें चाहिए वो फसल बदे के उमन उपलब्ध नहीं बा तो इसे फायदा की जगह नुकसान
1: हो जाता
0: जी।
1: अब मोबाइल एप्लीकेशन में जैसे एआई की जब बात करें तो मोबाइल एप्लीकेशन में चैट जीपीटी का प्रयोग करना चाहिए हमारे किसान भाइयों को। चैट जीपीटी में आप सवाल पूछते हैं और उसका वो पूरा वो एआई बेस्ड सिस्टम है जो आपको सटीक जवाब देता है।
0: अच्छा।
1: जैसे आपने सवाल पूछा कि गर्म क्षेत्रों में हम सेब की खेती कैसे करें,

0: से संबंधित सारे जवाब आपको मिल जाएंगे कि कौन सी प्रजाति का आपको पेड़ लगाना चाहिए, कब कब सिंचाई करनी चाहिए, पेड़ की कब जो आपको खाद की जरूरत पड़ेगी, कब आपको खाद देना है, कितने दिन बाद देना है, तो ये सारी जानकारी आपको चैट जीपीटी के माध्यम से मिल जाएगी।
1: तो जोन मोबाइल हमन प्रयोग करत है
0: जी
1: का यही मोबाइल में ही बात पूछ
0: जी
1: सकीला?
0: जी जी
1: अच्छा, ये तो बड़ी
0: आज
1: अच्छी बात हो।
0: सूचना तकनीक की जो क्रांति है उसमें सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, तो किसान भाइयों को भी अब इस पर थोड़ा आश्रित होने की जरूरत है। यह नहीं समझने की जरूरत है कि हम मोबाइल पर आश्रित होकर नुकसान अपना करेंगे। मोबाइल पर आप आश्रित होंगे तो आपकी खेती के परंपरागत तरीकों में बदलाव आएगा, सुधार आएगा।
1: जी बिल्कुल। तो इसे जो हो जानकारी का और कोनो मशीन यंत्र खरीदे के होला कि बस मोबाइल से मने ये पूछ करके अब समस्या का समाधान कर जा
0: नहीं,
1: सकला?
0: मोबाइल के साथ साथ जैसे जब आप स्मार्ट खेती की तरफ आगे बढ़ेंगे, एआई तकनीक पर आप जाएंगे, तब ऐसी स्थिति में आपको एक ड्रोन की आवश्यकता पड़ती है।
1: अच्छा,
0: लेकिन
1: ड्रोन माने
0: आवश्यकता
1: जोन
0: नहीं है वो जो उड़ के हवा
1: हवाई
0: में
1: जहाज की
0: ना।
1: तरह जो
0: जी
1: उड़ाला।
0: जी जी
1: अच्छा।
0: लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि किसान भाई सारी चीजों की खरीदारी करें। कुछ ऐसे भी संस्थाएं हैं जो इन सब सामान को खरीद के रखते हैं और किसान की आवश्यकता के अनुरूप उसके पास पहुंचते हैं और अपनी सुविधा उनको प्रदान करते हैं। इसके बदले में थोड़ा बहुत उनका निर्धारित शुल्क होता है। जैसे
1: समूह
0: आप
1: के माध्यम से भी इस तरह
0: जी
1: का काम कर
0: जी अगर
1: जाते
0: किसान
1: होंगे
0: भाई
1: तो।
0: अपना समूह बना लें, लंबा चौड़ा खेत है तो कम पैसे में उनका काम हो जाता है। अब जैसे भारतीय खेती की एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है कि यहाँ जोत का आकार छोटा छोटा होता है,
1: जी हाँ।
0: और जहां जोत के आकार छोटे हैं तो वहां सभी किसान भाइयों को एक साथ मिलाना कठिन समस्या हो जाती है। तो यदि बड़ा जोत का आकार है तो वहां आप आसानी से ये ड्रोन की मदद से कीटनाशक या उर्वरक का छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन जब छोटे छोटे जोत हैं तो ऐसे मामले में किसान भाइयों को एक मंच पर आने की जरूरत होती है और एक तरह के फसल लगाने की जरूरत होती है, ताकि एक बार जब वो पेस्टिसाइड का छिड़काव करे
1: जी जी
0: तो वह पेस्टिसाइड सारे फसल जो लगे हों एक तरह के हों, ताकि एक ही पेस्टिसाइड से काम चल जाए,
1: काम चल जाए।
0: तो इससे किसान भाइयों का खर्च कम हो जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, एक बात और जानना चाहब कि अभी भी हमारे के जो खेती हो मौसम आधारित हो, है
0: जी
1: ना, तो का मौसम कैसे कबो कबो होला ना कि जैसे आप पेस्टिसाइड का या दवा का छिड़काव करे कहत हुआ,
0: जी
1: छिड़काव हो गल, पता चल मौसम का मिजाज बदल, बारिश हो गई और उनका दवा का पैसा नुकसान हो गल, कुछ
0: जी
1: ढुआ गल, तो का ये बात का जानकारी एआई के माध्यम
0: हाँ
1: से हो सकला कि हाँ वर्षा अभी हुई कि ना हुई, कितना दिन में हुई?
0: जी बिल्कुल,
1: जी
0: एआई की मदद से आप मौसम की एकदम सटीक भविष्यवाणी कर पा रहे हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे अभी आप इधर कुछ समय में आप देख लीजिए कि मौसम विभाग ने पूर्व सूचना दिया कि तमाम जनपदों में तेज आंधी के साथ बारिश होगा, और वो सटीक रहा। जितना समय मौसम विभाग ने दिया उतना ही समय पे आंधी पानी आया। तो ये सारे जो सिस्टम है वो एआई की मदद से हुए। जो सैटेलाइट हमारे लगे हैं मौसम विभाग की ने लगाया है,
1: जी जी
0: एआई बेस्ड सैटेलाइट, उनकी मदद से ऐसा संभव हो पा रहा है। तो जब किसान भाई इसकी मदद लेंगे और आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन में जब ये डालेंगे कि अगले 24 घंटे में मौसम कैसा होगा या अगले 1 महीने हमारे क्षेत्र का मौसम कैसा रहेगा, तो वह बता देगा कि अगले 1 महीने आपके क्षेत्र का तापमान इतने से इतने के बीच में रहेगा। तो जब आपको तापमान का आभास हो जाएगा तो आप उस तापमान के हिसाब से
1: अपने
0: अपने
1: फसल
0: खेतों में
1: का।
0: फसल का प्रयोग कर सकते हैं। कौन से बीज हम डालें
1: जी
0: कि जो
1: जी
0: 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो सर्वाइव कर सके, चल सके। तो इसके लिए एआई बहुत सटीक यंत्र के रूप में विकसित हो रहा है, जो धीरे धीरे अगर किसान भाई इस पर अपनी निर्भरता दिखाना शुरू करेंगे तो नुकसान की जो दर है वो काफी कम हो जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, एक बात और बतावें कि जैसे अपने खेतन में जो हो सिंचाई की जरूरत पड़े ले, तो का एआई के माध्यम से ऐसा कोनो तकनीकी हो कि सिंचाई मतलब समय से हो जाए, कम पानी में हो जाए और हमारा उत्पादन भी बढ़िया हो?
0: हाँ, इसके लिए भी बहुत बढ़िया टेक्निक एआई ने डेवलप किया है, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उन्होंने डेवलप किया है। जैसे आप घर के अपने छतों पर आप गमलों में पौधे लगाते हैं, रोज आप पानी नहीं दे सकते, तो आप एक नई टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि पतली पाइप के माध्यम से आपने किसी बोतल में पानी भरा और सारे पाइप के गमलों को आपने टच करा दिया, उसमें जगह जगह आपने छेद कर दिया। तो इस सिस्टम से आप गमलों की सिंचाई करते हैं। किसान भाइयों के लिए भी जो अपना एआई सिस्टम है उसने एक इस तरह का सिंचाई का यंत्र डेवलप किया कि आप कम पानी में इस तरह का पूरे खेत में चारों तरफ आप पाइप फैला दीजिए और उसको आप एक जगह सेट कर दीजिए। जब समय आपका आया आपने एक जगह से टैप खोल दिया
1: अच्छा।
0: और सारे नल में पानी जाएगा, सारे पाइप में, और थोड़े थोड़े जहां जरूरत है वहां पानी वो फैलाता जाएगा। तो इससे क्या है कि जो अधिक पानी का नुकसान होता है, जैसे आप अधिक पानी फ्लो में आपने खोल दिया, कहीं आपको आवश्यकता है कम

0: की वहां भी अधिक पानी पहुंच जाता है, लेकिन इस पद्धति में जितनी जहां जरूरत है उतनी ही पानी जाएगी। इसके बाद वो जो मशीन है हमारा एआई वाला, वो ऑटोमेटिक पानी का फ्लो जो है बंद कर देता है। तो इससे
1: अच्छा
0: किसान भाइयों के पानी की बचत होती है, जहां कम पानी है, जहां अल्प जल की व्यवस्था है, वहां भी अच्छे फसल अब हो रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब, एक बार हम कुछ लोग के बात करत सुनले रही कि भाई कबो कबो यह कि सिंचाई की जरूरत हमारे खेते में हो और वो बखत वहाँ उपलब्ध ना हुआ, कहीं दूर हुआ, बाहर हुआ, तो वहाँ से भी का कुछ रिमोट के माध्यम से या कोनो सेंसर के माध्यम से सिंचाई का जो संयंत्र हो के चालू कर सकना, बंद कर सकना, ऐसा भी व्यवस्था हो
0: हाँ
1: पाएगा इनके
0: बिल्कुल
1: माध्यम से
0: बिल्कुल, एक
1: कैसे?
0: एप्लीकेशन लेना पड़ेगा आपको। अपने मोबाइल में आपने एप्लीकेशन लोड कर लिया, अब उस एप्लीकेशन में आप ये सेट करेंगे कि हमारी जो भूमि है वह कितनी दूरी पर है,
1: अच्छा
0: जहां संसाधन है वहां से कितनी दूरी है। जब आप सेट कर देंगे, जब आपको पानी की आवश्यकता है, तब आप डिमांड अपनी डालेंगे उसमें।
1: अच्छा
0: जब डिमांड डालेंगे तो ऑलरेडी वो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, वो वहां से नल खोल देगा,
1: अच्छा
0: और जैसे ही खोलेगा वैसे आपके खेतों में पानी पहुंचना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सारा सिस्टम जो है एआई के एप्लीकेशन पे बेस्ड है। तो
1: अच्छा
0: जैसे ही किसान भाई अपने, जो आजकल हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, जैसे आपने पहले सवाल किया, तो एंड्रॉयड मोबाइल जो है सबके पास है, अब इसमें थोड़ा हमको अपने आप को व्यावसायिक तरीके से विकसित करने की जरूरत है। सिर्फ जेब में हम रख के घूम रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा, तो किसान भाइयों को इसके लिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पड़ेगी।
1: भाई सबसे बड़ी बात ये हो कि ये जो आधुनिक जमाने का खोज हो,
0: जी
1: ये मोबाइल जो हो,
0: जी जी
1: तो आधुनिक जमाने के साथ साथ हमें कदम से कदम मिला के चले के
0: जी
1: पड़ी, तो
0: जी
1: ओकर जानकारी तो होवे के
0: जी
1: चाहिए, है ना? तो डॉक्टर साहब एक बात और बताओ है कि का ये जो एआई डेवलप भैल हो, इमन कुछ मानव रहित भी कार्य हो जाना, जो उनकी मानव की जरूरत ना हो, ट्रैक्टर चलावे के भैल
0: हाँ
1: या
0: बिल्कुल
1: हार्वेस्टर चलावे के
0: बिल्कुल
1: भैल,
0: बिल्कुल
1: का इक्वल काम भी जो हो वो प्रोग्रामिंग के माध्यम से
0: जी
1: हो
0: बिल्कुल।
1: जाना?
0: रोबोटिक्स हार्वेस्टर का विकास किया गया है, जिसमें आपको प्रोग्रामिंग सेट कर देना है, और उसके बाद आपको आदमी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पूरे आपके जो है खेत में हार्वेस्टर का काम कर देगा, हार्वेस्टिंग हो जाएगी उससे। सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर का विकास हो रहा है, जिसमें आप प्रोग्राम सेट करिए और पूरे आपके खेत की जुताई हो जाएगी। ड्रोन द्वारा आप जैसे दवा का छिड़काव कराते हैं, तो उसमें एक व्यक्ति सिर्फ उसको कंट्रोल करने के लिए चाहिए, अब बाकी अगर आप चाहे तो बिगहो बिगहा आप जो है दवा और फर्टिलाइजर का छिड़काव ड्रोन की मदद से आप कर सकते हैं। तो जहां एक व्यक्ति 2 दिनों जो काम करता है उसको ड्रोन 2 घंटे में खत्म कर दे रहा है, जहां आपको 20 व्यक्तियों की जरूरत थी वहां एक ड्रोन कर ले रहा है, लेकिन कंट्रोल करने के लिए एक आदमी चाहिए, तो मैन पावर भी आपको कम चाहिए। एआई की जो पद्धति है उसने आप अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो पूरे कृषि में समझिए क्रांति लाने का काम करेगा। तो जो एक तरफ जहां पूरा विश्व तकनीकी क्रांति की बात कर रहा है, दूसरी तरफ हम तकनीकी क्रांति के साथ साथ कृषि में भी क्रांति लाएंगे।
1: बिल्कुल
0: अभी तेलंगाना में एक छोटा जो है प्रयोग किया गया, वहां एआई की पद्धतियों का प्रयोग किया गया, वहां मिट्टी की जांच की गई, उर्वरा शक्ति की जांच की गई, कौन कौन से उसमें थे उनकी जांच की गई, जो पोषक तत्व थे। तो इन सब की जांच के बाद जब खेती की गई, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, परंपरागत कृषि की तुलना में लगभग 20 से 22% उत्पाद ज्यादा हुआ।
1: अच्छा
0: तो अगर हम इस
1: वाह
0: पर आश्रित हों, हम इन पद्धतियों का प्रयोग करें और किसान के उत्पादकता में अगर हम 20% की वृद्धि कर ले रहे हैं, तो उनकी आय में निश्चित तौर पर 20% की वृद्धि हो जाएगी। एआई की उपयोगिता जब किसान समझ जाएगा
1: तो क्या प्रयोग करने
0: तो
1: लगे
0: प्रयोग
1: हैं,
0: करेंगे,
1: उत्पादन बढ़ जाए हमारा।
0: उत्पादन बढ़ेगा, और निश्चित तौर पर जब उत्पादन बढ़ेगा तो आज हम जो विकसित भारत का सपना देखा जा रहा है हमारे देश में,
1: वो साकार हो
0: वो
1: जाएगा,
0: साकार होगा, क्योंकि किसान ही पूरे अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने
1: आधार
0: जाते
1: हो
0: हैं।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर मुकेश कुमार श्रीवास्तव, आप हमारे पंचायती में ना, और इतनी अच्छी जानकारी, आधुनिक जानकारी हमारे किसान भैया लोगों के देना कि अपने खेती में एआई तकनीकी जो हो उसका प्रयोग करके कैसे अपन उत्पादन बढ़ा सकना और कैसे जो हो सक्षम बन सकना, जैसे कि अपन भी विकास हो, अपने देश का भी विकास हो। जानकारी दे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। जितन भैया
0: हाँ सुधु भैया।
1: देख ले कितनी बढ़िया जानकारी जो हो देना है डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव, कि एआई जो आधुनिक तकनीकी हो अपने खेती बाड़ी में कितना योगदान करत हो,
0: कितना योगदान दिला।
1: और जो भी आधुनिक विकास होला ना वो देखा विकास बदे होला, है
0: सही
1: ना?
0: बात सही बात।
1: अब जैसे मोबाइल जैसन चीज़ जो जेबा में रखत हुआ, है ना, समझ ला कि पूरे देश दुनिया से जुड़ल हुआ है। अभी
0: कहीं नहीं
1: खाली
0: भैया
1: मनोरंजन का साधन नहीं हो
0: नहीं
1: कि
0: भैया
1: पेड़ के नीचे बैठ के काने में उंगली डाल के खाली बिरहा सुनाओ से
0: नहीं
1: चल ना,
0: नहीं
1: एकर प्रयोग अपने खेती बाड़ी में करा, आधुनिक जानकारी ला कि अपने विज्ञानी भैया लोग का विकास करत हुआ, कौन कौन खोज करत हुआ, और ओके अपने खेती में ओके
0: अपनावा
1: लगावा अपनावा,
0: अपनावा। हाँ
1: है ना? और अपने खेत का जो जो

0: बढ़ा
1: सकती
0: पैदावार,
1: हो,
0: हाँ
1: पैदावार हो, उत्पादन हो के बढ़ावा।
0: बढ़ावा, रोजगार भी बढ़े भाई,
1: तो
0: आमदनी
1: भाई देखा,
0: बढ़े।
1: नगद की जानकारी देना और एक पर अमल करने की जरूरत हो
0: जरूरत
1: जल्द।
0: अभी है।
1: और हम कहें कि अपने पंचायती में ना आज देखा भाई निर्गुण हो, श्याम नारायण भैया का,
0: हाँ,
1: तो हम कहें पंच भैया भाई सुन ले निर्गुण।
0: सुनवा दे भैया।

0: जतन भैया
1: हाँ सुधु भैया।
0: भाई देखा ही निर्गुण रहा है श्याम नारायण भैया का। तो भाई पंच भैया लोग सुन लेना, और हम कहीं चला चलावत जो काल कार्यक्रम सुन वही भी अपने पंच भैया लोगों को बताए दा।
1: देखा बिहाने बिहाने जो कार्यक्रम होला खेती के बारे 6:05 पर एमन देखा विषय रही तिल की खेती, ये विषय पे जानकारी दी है दिनेश कुमार सिंह भैया।
0: सांझी के 6:30 पर जो कृषि जगत कार्यक्रम होता ना, इमन देखा सुधाकर सिंह और दिनेश कुमार सिंह भैया के बात कही हुई है ना, कौन चीज़ का केले के खेती विषय पर। और एक साथ है देखा चले कबीला भी होता तो पंच भैया लोगों से आज्ञा ला।
2: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गाना है फिल्म पिया का घर से। इस गीत को अपनी आवाज दी है किशोर कुमार ने। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अगला गीत है फिल्म पेइंग गेस्ट से। इस गीत को अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर ने। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है एसडी बर्मन ने।

0: अगला गाना है फिल्म किनारा से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और भूपिंदर सिंह की। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने, संगीत है आरडी बर्मन का।
1: दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा चंदन का चेहरा नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है गर याद।

लता मंगेशकर और भूपिंदर सिंह के गाए फिल्म किनारा के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार रेखा गौतम पुत्री लालजी गौतम निवासी पूरा होल राय थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर ये दिनांक 12 मई सन 2026 से लापता है। इनके विषय में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 16 वर्ष कद 5 फीट इकहरा बदन चेहरा लंबा और रंग सांवला है। इनके विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर कृपया अपने नजदीकी थाने को अथवा थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर को सूचित करें। अगली सूचना कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रीति पत्नी दिनेश कुमार सिसौडा कला थाना धीना जनपद चंदौली की निवासी हैं। ये दिनांक 25 मई सन 2026

को अपनी ससुराल सिसौड़ा कला से लापता हो गई। होलिया इस प्रकार है, उम्र 19 वर्ष, ऊंचाई 157.48 सेंटीमीटर, चेहरा सामान्य और रंग गेहूं है। आखिरी बार देखी जाती समय इनका पहनावा नीले रंग का धारीदार सलवार सूट और काला दुपट्टा था। इनके विषय में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर कृपया अपने नजदीकी थाने को अथवा थाना प्रभारी निरीक्षक धीना चंदौली को मोबाइल नंबर 9454403185 पर सूचित करें। सूचनाएं समाप्त हुईं। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे रिले किया जाएगा हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
1: कहाँ से पता चलेगा?
0: उद्गम से।
2: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
0: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
7: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ, कल से आम नागरिक कर सकेंगे यात्रा, 40 से 45 मिनट में तय होगा दोनों शहरों का सफर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित, कहा स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी, सर्वोच्च न्यायालय ने SIT से मांगी जांच की स्टेटस रिपोर्ट। और एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची लखनऊ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया विमर्श, कल राजनीतिक दलों के साथ बैठक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज उन्नाव में 4,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लखनऊ हरदोई राष्ट्रीय राजमार्ग के 32 किलोमीटर के एक खंड का लोकार्पण और इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर बनने जा रहे 4 लेन वाले फ्लाईओवर का शिलान्यास।

0: प्रयास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश बेहतरीन सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन के लिए अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।
1: राज्य आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का नेतृत्व कर रहा है और आज हम लोग प्रदेश की दो मेट्रोपॉलिटन सिटी की ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी, ये हमारे SCR को, स्टेट कैपिटल रीजन के जो हमारे जनपद हैं लखनऊ के इर्द गिर्द, इन सबको जोड़ करके लखनऊ को एक भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा है।
0: कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राजधानी लखनऊ ही नहीं पूरे प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुदृढ़ कानून व्यवस्था के चलते प्रदेश में कई बड़े निवेश आ रहे हैं जो आने वाले दिनों में धरातल पर देखने को मिलेंगे।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का तेजी के साथ विकास हो रहा है, कुछ ही महीनों के अंदर, कुछ साल के अंदर नहीं, कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही हैं और वहाँ जिनको स्थापित करना है उनमें से कुछ लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री जी से आकर बातचीत की है और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 सालों में प्रदेश में 5 लाख करोड़ के विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा।
1: 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता मिली और आज बदलते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप सब लोग देख रहे हैं और हमारा देश का उत्तर प्रदेश एक प्रकार से हमारे देश का हृदय है। अगर उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा, संपन्न होगा, प्रगतिशील होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, रोजगार निर्माण होगा, एक्सपोर्ट यहाँ से ज्यादा होगा तो हिंदुस्तान की भी तरक्की होने वाली है।
0: आधुनिक सुविधाओं से लैस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे कल से यात्रियों के लिए खुल जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
3: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। दोनों शहरों के बीच कार से यात्रा करने पर टोल 275 रुपए होगा और इस पर दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं होगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़क अवसंरचना से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और मेडिकल रिसर्च में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल इलाज उपलब्ध कराना ही नहीं बल्कि सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाना भी है।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का लक्ष्य केवल इलाज उपलब्ध कराना ही नहीं है बल्कि एसेसिबल, एफोर्डेबल, एफोर्डेबल और क्वालिटी ड्रिवन हेल्थ केयर सिस्टम बनाना भी रहा है। आज भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT से जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में CBI जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने SIT की संरचना का विवरण भी मांगा है। मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। उधर

0: श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावे में अनियमितता मामले में सुनवाई के दौरान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज प्रतिभा नारायण ने आठों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी है। अब आरोपियों की पेशी 27 जुलाई को होगी। वहीं एसआईटी ने मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए धर्मसेना के अध्यक्ष संतोष दुबे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब एक घंटे तक पूछताछ की। संतोष दुबे ने बताया कि एसआईटी ने उनसे कुछ दस्तावेज मांगे हैं जो उन्होंने एसआईटी को सौंप दिए हैं।
1: एसआईटी के सम्मानित सदस्यों ने, अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से हमारा पक्ष जाना अपेक्षा की कि और भी कुछ आपके पास हो तो हम तक उपलब्ध करें। जो बातें उन्होंने हमसे पूछा मैंने उनको पूरा जो हमने देखा सुना जाना समझा वो सब बताया।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी आज दो दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची। ये समिति विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों और विशेषज्ञों के साथ इस विषय पर मंथन करने के लिए राज्य के दौरे पर है। लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने बताया कि आज समिति ने प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बैंकर्स और वकीलों से विचार विमर्श किया। कल सुबह ये समिति राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर एक राष्ट्र एक चुनाव पर उनके विचार जानेगी।
2: कल सुबह जो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, राजनीतिक दल हैं, इन सब के क्या विचार हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, क्योंकि अगर एक समय पर दोनों चुनाव विधानसभा लोकसभा के होते हैं तो उससे बहुत सारी चीजों पर फर्क पड़ता है। विधानसभा के चुनाव कभी लोकसभा के चुनाव, कभी एक राज्य के चुनाव, कभी दूसरे राज्य के चुनाव, तो इन सबसे मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन अभी देखना यह है कि अलग अलग दलों के इस पे क्या विचार है।
0: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर, शाही ईदगाह मस्जिद और संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद से जुड़े विवादों को विशेष लोक अदालत के माध्यम से सुलझाने के निर्देश दिए हैं। ये विशेष अदालत 21 से 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित होगी। कार्यवाही से पहले इन मामलों से जुड़े पक्षों को लोक अदालत से पहले होने वाली सुलह वार्ता में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। ज्ञानवापी मामले में मंगलवार को वाराणसी के जिला और सत्र न्यायालय परिसर स्थित मध्यस्थता केंद्र में प्रस्तावित है। इसमें ज्ञानवापी से जुड़े विभिन्न वादों के पक्षकारों और उनके अधिवक्ताओं को आमंत्रित किया गया है। ज्ञानवापी मामले से जुड़े अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि अगर मध्यस्थता से कोई समाधान नहीं निकलता तो मामले की सुनवाई न्यायालय में जारी रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ, कल से आम नागरिक कर सकेंगे यात्रा, 40 से 50 मिनट में तय होगा दोनों शहरों का सफर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित, कहा स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी से मांगी जांच की स्टेटस रिपोर्ट। और एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति दो दिवसीय दौरे पर पहुंची लखनऊ। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया विमर्श, कल राजनीतिक दलों के साथ बैठक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: पार्टी चाहिए,
4: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
5: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
3: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
3: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग।

कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म प्रेम नगर से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने, गीत की बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत है SD बर्मन का।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म प्यासा से साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत की धुन।

ये गीत आपने सुना, इस गीत को गाया था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। गीत के बोल लिखे थे साहिर लुधियानवी ने, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का। फिल्म का नाम था इज्जत। आइए अगला गीत सुनते हैं। अगला गीत हमने लिया है फिल्म फिल्म आंधी से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने, संगीत है आर डी बर्मन का।

अब अगला और अंतिम गीत है फिल्म। फिल्म हीरो से इस गीत को अपनी आवाज दी है रेशमा ने। शब्द रचना है आनंद बख्शी की, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का।

रेशमा के गाये फिल्म हीरो के इसी गीत के साथ हमारा कार्यक्रम रसरंग अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं इंद्र कुमार गुप्ता के द्वारा गाया हुआ ये भजन।

दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश अब नए अवतार में, यानी फिर एक बार मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। जी हाँ, डीडी फ्री डिश में अब हैं 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, 51 एजुकेशनल यानी शैक्षिक चैनल्स, साथ ही 48 रेडियो चैनल्स भी। बस एक बार सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई मासिक या अतिरिक्त खर्च नहीं। डिजिटल क्रांति की दिशा में एक और कदम बढ़ाइए, डीडी फ्री डिश घर लाइए। जी हाँ, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से भरपूर डीडी फ्री डिश का नया अवतार, यानी मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा, यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ। हम का

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी। कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म प्यार का मौसम से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं आरडी बर्मन।

अगला गीत है फिल्म परदेसी से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। गीत की बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने। संगीत है चित्रगुप्त का।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म पारस से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की, गीत की बोल लिखे हैं इंदीवर ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

अगली आवाज़ आप सुनेंगे तलत महमूद की। फिल्म का नाम है छाया। गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने, धुन बनाई है सलील चौधरी ने।

अगला गीत है फिल्म चोरी चोरी से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। शब्द रचना गुलशन बावरा की, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

अब कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत है फिल्म अर्पण से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को सुरों से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम रसमाधुरी अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री

0: पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4N को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनके बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। ये कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ

0: कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही हैं और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
1: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3-लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
3: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
4: Provisionally, we are looking at a 10% increase.
5: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है, ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
4: Other operating income is not included.
1: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
6: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: नागालैंड के चूमो केदिमा जिले के शुखोवी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध IED विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपेन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
7: अमरीका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए, इनमें वायु रक्षा प्रणाली

तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमेरिकी हमलों की निंदा करते हुए अमेरिका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित

0: व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाज के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीषा।
1: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का।
2: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. India and US engage for balanced and commercially meaningful trade pact, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, dismisses media reports of deadlock in trade talks. India's total exports jumps over $232 billion, registering growth of 11.37% during first quarter of current fiscal. Former AAP leader Tahir Hussain and 4 others convicted for killing of IB officer during 2020 Delhi riots. The US and Iran exchange another wave of strikes as dispute over control of Strait of Hormuz raises tension in the region. In cricket, India scripts history beating England by 270 runs in first ever women's test at the Lords. And 16 Indian boxers enter finals at Asian Under-19 and Under-23 championships in Jakarta. And now the news in detail. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with US Trade Representative Jamieson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Goyal today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Minister of Economy, Trade and Business Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the India-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. He added that both sides also exchanged views on the India-EU FTA and explored ways to deepen business ties and expand India's commercial engagement with Spain as a valued partner. Mr. Goyal is currently on a 5-day visit to Spain, Belgium and Finland from today. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year. Commerce and Industry Ministry said

ये आकाशवाणी है, जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका एक मुतवाजिन और तिजारती लिहाज से मौसर तिजारती माहिदे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने तिजारती मुजाकिरात में तातुल से मुतालिक मीडिया की खबरों को मुस्तरद कर दिया। रवां माली बरस की पहली सहमाही में भारत की मजमू बरामदात 232 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज कर गईं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले 11.37% ज्यादा हैं। आम आदमी पार्टी के साबिक लीडर ताहिर हुसैन और दीगर चार अफराद को साल 2020 के दिल्ली फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अफसर अंकित शर्मा के कत्ल के मामले में मुजरिम करार दिया गया है। अमरीका और ईरान ने एक बार फिर एक दूसरे पर हमले किए हैं। आबनाए हुरमुज पर कंट्रोल के तनाजे के बायस खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। खवातीन क्रिकेट में भारत ने तारीख रकम करते हुए लॉर्ड्स के मैदान में खेले गए पहले खवातीन टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया। और जकार्ता में जारी 19 साल और 23 साल तक की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कम से कम चांदी का तमगा यकीनी बना लिया है। अब खबरें तफसील से। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज भारत और अमरीका के दरमियान तिजारती मुजाकिरात में तातुल से मुतालिक मीडिया की खबरों को बेबुनियाद, गुमराहकुन और मुकम्मल तौर पर गलत करार दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि भारत और अमरीका की टीमें एक ऐसे तिजारती माहदे पर पूरी संजीदगी से काम कर रही हैं जो मुतवाजिन हो और तिजारती एतबार से बामानी हो। नीज दोनों ममालिक के कारोबारी तबकों, किसानों, मजदूरों और सारफीन के हकीकी फवायद फराहम करे। उन्होंने बताया कि पिछले महीने नई दिल्ली में अमेरिका के तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रीर के साथ उनकी मीटिंग मुस्बत रही थी। दोनों फरीकों ने ऐसे मुतवाजिन और मुफीद माहिदे के लिए अपने अज़्म का इरादा किया और इस मकसद को हासिल करने के लिए दोनों ममालिक की टीमें मुसलसल रबते में हैं। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज स्पेन के अपने सरकारी दौरे का आगाज किया। उन्होंने स्पेन हुकूमत के अव्वल नायब सदर और कॉमर्स, तिजारत और कारोबार के वजीर कार्लोस कैपेबेलेरो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने भारत और स्पेन के इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के शोबों में मुफीद बातचीत की है।

उन्होंने बताया कि मुज़ाकरात में काबिले तजदीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन, जदीद मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे और इख्तियारात के मौजूदात पर भी तबादले ख्याल किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक ने भारत और यूरोपीय यूनियन के आज़ादाना तजारती माहदे पर भी ख्याल का तबादला किया और कारोबारी ताल्लुकात को मजीद गहरा करने और स्पेन के साथ भारत के तजारती ताउन को मजीद वसअत देने के तरीक़ेकार पर गौर वखौज किया। जनाब गोयल आज से स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड के 5 रोज़ा दौरे पर हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने सरकारी सेक्टर के बैंकों पर जोर दिया है कि वो बैरून मुल्क भारतीयों NRI तक अपनी रसाई को मजीद बढ़ाएं और उनके लिए जिद्दत तराजी पर मबनी नई जमा पूंजी स्कीमें मुतारिफ कराएं। उन्होंने आज नई दिल्ली में बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान और सरकारी मालियाती इदारों के सरबराहान से गैर मुल्की करंसी NRI बैंक डिपॉजिट्स और गैर मुल्की करंसी कर्जों के तबादले के इकदाम के सिलसिले में बातचीत के दौरान ये बात कही। वजीर खजाना ने इस बात पर भी जोर दिया कि NRI बिरादरी से राबते को मजीद बढ़ाया जाए ताकि गैर मुल्की सरमाया और रकूम की आमद का सिलसिला जारी रहे। मीटिंग के दौरान बैंकों और सरकारी मालियाती इदारों के सरबराहान ने वजीर खजाना को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तबादले की सहूलत की स्कीमों के तहत होने वाली पेशरफ से भी आगाह किया। उन्होंने मजीद कहा कि बैंकों और सरकारी मालियाती इदारों की सरगर्म शिरकत से ये साबित होता है कि तबादले की सहूलतें मुल्क में गैर मुल्की करंसी की आमद को बढ़ाने में मौसर रोल अदा कर रही हैं। इस साल अप्रैल से जून की मुदत के दौरान भारत की मजमू बरामदात का तखमीना 232 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा लगाया गया है, जो कि गुज़िश्ता साल की इसी मुदत के मुकाबले 11.37% ज्यादा है। तिजारत और सनअत की वजारत के मुताबिक जून 2026 के दौरान मजमू बरामदात का तखमीना 73.45 अरब अमरीकी डॉलर रहा, जो गुज़िश्ता साल के जून के मुकाबले 9.48% की मुस्बत नमो को जाहिर करता है। जून में जिन अहम शोबों की बरामदात में इजाफा हुआ है उनमें कीमती पत्थर और जेवरात, इंजीनियरिंग साजो सामान, नामियाती व गैर नामियाती केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान और चावल शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान की बरामदात गुज़िश्ता साल जून के 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस साल जून में 4.93 अरब अमरीकी डॉलर हो गई। इसी तरह इसमें तकरीबन 19% का इजाफा दर्ज किया गया। वजारत ने मजीद बताया कि जून में अशिया और खिदमात की मजमू बरामदात का तखमीना 88.76 अरब अमरीकी डॉलर रहा, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 26% से ज्यादा का इजाफा है। इस दौरान जून 2026 में भारत की खुर्दा इफरात जर सालाना बुनियाद पर बढ़कर 4.38% हो गई है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हदफ की दरमियानी हद से ज्यादा है। मई में इफरात जर की ये शरह 3.93% थी। इसी तरह जून में महंगाई में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सारिफीन कीमत इशारिया CPI के तहत ये मुसलसल छठा महीना है जब खुर्दा इफरात जर में इजाफा देखा गया है। आदाद शुमार और प्रोग्रामों पर अमल दरामद की वजारत के मुताबिक देही इलाकों में इफरात जर 4.74% रही, जबकि शहरी इलाकों में ये 3.92% रही। कुल हिंद सारिफीन खुराक की कीमतों के इशारे के मुताबिक खुराक की इफरात जर की शरह 5.32% रही, जो पिछले महीने के 4.78% से ज्यादा है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन और दीगर 4 अफराद को साल 2020 के शुमाल मशरकी दिल्ली फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अफसर अंकित शर्मा के कत्ल के मामले में मुजरिम करार दिया है। एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह इस मामले की समाअत कर रहे थे, जिसमें कुल 11 लोगों को नामजद किया गया था। अदालत ने इनमें से 5 अफराद को मुजरिम करार दिया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने, फसाद, हमला, ताकत के मुजरिमाना इस्तेमाल और कत्ल के इल्जामात में कसूरवार गर्दाना। ये मुकदमा दयालपुर पुलिस स्टेशन में अंकित शर्मा के वालिद रविंद्र कुमार की शिकायत पर दर्ज FIR से मुतालिक है। शिकायत में इल्जाम लगाया गया था कि उनके बेटे को उस वक्त आम आदमी पार्टी के काउंसिलर ताहिर हुसैन और दीगर अफराद ने कत्ल किया। इस मामले में नाम सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को मुअत्तल कर दिया था। 24 मार्च 2023 को दिल्ली की एक अदालत ने ताहिर हुसैन और दीगर 10 मुलजिमीन के खिलाफ बाकायदा तौर पर फर्द जुर्म आयद की थी। अमरीका और ईरान दोनों ने अपने हुरमुज पर कंट्रोल का दावा किया है। मगरबी एशिया में अख्ताम हफ्ता के दौरान हमलों में इजाफे के बाद इलाकाई सलामती और सिफारती कोशिशों के अहिया के लिए की जा रही कोशिशों को नई तशवीश लाहक हो गई है। हालिया कशीदगी ईरान के जरिए ओमान के साहिल के करीब आबनाए हुरमुज में कंटेनर बरदार जहाज को निशाना बनाए जाने के बाद शुरू हुई है। इसके बाद से आबनाए हुरमुज से, जो कि आलमी तेल और गैस की तरसील की एक

0: इसी तरह।
1: पेश है एक और गजल बेगम अख्तर की आवाज में, कलाम है मोमिन का।

0: सुनते हैं एक और गजल, आवाज है मेहंदी हसन की।
1: जी नहीं, एक और आपकी फरमाइश है, वो सब होगी इंशाल्लाह। तो ये आपकी बड़ी पहले से फरमाइश आई हुई है, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सारा।

0: Yeah. Yeah, man. Thank you.
1: सुनते हैं एक और गजल, आवाजें अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की।

0: अंजुमन का आज का सफ़र बस यहीं पर ख़त्म होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजने वाले हैं। प्रस्तुत है कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं डॉक्टर लियाकत अली, मुक्ता सिंह और सुरेश कुमार।
1: आज आकाशवाणी में एक कवि गोष्ठी का आगाज़ किया गया है और हमारे कवि गोष्ठी में एकमात्र पहन आदरणीय डॉक्टर मुक्ता जी हैं और हमारे बीच में सुरेश कुमार, सुरेश अकेला के नाम से जाने जाते हैं और मैं आप लोग के बीच में, जिसे संचालन का भय सौंपा गया है, डॉक्टर लियाकत अली जलज, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और काशी से मैं शुरू करता हूँ एक मुक्तक से कि कितनी प्यारी हसीन है काशी, कितनी प्यारी हसीन है काशी,
2: निश्चित
1: विद्वता में जहीन है काशी।
2: क्या कहने,
3: बहुत सुंदर।
1: क्या जलज खिले तो गलियां चमके,
2: आहा,
1: कौन कहता मलिन है काशी।
2: क्या कहने, क्या दृश्य खींचा
1: तो
2: बाबा।
1: इसका गोष्ठी का आगाज हम पहले कवि के रूप में सुरेश कुमार अकेला जी को बुलाएंगे, लिख मुक्तक के साथ कि अगर लिखूं किताब तो तुझे अपना नाम लिखूंगा।
2: अरे वाह, अगर लिखूं किताब तो,
1: अगर लिखूं किताब तो तुझे अपना लिखूंगा। खुली आंखों से देखा हुआ सपना लिखूंगा।
2: क्या कहना, खुली आंखों से देखा हुआ,
1: लिखकर सारे दुख अपने हिस्से में, तेरे हिस्से में सिर्फ हंसना लिखूंगा।
2: अरे वाह, क्या
1: सिर्फ हंसना लिखूंगा,
2: बहुत सुंदर भाव।
1: मैं आवाज देता हूँ सुरेश कुमार, सुरेश कुमार अकेला जी को कि आए हमारे बीच में, अपनी रचनाएं, अपनी कविताएं पढ़ें, हमारे श्रोताओं को भाव विभोर करें।
2: सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। दो तीन मुक्तक और एक मुकम्मल रचना से मैं इस काव्य पाठ, आज के इस जो कवि गोष्ठी है उसमें अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करना चाहता हूँ।
1: स्वागत।
2: चार पंक्तियां प्रार्थना की हैं
1: जी। क्या बात।
2: ही दर बदर ना फिरूं, रास्ता दीजिए।
1: वाह, दर बदर ना।

0: और चार पंक्तियां मैं अपना परिचय देना चाहता हूं कि
1: जी
0: मैं क्या
1: स्वागत है
0: हूं, क्या
1: शोर।
0: सोचता हूं।
1: वाह वाह वाह खिला जी, क्या बात है।
0: दिल किसी का कभी मैं दुखाता
1: वाह वाह वाह
0: नहीं,
1: वाह, दिल किसी
0: दिल
1: का।

0: ऐसे लाइक वाह
1: मुझे हौसला
0: वाह
1: दीजिए, सच को सच जो दिखाए, गलत को
0: वाह वाह वाह वाह
1: गलत,
0: वाह।
1: सच को
0: तो सच
1: सच
0: जो दिखाए
1: जो दिखाए,
0: गलत को
1: गलत
0: गलत।

0: फसल
1: मैं
0: मैं
1: उगाता नहीं। वाह वाह वाह, क्या
0: उगाता
1: कहने, नफरतों की फसल
0: नहीं,
1: मैं उगाता नहीं।
0: नफरतों
1: वाह
0: की फसल
1: क्या
0: मैं
1: लिखनी है।
0: उगाता
1: जी
0: नहीं। और जब ये बात आई है तो एक बात मुझे और याद आ रही है
1: जी
0: कि
1: स्वागत
0: हम
1: है।
0: मनुष्य हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं
1: जी
0: कि ताम्र एक सुरूर में रहता है आदमी।
1: ताउम्र,

0: भाई वाह,
1: अक्सर यहाँ
0: क्या
1: कुसूर में रहता है
0: बात है
1: आदमी।
0: केला जी, वाह वाह।
1: एक दिन अगर है जाना उसे छोड़ सब यहाँ, हाँ उसे छोड़ सब यहाँ।

0: वाह भाई
1: जया
0: वाह, आपने तो जीत दिल
1: दुमी।
0: जीत लिया।
1: और इन मुक्तकों के साथ एक मैं बहुत ही मन से इस कविता को लिखा,
0: जी,
1: मैं तुम और हम।
0: मैं तुम और हम।
1: हम ये
0: वाह
1: कविता
0: वाह
1: आप सभी
0: क्या।
1: श्रोताओं से निवेदन है कि मन से सुने
0: जी।
1: कि मैं हूं, मैं हूं, तुम हो।
0: मैं हूं
1: मैं हूं,
0: तुम हो
1: तुम हो, मैं अपनी शक्ल में हूं, तुम अपनी
0: शक्ल
1: सूरत में
0: में।
1: हो।
0: वाह वाह
1: मैं अपनी
0: मीठ।
1: शक्ल में हूं,
0: हाँ
1: तुम अपनी
0: मीठ
1: सूरत में
0: सूरत में
1: हो।
0: हो,
1: मैं अपने रंग में हूं, तुम अपने रूप में हो।
0: रूप में हो,
1: मैं अपने रंग में
0: रंग में
1: हूं,
0: हो।
1: तुम अपने रूप में हो। मेरा नाम अलग, मेरी जाति अलग, मेरा धर्म अलग, मेरी भाषा अलग, मेरा क्षेत्र भी अलग है। मेरा नाम अलग, मेरी जाति अलग, मेरा धर्म अलग, मेरी भाषा अलग, मेरा क्षेत्र भी अलग है। तुम्हारा नाम अलग, तुम्हारी जाति अलग, तुम्हारा धर्म अलग, तुम्हारी भाषा अलग, तुम्हारा क्षेत्र भी अलग है, मगर मगर पल रहे हैं, मगर पल रहे हैं भारत
0: वाह
1: माँ की गोद में।
0: वाह वाह।
1: मगर
0: मैं
1: पल
0: पल
1: रहे
0: रहे हम
1: हैं
0: भारत
1: भारत
0: माँ की
1: माँ की
0: गोद
1: गोद
0: में।
1: में। एक रिश्ता है, एक रिश्ता है मेरा और तुम्हारा,
0: वाह वाह क्या
1: एक
0: कहते,
1: रिश्ता है
0: मेरा और
1: मेरा
0: तुम्हारा।
1: और तुम्हारा। आओ तुम्हें मैं अपनाऊं, तुम मुझे
0: मुझे
1: अपनाओ।
0: अपनाओ।
1: आओ तुम्हें मैं अपनाऊं, तुम मुझे अपनाओ। आओ गिराएं मिलकर गलतफहमियों की दीवारें,
0: वाह
1: आओ गिराएं मिलकर गलतफहमियों की दीवारें, आओ गिराएं मिलकर नफरत की मीनारें,
0: वाह वाह
1: आओ
0: वाह क्या
1: गिराएं
0: बात
1: मिलकर
0: है।
1: नफरत की मीनारें। एक कदम मैं बढ़ाऊं,
0: वाह
1: एक कदम मैं
0: वाह
1: बढ़ाऊं, एक कदम तुम बढ़ाओ।
0: बढ़ाओ
1: एक कदम मैं
0: मैं
1: बढ़ाऊं,
0: बढ़ाऊं।
1: एक कदम तुम बढ़ाओ। आओ बनाएं एक नया समाज, आओ
0: बनाए
1: बनाएं एक नया
0: नया
1: समाज,
0: समाज,
1: जहां मैं
0: मैं को
1: को तुम
0: तुमको।
1: तुमको भुला कर हम हो जाएं।
0: वाह वाह
1: जहां
0: वाह वाह।
1: मैं को
0: हाँ
1: तुमको भुला कर मैं हो जाऊं।
0: सुंदर बढ़िया।
1: और इसी के साथ कुछ और भाव आ रहे हैं
0: नहीं
1: पॉइंट्स
0: एकदम स्वागत है गेरा जी, क्या बात है।
1: कि
0: हमारे श्रोता भी जो है सुन करके मुग्ध हो जाएंगे।
1: निश्चित।
0: जी
1: तो एक गजल के भाव में एक कुछ
0: जी
1: पंक्तियां मैं निवेदित करना चाहता
0: जी
1: हूं।
0: स्वागत है इरशाद।
1: महल

0: क्या बात है, क्या
1: है
0: मार्मिक
1: महल
0: था एकदम।
1: है। बहुत
0: वाह
1: बहुत शुक्रिया।
0: जी,
1: और एक शेर देखें कि जमी को छोड़ दूं,
0: जमी को छोड़ दूं।
1: जमी को छोड़ दूं,

0: नहीं है। और
1: वाह
0: आज हमारे साथ डॉक्टर मुक्ता जी मातृशक्ति के रूप में
1: जी
0: हैं।
1: जी क्या बात है,
0: ये
1: बहुत
0: शेर पूरा निवेदित है
1: जरूर
0: आपको।
1: जरूर इरशाद।
0: अगर माँ की दुआ लेकर चले हो,
1: अगर माँ की दुआ लेकर के चले हो।
0: अगर

0: नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे सुरेश कुमार अकेला जी को, बहुत ही अच्छे पंक्तियों से उन्होंने नवाजा। और अब आइए, एक मातृशक्ति हमारे बीच में मौजूद हैं, आदरणीय डॉक्टर मुक्ता जी। आप नाम की मोहताज नहीं है, पद्य है, गद्य है और नाटक की विधा में भी हैं आप। और कहा जाए तो इस काशी में आप एक अलग अपना पहचान रखती हैं। मैं आपसे एक मुक्तक के साथ बुलाना चाहता हूँ कि दिल के दागों का शुमार क्या करें, दिल के दागों का शुमार क्या करें, जख्म इतने हैं कि इजहार क्या
0: अरे
1: करें।
0: बाबा,
1: अब पूछने आए क्यों हालात मेरे,
0: अब पूछने आए
1: अब
0: क्यों?
1: पूछने आए हालात क्यों मेरे, चल रही हैं सांसें देखो एतवार क्या करें,
0: अरे वाह,
1: चल रही
0: बहुत
1: हैं
0: बढ़िया,
1: सांसें। आदरणीय
0: बहुत
1: डॉक्टर मुक्ता जी,
2: धन्यवाद जलज जी। मेरी पहली कविता जो है, इसका शीर्षक है, ये प्रेम के संदर्भ में है, ये
1: जी
2: वीणा
1: स्वागत।
2: के तार।
1: वीणा
2: वाह,
1: के
2: वीणा
1: तार,
2: के तार।
1: वाह बहुत खूब।
2: प्रेम छला गया बार बार,
0: हाँ,
2: प्रेम
1: छला गया
2: छला
1: बार
2: गया
1: बार।
2: बार बार, वीणा के तार सा
0: अच्छा,
2: बजता
1: वाह
2: रहा प्रेम।
1: वाह,
2: प्रेम आकाश गंगा की लहरों में डूबता उतराता, साम गान सा छलकता
1: हाँ
2: रहा।
1: वाह।
2: प्रेम
1: प्रेम
2: आकाश गंगा की लहरों में डूबता उतराता, साम गान सा छलकता रहा। प्रेम तपस्वियों की भंग समाधि में, उर्वशी के नृत्य मुद्राओं में,
1: वाह
2: कटलय से होकर विराट की राह
0: क्या प्यारी
2: खोजता
0: झलक है,
2: रहा।
0: बहुत
2: जी
0: बढ़िया,
1: बहुत।
2: प्रेम हिरण्य गर्भ में समाहित, सूरज बन जलता रहा।
1: वाह क्या भाव है,
2: प्रेम हिरण्य गर्भ में
0: बहुत
2: समाहित,
0: गहरा भाव, वाह
2: सूरज बन जलता
1: जलता
2: रहा।
1: रहा
2: मन के कोटर में, मन के
1: के
2: कोटर
1: कोटर में,
2: में
1: क्या
2: ताप
1: बात क्या बात,
2: को अक्षय करता रहा प्रेम।
0: वाह क्या
2: मन के
0: प्रेम।
2: कोटर में ताप को अक्षय करता रहा
1: ओहो
2: प्रेम। विदा के बाद भी, विदा के बाद भी आंख की कोर में पानी की बूंद बन
0: आहा,
2: शेष रहा प्रेम।
1: ओहो
2: विदा
1: क्या क्या कल्पना है, बहुत शानदार,
2: के बाद भी
1: वाह
2: आंख की कोर में

0: पानी की बूंद बन शेष रहा प्रेम।
1: वाह,
0: और स्त्रियों के संबंध में मेरी स्त्री विमर्श की यह दूसरी कविता है।
1: जी क्या बात है, स्वागत है।
0: ध्यान से सुनिएगा,
1: जय
0: गंभीर कविता
1: जी
0: है
1: जी
0: ये।
1: जी जी
0: कैनवस की औरत।
1: वाह, कैनवस की औरत,
2: ओहो।
1: वाह।
0: खुली सड़क के किनारे दरख्तों के बीच चित्रकार औरत के चेहरे को कैनवस पर उतार रहा था।
1: वाह,
0: उसकी सधी उंगलियां औरत के चेहरे की बारीकियां तलाश रही हैं। अचानक चली आई बारिश, अचानक
2: चलिए
0: चली
2: चलिए
0: आई
2: चलिए।
0: बारिश गरज के साथ चमकती बिजली पेड़ों के झुरमुट में खो गई।
2: बाबा
0: औरत के होठों के तिरछे कोनों में अटक गए अनगिनत वर्ष।
2: वाह,
0: औरत के होठों के
2: बहुत बढ़िया।
0: तिरछे कोनों में अटक गए अनगिनत वर्ष। अंतिम बार न जाने कब मुस्कुराई थी
1: वाह,
0: मोनालिसा।
1: अंतिम बार
0: अंतिम बार
2: न जाने कब,
0: न
2: न
0: जाने
2: जाने
0: कब
2: कब
0: मुस्कुराई थी मोनालिसा।
1: मोनालिसा।
0: चिनार पत्तों ने मोम जामे से फैला दिए हैं हाथ। चिनार
1: पत्तों
0: पत्तों
1: ने
0: ने मोम जामे
1: जामे
0: से
1: से
0: फैला
1: फैला
0: दिए
1: दिए हैं
0: हैं हाथ।
1: हाथ।
0: हवा, पानी, मिट्टी की गंध औरत की कोख तक पहुंचने लगी है। हवा, पानी, मिट्टी की गंध औरत की कोख
1: कोख
0: तक
1: तक
0: पहुंचने
1: पहुंचने
0: लगी
1: लगी है।
0: है और उसका चेहरा बदलता जा रहा है प्रार्थना में।
2: ओहो,
1: वाह वाह,
2: क्या
1: क्या
2: कहने,
0: और उसका
1: बहुत
0: चेहरा
1: मार्मिक
0: बदलता
1: जितना
0: जा रहा है
1: उम्दा
0: प्रार्थना में।
1: प्रार्थना।
0: उधर एक और औरत होटल के भव्य कक्ष में नाच रही है।
1: ओह
0: उधर
1: ओह, क्या बात।
0: एक और औरत होटल के भव्य कक्ष में नाच रही है। मर्जीना जैसे तराशे बदन वाली औरत का शरीर नाच रहा है।
1: ओह, क्या उपमा दिया,
2: बहुत बढ़िया
0: आंखों की पुतलियां थिर हैं,
1: जी।
0: बदन पर हैं लाल धब्बे और पाटी गई सुराखों के निशान। जो हिंसा हो रही है
1: जी जी
0: स्त्रियों
1: जी
0: के
1: जी जी
0: ऊपर,
1: जी
0: बदन पर हैं लाल धब्बे और पाटी गई सुराखों के निशान। शराब के टकराते जामों के बीच छाया सी डोल रही है नाचती औरत।
1: और
0: और उसकी आंखें तलाश रही हैं अली बाबा।
1: अली बाबा, वाह वाह
0: और
1: वाह,
0: उसकी
1: क्या बात,
0: आंखें
1: तलाश
0: तलाश
1: रही
0: रही
1: थी
0: हैं
1: अली
0: अली
1: बाबा।
0: बाबा। यह समय है या अनंत सुरंग, चेहरे के अंदर घूमने लगे हैं कई चेहरे।
1: वाह,
2: वाह वाह
1: चेहरे के अंदर घूमने लगे हैं कई चेहरे।
0: यह समय है या
1: जी
0: अनंत सुरंग, चेहरे के अंदर घूमने लगे हैं कई चेहरे। कैनवस समेट उतर चुका है अली बाबा।
1: अली
0: वाह
1: बाबा, अली बाबा
0: कैनवस समेट
1: उतर
0: उतर
1: चुका
0: चुका
1: है
0: है
1: अली
0: अली
1: बाबा।
0: बाबा। और पिता को समर्पित
1: जी
0: मेरी
1: जी
0: एक
1: स्वागत है
0: कविता है। पिता,
1: पिता,
0: तुम थे तो हंसती थी नदियां।
1: बेशक, क्या
2: बाबा,
1: बात है।
0: तुम थे तो
1: तो न
0: हंसती
1: हंसती थी
0: थी
1: नदियों,
0: नदियां मेरे साथ। पेड़ों की पत्तियां नाचती थी मेरे आसपास।
2: ओहो,
0: पेड़ों
1: पेड़ों
0: की
1: की पत्तियां
0: पत्तियां नाचती
1: नाचती थी
0: थी मेरे
1: मेरे आसपास।
0: आसपास।
1: वाह, बहुत खूब,
0: फूल
1: बहुत खूब।
0: सुनाते थे कहानी बसंत की।
1: वाह, फूल
0: फूल
1: सुनाते थे
0: सुनाते थे
1: कहानी
0: कहानी
1: बसंत की।
0: बसंत की। रिश्तों में पतझड़ के नहीं थे संकेत।
1: रिश्तों में
0: रिश्तों में पतझड़
1: पतझड़
0: के
1: के
0: नहीं
1: नहीं
0: थे
1: थे संकेत
0: संकेत। तुम्हारे जाने के बाद,
1: तुम्हारे जाने के
0: तुम्हारे
1: बाद, क्या
0: जाने के
1: बात।
0: बाद हरे रंग हो गए स्याह।
1: वाह
0: तुम्हारे
1: वाह,
0: जाने के बाद हरे रंग
1: रंग
0: हो
1: हो
0: गए
1: गए स्याह।
0: स्याह उदास।
2: ओहो,
0: उजड़ गए बसेरे गौरैया के।
1: वाह,
0: उजड़ गए
1: बसेरे
0: बसेरे
2: गौरैया
0: गौरैया के। विकल मन की आश्वस्ति, विकल मन की
1: आश्वस्ति।
0: आश्वस्ति। इंद्रधनुष का पूरा संसार तुम्हारा हाथ मेरे कंधों पर।
2: वाह,
0: इंद्रधनुष का पूरा
2: बहुत अच्छा प्रयोग,
0: संसार
2: बहुत शानदार प्रयोग।
0: तुम्हारा हाथ मेरे कंधों पर। और बारिश का मौसम है तो वर्षा पर
1: हाँ
0: एक
1: जी
0: कुछ मेरी
1: जी जी
0: कविता
1: एकदम एकदम,
0: है।
1: सासा भी कविता की पूरी।
0: रोशनी की धार,
1: वाह, बहुत खूब,
0: रोशनी की धार।
1: धार।
0: बारिश की बूंदें आकाश से अनंत प्रेम को स्वयं में गुंफित कर निर्मित कर रही हैं रोशनी की धार।

0: बारिश की
1: जी
0: बूंदें जब गिरती हैं तो धार जैसी और रोशनी जैसी चमकती हैं। बारिश की बूंदें आकाश से अनंत प्रेम को स्वयं में गुंफित कर निर्मित कर रही हैं रोशनी की धार। अमावस्या की रात्रि में जुगनुओं सी चमक रही हैं बूंदें।
1: वाह वाह, बेशक, बहुत खूब
0: रति के आलोड़न में
1: जी,
0: आकाश से धरती की ओर
1: वाह
0: वेग से बढ़ रही हैं बारिश की बूंदें।
1: हाँ हाँ
0: उछलती बूंदें बहक बहक कर वृक्षों का कर रही हैं आलिंगन।
1: बाबा
0: उछलती बूंदें बहक बहक कर रही हैं वृक्षों का आलिंगन। बूंदें प्रेम की अग्नि में हवि बन गीत बन गई हैं।
1: वाह,
0: बूंदें
1: प्रेम की
0: प्रेम की
1: अग्नि में
0: अग्नि में हवि बन गीत
1: गीत
0: बन
1: बन
0: गई
1: गई हैं।
0: हैं। नए राग मल्हार को जन्म देने को आतुर प्रतीत हो रही हैं
1: आहा,
0: बारिश की बूंदें।
1: बारिश की बूंद, बारिश की
0: नए
1: बूंद,
0: राग मल्हार को
1: समसमाई, बहुत सारे
0: जन्म
1: अर्थ
0: देने
1: हैं।
0: को आतुर प्रतीत हो रही हैं बारिश की बूंदें।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मुक्ता जी, बहुत शानदार बारिश की बूंदों की कविता भी आपने सुना। अब मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने अभी हम सबको आमंत्रित किया। हमारे बीच डॉक्टर लियाकत अली जलद जी हैं। मैं इन पंक्तियों से आवाज़ देना चाहता हूँ कि खुद अपनी उलझनों का हल तुझे बनना ज़रूरी है,
0: बेशक
1: खुद अपनी उलझनों का हल तुझे बनना ज़रूरी है, ज़माने में नई हलचल तुझे बनना ज़रूरी है। अभी तक होश में मंजिल किसी को मिल नहीं पाई, अगर है चाह तो पागल तुझे बनना ज़रूरी है। मैं इन पंक्तियों
0: वाह,
1: से आदरणीय डॉक्टर लियाकत अली जलद साहब से अनुरोध करना चाहता हूँ अपनी कविताओं से श्रोताओं को जोड़ें।
0: धन्यवाद अकेला जी। आदरणीय आपके बीच में एक मुक्तक है कि
1: स्वागत है।
0: बेटियों को देखते हुए कि पापा दिन भर कहाँ रहते हो, पापा
1: पापा दिन भर कहाँ रहते हो?
0: दिन भर कहाँ रहते हो, ये थकानी कौन पूछेगा।
1: आहा, आहा।
0: बदन सिर दर्द तपन की रवानी कौन पूछेगा।
1: आहा।
0: अरे उन्हें बोझ समझकर कोख में ही मरने वालों,
1: उसे बोझ,
0: उन्हें
1: आहा,
0: बोझ समझकर
1: कोख
0: कोख
1: में,
0: में ही मारने वालों, अगर बेटी नहीं होगी तो पानी कौन पूछेगा।
1: वाह क्या
0: अगर
1: भाव
0: बेटी
1: है,
0: नहीं होगी तो
1: पानी कौन
0: पानी कौन।
1: पूछेगा, ये बहुत अच्छा भाव।
0: एक मुक्तक और है
1: स्वागत
0: कि
1: है।
0: लोग आजकल देखते हैं काफी हो जाता है, जिस माँ के जमीन पे हम सजदा करते हैं उसी को कहने पे कभी कभी हम घबरा जाते हैं। तो इस मुक्तक को देखें कि क्यों चांद में खोए हो,
1: अरे बाबा, क्यों चांद में खोए हो?

0: गाने जिंदाबाद।
1: वंदे मातरम की बोली तुम सुन लो पहाड़ों में।

0: में
1: बहुत शानदार।
0: विद्या की
1: अच्छा है।
0: अदालत है गंगा के किनारों में। आइए, एक रचना है प्रदूषण को लेकर के,
1: जी
0: कुछ मिलावटी चीजों को लेकर के। पक्षियां कहाँ गायब है, क्या क्या जल किस तरह से प्रदूषित हो रहा है, समेटने की कोशिश की है।
1: स्वागत है।

0: में
1: बहुत अच्छी
0: कुछ
1: अजय।
0: देर पवन तुम
1: वाह
0: छाओ बरगद की कहाँ मिलेगी, तपन बड़ी है सूरज की।

0: बहुत सुंदर।
1: आज हम लोग आकाशवाणी के काव्य गोष्ठी में शामिल होने के लिए आए, जिसका बहुत बहुत शुक्रिया है। साथ साथ हमारे बीच में जिन कवियों ने अपनी कविताएं सुना करके हमारे श्रोताओं का मन मोहा है, उनमें हैं सुरेश कुमार अकेला जी और आदरणीय डॉक्टर मुक्ता जी। और संचालन का जो कार्य दिया गया था उसको सफलपूर्वक मैंने किया है। मैं डॉक्टर लियाकत अली जलज, सभी श्रोताओं से यह निवेदन है आप इसको सुने और सुन करके आप आह्लादित हों, फिर किसी कार्यक्रम से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।
2: अभी आप सुन रहे थे कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि थे डॉक्टर लियाकत अली, मुक्ता सिंह और सुरेश कुमार। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 10:30 होने को हैं। कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रहमत अली खां का सरोद वादन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनके अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हों। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फूक वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दी।